0: करोड़ रुपए की बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की क्षमता मजबूत करेगा। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रसेल्स में कल आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25 हजार रुपए प्रति सीट था, लेकिन अब ये घटकर 12 से 15 हजार रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। श्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री यादव भारत और विदेशों के प्रमुख वस्त्र निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से बातचीत करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पेविलियन का भी अवलोकन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक से भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को मजबूत गति मिलेगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा की जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद की एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,770 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ये आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई, SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
6: आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 268.81 मीटर। इस वक्त आप एंजॉय कर रहे शो पयाम सुबह लाइव मॉर्निंग शो। सुबह 7:10 से लेकर ठीक 11:30 तक हम इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे। मैं हूं आपकी मेजबान रिफत आरा और मेरे साथ हैं शब्बीर अहमद। और शब्बीर, आज 16 जुलाई है
7: जी।

0: हकीकत आज ही के दिन सन 622 ईस्वी में बाजाब्ता तौर पर हिजरी कैलेंडर का आगाज हुआ। इस तारीखी फैसले की तफसीलात हमें बरसगीर के अजीम मौरिख मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह की शरह आफाक किताब अल फारूक में नहायत दिलनशीन अंदाज में मिलती है।
1: बिल्कुल, ये सिर्फ महीनों और सालों की तरतीब का मामला नहीं बल्कि एक ऐसी तारीख का आगाज है जिसकी बुनियाद ईमान, कुर्बानी, हिजरत, इस्तकामत और एक नई तहजीब के कयाम पर रखी गई।
0: जी, हजरत उमर इब्न खताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत इस्लामी तारीख का वो रोशन बाब है जिसमें अदल इंसाफ के साथ साथ बेहतरीन इंतजामी इस्लाहात भी सामने आए। इस्लामी रियासत अरब से निकलकर इराक, शाम, मिस्र और फारस तक फैल चुकी थी। नए इलाके, नए गवर्नर, नए मालियाती निजाम और बेशुमार सरकारी मामलात रोज बरोज बढ़ते जा रहे थे।
1: बिल्कुल शबीर, मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सबसे नुमाया खूबी ये थी कि वो हर नए मसले का ऐसा हल तलाश करते थे जो आने वाली नस्लों के लिए भी फायदा मंद साबित हो।
0: बिल्कुल, उमर अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास खतूत मौसूल होते रहते थे लेकिन इन पर तारीख दर्ज नहीं होती थी, इसलिए समझने में दुश्वारी होती थी कि कौन सा खत पहले आया और कौन सा बाद में।
1: बिल्कुल, ये बज़ाहिर एक छोटा सा मसला था लेकिन एक अजीम हुक्मरान ने इसके अंदर मुस्तकबिल की जरूरत को पहचान लिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फौरन मजलिस शोरा तलब की। मुहाजरीन और अंसार के जलीलुल कद्र सुहाबा जमा हुए और उनसे राय मांगी गई। किसी ने कहा इस्लामी साल का आगाज रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से होना चाहिए। किसी ने अर्ज किया विसाल रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज होना चाहिए।
0: रिफत, लेकिन हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहु ने एक ऐसी तजवीज पेश की जिस पर सबके दिल मुतमईन हो गए। उन्होंने फरमाया इस्लामी तारीख का आगाज जो है हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना चाहिए क्योंकि यही वो लम्हा था जब इस्लाम महज दावत से निकलकर एक मुनज्जम माशरे और रियासत की शक्ल इख्तियार कर गया।
1: बिल्कुल, मौलाना शिबली नुमानी अल फारूक में इस फैसले की हिकमत बयां करते हुए लिखते हैं कि हिजरत ने इस्लाम की तकदीर बदल दी। मक्का की मजलूम जमात मदीना पहुंचकर एक खुद मुख्तार उम्मत बन गई।
0: हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर की मुंतकली नहीं थी, ये अल्लाह अज़्ज़ वजल का फरमान था। ये हालात की तब्दीली थी, ये कमजोरी से ताकत तक का सफर था, ये खौफ से अमन की तरफ इशारा था, ये गुलामी से आजादी का ऐलान था।
1: क्या बात है, मजलिस शोरा में इसके बाद एक और दिलचस्प सवाल पैदा हो गया। शबीर, अगर तारीख का आगाज हिजरत से होगा तो साल का पहला महीना कौन सा होगा?
0: मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इस बारे में भी साहबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन ने गौर फिक्र किया। आखिरकार ये तय पाया कि मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना होगा क्योंकि इससे पहले भी अरब माशरे में यही साल का आगाज समझा जाता था। यूं मुहर्रम का पहला महीना करार दिया गया जबकि साल की बुनियाद जो है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया गया।
1: यहाँ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बसीरत एक बार फिर सामने आती है। उन्होंने हुक्म दिया कि तमाम सरकारी खतूत, अदालती फैसले, माली हिसाबात, बैतुल माल के इंदराजात और सरकारी दस्तावेजात हिजरी तारीख के मुताबिक मुरतब किए जाएं।
0: मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इस्लामी दुनिया का पहला मुनज्जब सरकारी तकवीमी निजाम जो है वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में वजूद में आया।
1: जी,
0: वो सिर्फ फातिया नहीं थे बल्कि बेहतरीन मुंतजिम, कानून साज और मुदब्बिर भी थे। उनके फैसले वक्ती नहीं बल्कि सदियों तक रहनुमाई करने वाले साबित हुए।
1: रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत ही वो पैगाम है जिसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लामी तारीख की बुनियाद बना दिया।
0: मौलाना शिबली नुमानी अलैहि रहमा इस फैसले को इस्लामी तहजीब की तारीख का एक ऐसा संगमील करार देते हैं जिसने उम्मत को अपनी मुस्तकिल शिनाख्त अता की।
1: बिल्कुल, आज दुनिया के हर गोशे में रमजान, हज, ईदेन, आशूरा और दीगर इस्लामी इबादत इसी हिजरी तकवीम के मुताबिक अंजाम दी जाती हैं।
0: रिफत जी, गोया 1400 बरस से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भी हजरत उमर का वो फैसला आज भी जिंदा है ہجری سال کا آغاز ہمیں

0: आपने ट्यून किया आकाशवाणी श्रीनगर और आप समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह। मैं हूं आपका साथी शबीर अहमद वानी और मेरे साथ है रिफत आरा।
1: जी हां शबीर, आज 16 जुलाई है। आज हमने हिजरी कैलेंडर की बात की, अब आज के तारीख के हवाले से बात करते हैं। साल 1661 में 16 जुलाई को स्टॉकहोल्म्स बैंकू नामी स्वीडिश बैंक ने यूरोप में पहली मर्तबा कागजी करेंसी यानी बैंक नोट जारी किए, जिसने आलमी मालियाती निजाम की तरक्की में अहम किरदार अदा किया।
0: साल 1910 में आज ही के रोज ऑस्ट्रिया में तैयार किए गए पहले बायोप्लेन ने अपनी पहली कामयाब परवाज की, जो ऑस्ट्रेलियाई फिजाई तारीख का एक अहम संगमील है।
1: जी हाँ, 16 जुलाई सन 1931 में इथोपिया के शहंशाह हेल सेल्सी ने मुल्क के पहले आईन पर दस्तखत किए, जिससे जदीद रिहायशी निजाम की बुनियाद मजबूत हुई।
0: 16 जुलाई 1935 में अमेरिका के शहर ओक्लाहोमा सिटी में दुनिया का पहला पार्किंग मीटर नस्ब किया गया, जिसने शहरी ट्रैफिक के इंतजाम में एक नई रिवायत कायम की।
1: 16 जुलाई 1957 में KLM नामी फ्लाइट 844 इंडोनेशिया के करीब हादसे का शिकार हुई, जिसमें 58 अफराद जान की बाजी हार गए।
0: 16 जुलाई 1965 में फ्रांस और इटली को मिलाने वाली तारीखी मॉन्ट ब्लैंक टनल आवाम के लिए खोल दी गई, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान आमदोरफ्त आसान हुई।
1: साल 1969 में आज ही के दिन अमरीकी खिलाई मिशन अपोलो 11 रवाना हुआ, जिसके नतीजे में चंद दिन बाद इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। यह मिशन इंसानी तारीख की अजीम तरीन साइंसी कामयाबियों में शुमार होता है।
0: 16 जुलाई 1979 में इराक के सदर अहमद हसन अल बकर मुस्तफी हुए और सदाम हुसैन ने इक्तदार संभाला, जिसने बाद में मशरिक वस्ता की सियासत पर गहरे असरात मुरतब किए।
1: 1990 में यूक्रेन की पार्लियामेंट ने रियासती खुद मुख्तारी का ऐलान किया, जो बाद में मुकम्मल आजादी की जानिब एक अहम कदम साबित हुआ। आज ही के दिन
0: आज ही के रोज साल 2013 में बिहार के एक सरकारी स्कूल में दोपहर का खाना खाने से 27 बच्चों की मौत हो गई और मुतअद्दिद बच्चे शदीद बीमार हुए।
1: इस तरह 2019 में मुंबई में 100 साल पुरानी एक इमारत गिरने से कम 10 अफराद जान बहक हुए, जबकि कई लोग मलबे तले दब गए। आज ही के दिन
0: रिफत, अब जिक्र करते हैं आज पैदा होने वाली चंद मारूफ शख्सियात का। 1888 में नोबेल इनाम याफ्ता डच माहिर तबियात फ्रिट्स ज़ेरनाइक पैदा हुए, तारीख थी 16 जुलाई की। इन्होंने ऑप्टिक्स के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम दी।
1: आज ही के रोज 1926 ईस्वी में अमरीकी हयातियात दान और नोबल इनाम याफ्ता इरविन रोज पैदा हुए, जिनकी तहकीक ने खिलियाती हयातियात में नई राहें खोली।
0: भारत के साबिक क्रिकेटर वेंकटरमन सुब्रमण्यम पैदा हुए 1936 में, तारीख थी 16 जुलाई की।
1: साल 1968 में 16 जुलाई को भारतीय हॉकी के अजीम खिलाड़ी धुनराज पिल्लई पैदा हुए, जिन्होंने भारतीय हॉकी को आलमी सतह पर नई शनाख्त दिलाई।
0: 16 जुलाई 1973 में जनूबी अफ्रीका के मायनाज क्रिकेटर शान पोलाक पैदा हुए, जिन्हें दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शुमार किया जाता है।
1: आज बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा कटरीना कैफ अपना 43वां जन्मदिन मना रही हैं। वो 16 जुलाई सन 1983 में पैदा हुई।
0: रिफत, अब बात करते हैं आज के दिन वफात पाने वाले शख्सियात की। 16 जुलाई 1982 में जनूबी अफ्रीका के पहले रियासी सदर चार्ल्स रॉबर्ट सोवेट का इंतकाल हुआ।
1: 2024 में ऑस्ट्रेलिया के मारूफ रेडियो होस्ट और स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर डेविड

साइंस सीरियल पेश होगा शब के 10 बजे, पंजाबी मैगजीन पेश होगा शब 10:30 पर। मुकामी रोजनामों की सुर्खियां पेश होंगी सुबह के 9 बजे, शोभा खबर की पेशकश शहर शहर मंजर समाप्त करें सुबह 9:30 पर। सूफी बुजुर्गों की जिंदगी, उनकी तालीमात और कलाम से मुतलिक सिलसिलेवार प्रोग्राम सूफी सदा पेश खिदमत होगा सुबह के 10 बजे। आज के प्रोग्राम में वादी के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत सईद हसन मनतकी रहमतुल्लाह अलैह से मुतलिक है। लाइव मॉर्निंग शो सुबह 10:30 पर मैं हमारी मेहमान होंगी कलमकार नाहिदा अंजुम, इनसे हम कलाम होंगी रिफत आरा। सूफियाना मौसीकी में सुबह 10:30 पर आप मुकाम आसावरी सुनेंगे और मुकाम नवा पेश होगा दिन में 2:30 पर। बज़्म निस्वारास्त होगी दोपहर 12:40 पर। NCERT का तैयार करदा तालीमी स्पॉन्सर प्रोग्राम नष्ट होगा दिन में 1:10 पर। सफेर 3 बजे प्रोग्राम पेश होगा फौजी भाइयों के लिए। पहाड़ी प्रोग्राम 4 बजे नष्ट होगा, चलन समाप्त करें सफेर 4:45 पर। गोजरी प्रोग्राम शाम के 5 बजे पेश होगा। शाम 6:05 पर देहाती भाई अपना प्रोग्राम सुनेंगे। शहरबीन आप समाप्त करते हैं शाम के 7 बजे। प्रोग्राम वादी की आवाज रात के 8 बजे नष्ट होगा और रात जी हाँ शब 9 बजे स्पॉन्सर प्रोग्राम हम सफर ब्रॉडकास्ट होगा। आज के प्रोग्राम का मौजू है आलमी मलाइका। आज आप इसकी चौथी किस्त समाप्त करेंगे। मुकर्रर हैं मौलाना फैयाज अहमद जरूर साहब। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम इजाज कपरा।

मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी आवाज़ आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अंबिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की

0: सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
2: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए से लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान

0: की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं

0: और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवा रे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, तीन शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदी घोष, ताड़ध्वज और देव विदालन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रैंड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
4: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमा सा चेहरा।
5: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि संपन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
6: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमेरिका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
7: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला

0: दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत, सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है, सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है, जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जीन से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है, अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल, अमरीका की होरमोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज, टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया, फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी, पयामे सुबह।
4: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो, पयामे सुबह,
3: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात,
4: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु, पयामे सुबह।
5: यारो बनबाज यारो बन।
3: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से।
4: मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। पयामे सुबह
6: सुनो सजना,
4: पयामे सुबह।
7: जी हाँ सामीन, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 213.5 MHz पर और मीडियम वेव 268.81 मीटर। इसके अलावा आप हमें DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। اس وقت لائیو مارننگ شو آپ انجوائے کر رہے ہیں پیام صبح، جو صبح 7:10 سے شروع ہو کر ٹھیک 11:30 تک آپ انجوائے کرتے ہیں. اور آپ کو یاد دلانا چاہیں گے کہ آج 10:30 ایک مہمان ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے.

0: इनके साथ हम बात करेंगे, एक मारूफ कलमकार नाहिदा अंजुम साहिबा
1: जी,
0: आप भी सुनना मत भूलिएगा 10:30 बजे से 11:30 तक लाइव इंटरेक्टिव शो होगा। मैं हूं आपकी मेजबान रिफत आर और मेरे साथ हैं शब्बीर अहमद।
1: रिफत जी, इंसान दुनिया में आते ही कई रिश्तों से जुड़ जाता है, वालदेन, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी और दीगर अजीज व अकारिब।
0: बिल्कुल,
1: ये वो रिश्ते हैं जो हमें अल्लाह ताला की देन है। लेकिन जिंदगी के सफर में हमें कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो खून के रिश्ते तो नहीं होते, मगर उनकी मोहब्बत, खलूस और कुर्बानी जो है वो उन्हें हमारे दिल के बहुत करीब ले आती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कहते हैं ना कि रिश्ते सिर्फ खून के ही नहीं होते बल्कि एहसास के भी होते हैं, और एहसास सिर्फ किसी के दुख पर अफसोस करने का नाम नहीं शबीर
1: जी,
0: बल्कि किसी के दर्द को अपना दर्द समझकर महसूस करने का नाम है।
1: एहसास सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि अमल है। किसी की खामोशी को समझ लेना, किसी की आंखों में छुपे आंसू पढ़ लेना या किसी के चेहरे की उदासी को महसूस करना, यही एहसास है।
0: देखिए, आज हम तरक्की की दौड़ में तो बहुत आगे निकल चुके हैं शबीर
1: जी।
0: आज जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा मसरूफ हो गई है, सहूलतें बढ़ गई हैं, लेकिन अफसोस के दिलों के दरमियान फासले जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एहसास के रिश्ते जो है कमजोर होते जा रहे हैं। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और जिंदगी की दीगर मसरूफियात ने हमें एक दूसरे के करीब लाकर भी दिलों को दूर कर दिया है।
1: रिफत, आपने बिल्कुल सही बात कही। अगरचे हम एक दूसरे से राबते में तो हैं, मगर ताल्लुक में नहीं। घर के तमाम अफराद एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। वालदेन बच्चों से बात करने को तरसते हैं, बच्चे वालदेन की तवज्जो चाहते हैं, और बुजुर्ग सिर्फ चंद लम्हों की मोहब्बत के मुंतजर रहते हैं।
0: सही कहा शबीर आपने। जरा सोचे, अगर हम रोजाना सिर्फ चंद मिनट अपने घर वालों के साथ बैठ जाएं, उनकी खैरियत पूछ लें, उनकी बात गौर से सुने, तो कितने ही फासले खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, आज हमारे माशरे को दौलत से ज्यादा एहसास की जरूरत है। किसी यतीम के सर पर शफकत भरा हाथ रखना, किसी बीमार की इयादत करना, किसी परेशान इंसान को खामोशी को समझना, ये वो अमाल है जो इंसान को बड़ा बना देते हैं।
0: बिल्कुल,

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें FM, DTH और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी सुन सकते हैं। आप समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर अहमद वानी और मेरे साथ है मेरी साथी रिफत आरा। सुबह के 8:30 हो रहे हैं। पहले चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप उर्दू खबरों का बुलेटिन सुनेंगे।
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर 2 सड़क प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। भगवान जगन्नाथ और उनके 2 भाई बहनों के आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज उड़ीसा के शहर पुरी में शुरू हो रही है। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज़ के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड को 1-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर 2 शाहराह प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इक्तसादी उमूर की काबीना कमेटी ने

0: वाराणसी में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और सफर में लगने वाला वक्त कम से कम करने की खातिर इन प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में नामनिगारों को जानकारी देते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर के अलावा दूसरा प्रोजेक्ट वाराणसी शहर में तकरीबन 43 किलोमीटर तवील एलिवेटेड कॉरिडोर से मुतालिक है, जिसमें 6 और 4 लेन होंगी। इस पर तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: मरकजी काबीना ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ है सेमीकॉन के दूसरे मरहले को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन के पहले मरहले की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए मस्कूरा स्कीम का मकसद आलमी सतह पर सेमीकंडक्टर मंजरनामे पर भारत को आगे रखने के सरकार के अहद के सिलसिले में कदम बढ़ाना है। वजीर मौसूफ ने बताया कि सेमीकॉन के दूसरे मरहले के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए की मालियत की सरमायाकारी होने की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, 2nd बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, 3rd बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: जनाब वैष्णव ने कहा कि मरकजी काबीना ने 62,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ मोबाइल फोन तैयार करने की स्कीम को भी मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर आजम हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। IRCTC ने इस नई बीटा वेबसाइट को बेहतर बनाते हुए 4 अहम इकदाम किए हैं। मुसाफिर अब सभी जुमरों में सीटों की दस्तियाबी को देख सकेंगे। इसके अलावा टिकट बुक करने का अमल अब और ज्यादा सहल हो जाएगा। इसके साथ साथ वेबसाइट में अब मुसाफिरों की तफसीलात महफूज रहेंगी, जिससे उन्हें दोबारा बुकिंग करने में आसानी होगी। इसके लिए वेबसाइट का पता है irctc.co.in/e-ticket/। दिल्ली के तारीखी लाल किले कॉम्प्लेक्स को 15 अगस्त को होने वाली 80वीं यौम आज़ादी की तकरीबात तक आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। यौम आज़ादी के जश्न के लिए जारी तैयारियों के मद्देनज़र महकमे आसारे कदीमा ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। महकमे के एक अहलकार ने कहा है कि यौम आज़ादी से कबल हर साल इस तरह के अहकाम जारी किए जाते हैं। मध्य प्रदेश से पहली बैनुल अक्वामी फ्लाइट सर्विस का आगाज किया गया है। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से मुत्तहिदा अरब अमारात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली बराह रास्त प्रवास को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम मोदी का हमेशा से ये मानना है कि एक आम आदमी को भी हवाई जहाज में सफर करने का मौका मिलना चाहिए। रियासत की एविएशन पॉलिसी इसी नजरिए के तहत तैयार की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उड़ीसा के शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज शुरू हो रही है। रथ यात्रा के सालाना फेस्टिवल के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहन मखसूस रथों में गुंडीचा मंदिर जाते हुए लोगों को दर्शन का मौका फराहम करते हैं। रथ यात्रा को देखने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों अकीदतमंद वहां जमा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।

0: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन श्री गुंडीचा मंदिर के अपने सालाना सफर पर रवाना हो रहे हैं और पुरी के पवित्र शहर की फजा जय जगन्नाथ की अकीदतमंदों के नारों से गूंज रही है। पुरी में आज सुबह सवेरे से तेज बारिश होने के बावजूद लाखों अकीदतमंद बारिश की परवाह न करते हुए पवित्र रथों का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। खराब मौसम के तनाजुर में हुक्काम चौकसी बरत रहे हैं। मौसमियात महकमे ने खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर पुरी में बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: उधर झारखंड में सालाना रथ यात्रा पूरी रियासत में रवायती जोशोखरोश और अकीदत के साथ हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जगन्नाथ चक्का नैन लीला चलवारे।
3: रांची की दुर्वा में तारीखी जगन्नाथपुर के मंदिर में आज सुबह मजहबी रसूमात का आगाज हो गया है। दोपहर बाद देवी देवताओं को रथ पर विराजमान कराए जाने के बाद शाम 5 बजे रथ यात्रा मासीबाड़ी के लिए रवाना होगी। जिला इंतजामिया ने सीसीटीवी निगरानी और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अहलकारों की तैनाती समेत वसी हिफाजती इंतजाम किए हैं। खूंटी में मकामी इंतजामिया ने कल तारीखी रथ मेले के लिए किए गए हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अली।
2: तू न संभाले तो संभाले।
1: गुजरात में अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में भी 400 साल कदीम जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा शुरू हो गई है। इसके लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद दर्शन के लिए मंदिर के अहाते में इकट्ठा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के शुभ मौके पर भगवान जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा पूरी मजहबी अकीदत और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आज सुबह मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने जमालपुर में तारीखी जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शिरकत की और भगवान का आशीर्वाद लिया। उसके बाद रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने सुनहरी झाड़ू से रथों के रास्तों को साफ करने की अलामती पाहिंद विधि की रस्म अंजाम दी और बाजाब्ता तौर पर रथ यात्रा का आगाज किया। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के अजीम शान रथ दर्जनों अखाड़ों, भजन मंडलियों और लोक रक्स करते हुए ग्रुपों के हमरा 16 किलोमीटर के रिवायती रास्ते से गुजर रहे हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जनाब अमित शाह ने कहा कि आलमी शोहरत याफ्ता जगन्नाथ रथ यात्रा पुख्ता अकीदे, एतमाद और भक्ति की अलामत है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र रथ यात्रा से भारत के शानदार सकाफती विरसे और भगवान के तई गैर मुतजलजल अकीदत की अक्कासी होती है। केरलम में सबरीमाला मंदिर के कपाट महाना पूजा अर्चना के लिए आज खोले जा रहे हैं। ये मंदिर इस महीने की 21 तारीख तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। अकीदतमंदों को कतार के वर्चुअल निज़ाम के जरिए ही वहां दाखिल होने की इजाज़त होगी ताकि लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ न हो सके। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। अमरीकी फौज ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कमजोर करने के लिए कल भी ईरान पर हमले किए। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहमियत के हामिल आबी गुजरगाह पर ईरान की गिरफ्त को कमजोर करने की खातिर फौजी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के मुख्तलिफ मुतबादिल रास्तों का जायजा ले रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरैन और कुवैत समेत खित्ते में अमरीकी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका के साथ बातचीत करने का ईरान का कोई मंसूबा नहीं है। अब कुछ खबरें फीफा वर्ल्ड कप की। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। अमेरिका के एटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1-2 से हरा दिया। वक्फे से पहले कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी थी लेकिन खेल के 55वें मिनट में एंथनी गोर्डोन ने इंग्लैंड की तरफ से पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में गोल करके

0: स्कोर बराबर कर दिया, जबकि लुटारो मार्टिनेज ने 90 मिनट में गोल करके 2-1 से अर्जेंटीना की जीत में अहम रोल अदा किया। अब इतवार की रात को फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। मर्दों की क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में शोपिया गार्डन्स में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। भारत को इस सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। भारत ने मंगल को बर्मिंघम में पहले एक रोजा मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। सीरीज का तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच इतवार को लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले इलाके और उड़ीसा में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मशरकी राजस्थान, मगरबी राजस्थान और मगरबी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के बाज हिस्सों में आज शदीद गर्मी का इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में जुजवी तौर पर बादल छाए रहने और हवा में नमी के साथ मौसम गर्म रहने की पेशगोई की गई है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शेयर सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा प्रताप ने भारत और बरतानिया के दरमियान हुए जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदे के नाफिजुल अमल होने की खबर को अपने पहले सफे की बड़ी खबर के तौर पर शाये किया है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि ये भारत बरतानिया शराकतदारी में एक अहम लम्हा है। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने पार्लियामेंट हाउस में 2 मुंतखब अरकान मंसूर अली खां और रजनीश कुमार अग्रवाल को राज्यसभा की रुकनियत का हलफ दिलाया। इस खबर को प्रताप ने पहले सफे पर पेश किया है। सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए की लागत वाली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है। इस खबर को कई अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर 2 सड़क प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। भगवान जगन्नाथ और उनके 2 भाई बहनों की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज उड़ीसा के शहर पुरी में शुरू हो रही है। अमेरिका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड को 1-2 गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2 103.5 MHz, मीडियम वेव 268.81 मीटर। इसके अलावा आप हमें DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आप इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो प्याम सुबह। मैं हूं आपकी मेजबान रिफत आरा और मेरे साथ हैं शबीर अहमद।
3: रिफत जी, मैं कर रहा हूं सामीन बापत अक कशुर बहुत पेश।

0: आपने ट्यून किया आकाशवाणी श्रीनगर और आप समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह। मैं हूं आपका मेजबान शबीर अहमद वानी और मेरे साथ है मेरी साथी रिफत आरा। समय सुबह के 9 बज रहे हैं।
1: आज की सुर्खियां सुर्खियां सुर्खियां
0: समीन, आज जुमारात है 16 जुलाई सन 2026 ईस्वी मुताबिक 30 मुहर्रम अल हराम 1448 हिजरी। मुकामी रोजनामों की सुर्खियों लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान शबीर अहमद वानी और मेरे साथ है मेरी साथी रिफत आरा। अखबारात लिखते हैं, सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम के बीच सालाना अमरनाथ यात्रा जारी, नया संगमील अबूर, 12 दिनों में 3 यात्रियों की आमद। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भगवती नगर बेस कैंप में सहूलियात और खिदमात का जायजा लिया, हमवार और बिला रुकावट यात्रा हमारी अवलीन तरजीह, इंतजामिया के तमाम अफसरान की सराहना।
2: एक और सुर्खी, डिजिटल मीडिया की तरफ बढ़ता रुझान, बेरोजगारी और रोजगार के मुतबादल जराए की कमी बुनियादी असबाब।
0: जंतर मंतर एहतजाज के लिए दिल्ली जाना तय, इजाजत नहीं मिली तो दिल्ली में अगला लाहे अमल तय करेंगे, उमर अब्दुल्ला।
2: गैर तस्दीक शुदा मसनूआत की तशहीर बा एतबार कारोबारी इदारों के लिए बड़ी तबाही, गैर पेशेवर अफराद का मैदान में आना न सिर्फ समाजी बल्कि पेशेवराना सहाफत के लिए भी नुकसानदेह।
0: 12 दिनों में 3 लाख यात्रियों की आमद, सालाना

0: अमरनाथ यात्रा, डायरेक्टर जनरल CISF का दौरे जम्मू, सिक्योरिटी इंतजाम और यात्रियों को फराहम की जाने वाली दीगर खिदमात का लिया जायजा।
1: अमरनाथ यात्रा 2026 का नया तारीखी संग मेल 13 दिनों में 3.25 लाख की गुफा में हाजिरी। तारीखी भैरव यात्रा कौमी विरसे की फहरिस्त में शामिल, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया राजौरी के लिए काबिल फख्र लम्हा करार।
0: एक अंग्रेजी अखबार की सुर्खी है, एनक्रोचमेंट ऑफ फुटपाथ हैम्पर्स पेडेस्ट्रियन मूवमेंट इन श्रीनगर।
1: कश्मीर वादी में गर्म लहर की पेशनगोई, श्रीनगर में दर्ज हरारत 37 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान, महकमा मौसमियात।
0: मोलमोज फाउंडेशन एंड जीके लैब्स कंडक्ट वर्कशॉप ऑन अर्ली डिटेक्शन ऑफ जीआई कैंसर्स।
1: रामबन में दिलदोज वाकया, भारी पत्थर गिराने से साबिक सरपंच जाम बहक।
0: डीसी श्रीनगर इंस्पेक्ट्स की ऑनगोइंग डेवलपमेंट वर्क्स एट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बिमना।
1: लेबर इस्लाहात की तरफ अहम पेशरफ्त, चीफ सेक्रेटरी ने नए लेबर कोड्स की अमल आवरी का लिया जायजा।
0: एक उर्दू अखबार की सुर्खी है, वादी में बढ़ती हुई महंगाई, सरकार काबू पाने में नाकाम, अवाम का इजहार अफसोस और तशवीश। पंजाब में गोश्त सप्लाई का तनाजा खत्म होने के बावजूद गोश्त की कीमतें आसमान पर, मार्केट चेकिंग के लिए महकमा फूड की एनफोर्समेंट विंग को फिर से मुतहरक किया जाए, अवामी हलकों का मुतालबा।
1: अखबार लिखता है, जुलाई के पहले 14 दिनों में जम्मू व कश्मीर में 15 बार बादल फटे, बादल फटने के बढ़ते वाकयात पर माहिरीन की तश्वीश, मौसमियाती तब्दीली को जिम्मेदार करार। अचानक सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और सड़कों की तबाही, हिमालयी खत्ता ज्यादा खतरात से दुचार।
0: कारगिल विजय दिवस से कबल साबिक फौजियों और खवातीन का खराज अकीदत मार्च, श्रीनगर से द्रास और कारगिल रवानगी।
1: पुलवामा में पनीर बनाने वाली दो फैक्ट्रियां फूड सेफ्टी खिलाफ वर्जियों पर बंद, अवामी सेहत को खतरा, पनीर के नमूने जांच के लिए लेबोरेटरी रवाना। नाकिस सफाई और गजाई मयार के खिलाफ वर्जियां, FDA की सख्त कार्रवाई।
0: पासपोर्ट शहरियों के मुल्क से रवानगी को मुनज्जम करने वाला दस्तावेज है, वजारत खारजा, शहरियत साबित करने का जरिया नहीं, सिर्फ सफर के लिए जारी होता है।
1: नशा मुक्ति मुहिम के तहत मनशियात फरोशों के असासों पर शिकंजा मजीद सख्त, कुलगाम में मनशियात के दो मुलजमान की 1 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद जब्त।
0: एक अंग्रेजी अखबार की सुर्खी है, क्लाइमेट चेंज रोडवर्क्स स्ट्रेन कश्मीर फॉरेस्ट, ऑफिशियल्स कॉल ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंजर्वेशन एफर्ट्स टू इकोसिस्टम टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम।
1: अखबार लिखता है, कारगिल विजय दिवस से कबल साबिक फौजियों और खवातीन का खराज अकीदत मार्च, श्रीनगर से द्रास और कारगिल रवानगी।
0: हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान इक्तिसादी व तजारती महादे अहम संग मील, वजीर अजम महादे के आज से नाफिज होने से मुतलिक पोस्ट पर अपना रद्द अमल जाहिर किया।
1: डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने टंगमर्ग में मुफ्त तिबी खिदमात के जरिए बेशुमार गरीबों की जिंदगियों को छुआ, उमर अब्दुल्ला।
0: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 6,000 जायरीन का नया जत्था जम्मू से रवाना।
1: डॉक्टर मुस्तफा कमाल की वफात, मुख्तलिफ तबकाए फिक्र की शख्सियात ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अब्दुल्ला खानदान की ढारस बंधाई, मरहूम की अवामी सियासी और समाजी खिदमात को शानदार खराज अकीदत।
0: एक अखबार की सुर्खी है, ड्यूटी के दौरान CRPF का एहलकार दम तोड़ गया।
1: सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली की बात करना बीजेपी के मौकफ को तकवीत देने के मुतरादिफ है, आगा रूहुल्ला।
0: देखभाल के कामों के पेश नजर बिजली बंदिश का शेड्यूल जारी, कब कब और कहां कहां बिजली की सप्लाई बंद रहेगी का ऐलान।
1: श्रीनगर में इंसदादी मनुष्यात रैली, LG की 100 रोजा मुहिम की हिमायत में मुख्तलिफ शोभाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत।
0: समय सुर्खियां जारी है, हमारे साथ बने रहिए।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर, चिनार बुक फेस्टिवल।

0: Organized by National Book Trust India in collaboration with District Administration Srinagar. Together we read, together we lead.
1: Hamari zindagi ke liye zaruri malumat.
2: Mahirin ki ara, tajrubat aur rehnumai.
3: उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव फंडिंग रखी है और स्टेट गवर्नमेंट ने न कि इसको एक्नॉलेज किया, इसको चैनलाइज किया, अपनी तरफ से अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है।
1: सेहत के मशवरे
4: ऑर्थोपेडिक कुंती तकलीफ ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू सम ग्रुप्स
1: साइंसी मालूमात और रोज

0: मुअस्सर और बावकार अंदाज में।
1: आकाशवाणी श्रीनगर का मॉर्निंग लाइव शो पयाम में सुबह।
0: इल्म और आगही का संगम हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक पयाम में सुबह।
1: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर पयाम में सुबह।
2: समीन वक्फे के बाद सुर्खियों में आपका फिर से खैर मकदम है।
3: अखबार लिखता है, सांबा में बैन अल-अक़वामी सरहद के करीब 2 गोले बरामद, बम नाकारा बनाने वाले दस्ते ने महफूज तरीके से तलफ कर दिए।
2: मेरे हाथ में एक अंग्रेजी अखबार है, इसकी सुर्खी है, कश्मीर सेट फॉर हॉटेस्ट डेज ऑफ सीजन बिफोर वेट स्पेल रिटर्न्स।
3: स्टेटहुड कैन बी अचीव्ड थ्रू टॉक्स नॉट कन्फ्रंटेशन, बुखारी। एनसी मैंडेट गोज बियॉन्ड स्टेटहुड, रहुला वोज टू कंटिन्यू रेजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज।
2: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड स्ट्रेंथन ह्यूमन पोटेंशियल नॉट रिप्लेस इट, LG Manoj Sinha।
3: Human activity takes heavy toll on Kashmir's wetlands।
2: एक उर्दू अखबार की सुर्खी है, पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरों में 9 अफराद हलाक।
3: AI not replacement but force multiplier for human potential, LG Manoj Sinha।
2: आबनाए हुरमुज टूल का फैसला वापस ले लिया, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप।
3: अखबार लिखता है, चिल्ड्रन अस्पताल बेमिना के करीब फुट ओवर ब्रिज, एस्केलेटर और सराय की तामीर शुरू, मरीजों और तीमारदारों को बड़ी राहत मिलेगी। श्रीनगर में जारी बेशतर तरक्याती मनसूबे तकमील के आखिरी मरहले में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर।
2: मलेशिया में किसी भी इसराइली को पाया गया तो फौरन मुल्क बदर कर दिया जाएगा, मलेशिया के वजीर आजम का ऐलान।
3: भारत और बरतानिया जामे इक्तसादी व तिजारती माहिदा एक नए दौर का आगाज, इक्तसादी तिजारती और सरमायाकारी के रवाबित मजीद मुस्तहकम होंगे।
2: तेल खरीदारी, अमरीका के रूस पाबंदी बिल में ज्यादा से ज्यादा टेरिफ 500% से घटाकर 100% करने का फैसला।
3: लद्दाख में मोबाइल दुकान चोरी का मामला 72 घंटों में हल, नेपाली नचाद 3 मुलजिमान गिरफ्तार, चोरी शुदा माल वापस बरामद।
2: ईरान पर बड़े हमले पर गौर, ट्रंप का सिचुएशन रूम में अहम इजलास।
3: इंस्टामार्ट और HPCL का इश्तराक, भारत में पहली बार ऑन डिमांड LPG सिलेंडर की फौरी होम डिलीवरी का आगाज।
2: मेरे हाथ में एक अंग्रेजी अखबार है, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ सीक्स ऑडिट इंक्वायरी इनटू सैनिटेशन फाइनेंसेस एट बाबा ऋषि श्राइन।
3: फ्रिसल में अवामी शिकायत सुनने के लिए अवामी राबिता प्रोग्राम मुनाकिद, डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया।
2: भारत में कसीरुल जहती को मुस्तकबिल के लिए मौजू बनाने के लिए अक्वाम मुत्तहिदा की नजरसानी का मुतालबा किया।
3: बाज़ाबता इजाजत या मजीद किसी मवासलत का इंतजार किए बगैर 19 जुलाई तक दिल्ली में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाए, 20 जुलाई को जंतर मंतर रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को लेकर एहतजाज, तमाम मेंबरान असम्बली और अरकान पार्लियामान को नेशनल कॉन्फ्रेंस हाईकमान की हिदायत, 52 सियासी रहनुमाओं को भी शिरकत की दावत। 20 जुलाई के जंतर मंतर एहतजाजी प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं, पार्टी रहनुमा 19 जुलाई को दिल्ली के लिए रवाना होंगे, इजाजत नहीं मिली तो दिल्ली में अगला लाहे अमल तय करेंगे, उमर अब्दुल्ला।
2: आखिर पर खेल सफे से खबर, इबादत बिकम्स फर्स्ट एथलीट फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर टू कंप्लीट 119 किलोमीटर सोलो रन। समीन, ये थी आज की सुर्खियां।

आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आबिदा अख्तर। मरकजी काबीना ने मुल्क में सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को फरोग देने के लिए सेमीकंडक्टर 2.0 प्रोग्राम को मंजूरी दी है, जिसके लिए 1,27,500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। काबीना के फैसलों से मुतलिक मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर इत्तला और नशरियात अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर 1.0 की कामयाबी के बाद यह नया प्रोग्राम भारत को आलमी सेमीकंडक्टर सनत में एक मजबूत मकाम दिलाने की समत एक अहम कदम साबित होगा। वजीर खारजा डॉ अजय शंकर ने कहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती व टेक्नोलॉजी काउंसिल TTC का तीसरा इजलास दोनों फरीकों के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि मुजवजा आजाद तिजारती माहिदा FTA, सिक्योरिटी व दिफाई शराकत दारी और मोबिलिटी फ्रेमवर्क इस शराकत दारी को नई जहत देंगे। इजलास के बाद मीडिया के साथ बात करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एतमाद पर मबनी मजबूत ताल्लुकात कायम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वाराणसी में कल डॉ सुरेश अवस्थी स्मृति न्यास की तरफ से 20वें पुण्य स्मृति दिवस तकरीबात के सिलसिले में AI इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स के मौजू पर एक कलीदी खुतबा पेश किया। LG ने इस मौके पर डॉ अवस्थी को खराज अकीदत अदा करते हुए उन्हें एक ऐसा अजीम स्कॉलर और दानिशमंद करार दिया जिन्होंने समाज में मुस्बत बदलाव लाने और कौम की जड़ें मजबूत करने में पॉलिटिकल साइंस को बरोएकार लाया। उन्होंने कहा, अगरचे मसनू जहानत ने जिंदगी के हर एक शोबे में एक मुस्बत बदलाव लाया, ताहम एक जी शूर समाज

0: समाज को इसका जरूरत के मुताबिक हसासियत के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। सदरी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर अजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने अलग अलग पैगाम में उन्होंने कहा कि रथ यात्रा भारत की रूहानी और सकाफती गुनागुनियत की आकाश है। उन्होंने दुआ की कि ये यात्रा लोगों के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी भगवान श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दुआ की कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हम सब के लिए अमन, तरक्की, खुशहाली और फलाह बहबूद का बाइस बने। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आसान तरीके पर जारी है और अब तक लगभग 3,40,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। इतलात के मुताबिक आज सुबह 8 बजे तक 2,595 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। एलजी मनोज सिन्हा ने इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों की आमद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए यात्रा के आसन नकाम में शामिल महकमों की सताइश की है। दरी आसना आज मुख्य भगवती नगर यात्री निवास से 5,195 यात्रियों पर मुश्तमिल 15वां काफिला वादी पहुंचा। इनमें 3,450 यात्री पहल गाम जबकि 1,745 यात्री बालतल के रास्ते यात्रा कर रहे हैं। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर डॉ. बिलाल महिदीन भट्ट ने अकिनगाम में श्री शिवा भगवती स्थापन का दौरा करके वहां शिवा भगवती जयंती के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने मुतालिक अफसरों को हिदायत दी कि वह श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाए। दाखिला व डिजास्टर मैनेजमेंट और बाजाबदकारी महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंद्रेकर भारती ने कल सांबा में बेला मनोहर गांव का दौरा करके वहां नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स बटालियन हेडक्वार्टर कायम करने के लिए निशानदेही शुदा अराजी का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए तमाम तर लवाजमात को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। दीही तरक्की और पंचायती राज महकमे के सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद की सदारत में जम्मू कश्मीर में JKRLM उम्मीद के तहत अमलाई जा रही लखपति दीदी पहल से मुतल्लिक स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग मुनक्कद हुई। इस मौके पर फ्लैगशिप लखपति दीदी स्कीम की अमलावरी में तेजी लाने पर जोर दिया गया। सेक्रेटरी मौसूब को बताया गया कि जम्मू कश्मीर में अब तक 2,40,000 खवातीन ने लखपति दीदी का मकाम हासिल किया है। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने SKICC श्रीनगर में मुनक्कद होने वाले चिनार बुक फेस्टिवल के तीसरे शुमारी के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। ये 9 रोजा फेस्टिवल नेशनल बुक ट्रस्ट और नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की तरफ से 18 जुलाई से 26 जुलाई तक मुनक्कद किया जा रहा है। शुमाली कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान एथलीट इबादत वली ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के पैगाम को आम करने के लिए कल लाल चौक अनंतनाग से DC ऑफिस बारामला तक का 119 किलोमीटर का सफर 10 घंटों और 55 मिनट के अंदर तय किया। आखिर में दर्जे हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.9 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय सुबह के 9:30 हुए हैं।
2: रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर की पेशकश, शहर शहर मंजर।
3: आदाब, अवामी मसाइल व मुतालबात पर मबनी प्रोग्राम शहर शहर मंजर का ताजा शुमारा लेकर हम हाजिर। प्रोग्राम के आगाज में आइए सुनते हैं हमें मौसूल हुई कुछ फोन कॉल्स।
4: बहुत संगम वशी पे मोहम्मद शाहबा ऋषि सर अवशत पट त्रेश नाचनो त्राए वाटर सप्लाई वशी कुत LTP पाइप सर रोज कामयाब कह तो पनो यमो लिफ्ट इरीगेशन स्कीम बाकी महलन इस जन यह ऋषि महल वनक त्रेहत चूल अत कुत पट त्रेश त्रेश कर पाइप तो नश त्रेश वो जल्द यून ब्या सिलसिल तो मगर सू दुख नर पत आयो प्रसन्न शेकदर LTP पाइप रबर पाइप कहता जान सतरव दोन कोचन तो पत् कहीं पे तहसील जनपुर बनो डिस्ट्रिक्ट शुपियन ओर LDM आई तन ओर LDMO दि मे वादे ऋषि साहब तोतान नरान योतान से आब दमो PhD असिस्टेंट इंजीनियर सन बुलि ओर दिवन पग कल वात तु आब तो कहीं पाइप थो त्र दोन कोचन रबर पाइप तो पत् सर कहीं ना पाइप तो ना आब
5: फेरोज अहमद रैना वादी पर नाज बुनि नाजर अप नालेज गड़क बनो लट थोत थोत तो मगर नाल गई डाउन नाल।

0: Kodoşerankinin. Apoçuma cevini 90 90 kazan var ya. Apoçum bana fabrika sıpakınır kinin. Şahımışı kazan ziyat problem. Layaçana asan kinin. Bakan şahsan bu rol gibi de apoçmadın nalemez kazan fabrik. Apoçuma cevini bunlar güzeli. Bu adlama Allah kalmış tamat. Apoçuma cevini nalemez var ya.
1: Bu adlama bandi poratak. Bu adlama işte sözü gibi ne? Ne mu? Eee vayetine? Ama sen şar banaymış, kaç banaymış, kaç banaymış, kaç banaymış, kaç banaymış, kaç banaymış. Lakin, bana yer tete ve ipra alınır. O kesin kireye ben sanç edersin. Mağara bana en tam kıyas da alınır. Çünkü, dönüm tam güler yer. O diye kim söz bilsen ne var? Ya ya barış yerine otman için düşün ki. Gormuz olsun hatta suyu biraz yer tamam, ya ahı direksin. Bana azı tatıyım, kaç direksiniz, kaç direksiniz. Bana bu kadar güler yer olsa, madur cüzdayı şahsar mıydı, suyu alın işi daya. İkram, yıkat vardır, ne hükümet ama.
2: Muhammed İsmail Bak. चौकी बाल कुपवाड़ा जोन ऋषि गवर्नमेंट मिडल स्कूल लोनमाला गुंड जोन ऋषि डाय हथ बाकी जेर तलीम यम कम टीचर हज कमी ये टीचर पांच आसान बे तो बचन हज तलीम ठीक लेकिन अस स्कूल यानी कि जन हाई स्कूल और इन स्कूल बचन गे गमस मजा आसान पकन इन पे रेडी चौकी बल पांच ग्राम क्रालपुर कपूर यप जंगली जानवर खतर रोजान इन वतन यम किन हम हकान पकूल गति कह बे गाड़ वालो किराय तोलमुत यप ब्या मसल डिस्पेंसरी अकट जिंदिश मज डॉक्टर ड्यूटी दिवान यह गोस बोर्ड हस्पताल आंदिश मज यम कि पेवान सिविल ट्रांसपोर्ट वालन पे मरीज वात कपूर या श्रीनगर पे रेफर कर जास रुपये पे दिन ये तल्क कैंप ये गेट ये त्रा कह दपा कि सरपंच सुन अनु लिखित एम अनु लिखित अ त्रो ये मुश्किल अहि कत गि डिप्टी कमिश्नर सोबस तय ताकि तुम दान उकन तवजो तो सन मसल ग हल।
3: सामीन वादी कश्मीर में इन दिनों सियाहती सरगर्मियां अरूज पर हैं। हजारों की तादाद में मकामी मुल्की और गैर मुल्की सयाह रोजाना मुख्तलिफ सियाहती मकामात की सैर करके कुदरती नजारों का लुत्फ लेते हैं। सियाहत का शोबा यहाँ की इक्तिसादियात में भी एक अहम रोल अदा करता है। इन दिनों जारी सियाहती सरगर्मियों के ताल्लुक से जिला कुपवाड़ा के बाशिंदों ने शिकायत की है कि इस जिले को इस तनाजुर में फरामोश किया जा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि जिले का खूबसूरत और दिलकश सियाहती मकाम बंगस वैली हनूज बंद है और सयाह इस मकाम की सैर से कासिर हैं। कुपवाड़ा के हमारे नुमाइंदे रफीक अहमद की ये रिपोर्ट।
4: कश्मीर के कई अहम सियाहती मुकामात ताहल सियाहती सरगर्मियों के लिए नहीं खोले गए हैं, जिसकी वजह से मुकामी लोगों और सयाहों में तशवीश पाई जा रही है। इन मुकामात में आलमी शोहरत याफ्ता सियाहती मुकाम बंगस भी शामिल है, जो अपनी कुदरती खूबसूरती, सरसब्ज मैदानों और दिलकश मनाजर की वजह से सयाहों की पहली पसंद समझी जाती है। मुकामी बाशिंदों का कहना है कि बंगस जैसे सियाहती मुकाम की बंदिश से न सिर्फ कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में सेहत मुतासर हो रही है, बल्कि उन लोगों का रोजगार भी मुतासर हो रहा है जो सेहत से वाबस्ता हैं। कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के होटल मालकान, टैक्सी ड्राइवरों, घोड़ा बानों और दस्तकारी के शोबे से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बंगस को जल्द अज जल्द सयाहों के लिए खोल दिया जाए। लोगों का कहना है कि शोहर आफाक सियाहती मुकाम बंगस की बहाली और बर वक्त खोले जाने से न सिर्फ सयाहों की आमद में इजाफा होगा बल्कि मुकामी मौशियत को भी फरोग मिलेगा। इस हवाले से कुपवाड़ा के नौजवानों ने शहर शहर मंजर को बताया।
5: मैं चौधरी सलीम, चेयरमैन बंगस वैली ट्राइबल वेलफेयर ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से हूँ। हमारी ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और ऑनरेबल एलजी साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बंगस वैली एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर नॉर्थ कश्मीर में आता है, एक बहुत बड़ा कुदरत का गुलदस्ता है। अनफॉर्चुनेट के बंगस वैली में जो भी कश्मीर वैली में टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे उनको ओपन किया गया, लेकिन बंगस वैली आज भी बंद है। टूरिज्म के हवाले से टूरिस्ट वहां पर नहीं आ पाते हैं और हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी, हमारी गुजारिश रहेगी यहाँ की आवाम की तरफ से, यहाँ के यूथ की तरफ से ऑनरेबल एलजी साहब को और सीएम साहब को कि बंगस वैली जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसको ओपन किया जाए, ताकि यहाँ के जो सदियों से लोग माइग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे बंगस में, ताकि जिन्होंने बंगस वैली की हिफाजत की है, जिन्होंने बंगस वैली की देखभाल की है, यहाँ के फॉरेस्ट की, यहाँ की खूबसूरती की, ताकि वो लोग अपना रोजगार कमा पाए।
6: मेरा नाम आजाद नक्शबंदी है, मैं कुपवाड़ा से हूँ और मैं एक समाजी कारकुन हूँ।
5: पिछले 10-12 साल से मेरी कोशिश रही है कि टूरिज्म को यहाँ पे प्रमोट किया जाए, खास करके बाटे टूरिज्म को।

0: उसको लेकर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें हमें रियासती सरकार और इंडियन आर्मी का भी बड़ा सपोर्ट रहा। और आज की डेट में देखा जाए अगर जिले कुपवाड़ा जो है एक उभरती हुई टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है, लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए बदकिस्मती की बात यह है कि हमारा बंग्स जो है, जो मेन हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कुपवाड़ा की, वो अभी तक बंद है। जहां तक ताल्लुक है बॉर्डर टूरिज्म का, केरन सेक्टर ने भी विटनेस बड़े ही लार्ज स्केल पे इस साल टूरिज्म को देखा। रियासत से भी और बिरून रियासत से भी बहुत ज्यादा टूरिस्ट आए। तंगधार हो, वहां पे रिसेंटली जो एक वो पहाड़ी कल्चरल सेंटर बनाया गया, सरकार की ओर से एक विल की जरूरत है और सरकार इस चीज को संजीदा नहीं ले रही है किसी भी सूरत में। मेरी एक बार फिर से रियासती सरकार और एलजी इंतजामिया से गुजारिश है कि बराए करम यहाँ पे टूरिज्म को खोल दें, यहाँ की तरक्की को यकीनी बनाएं।
1: जरूरत इस बात की है कि बंगस को सेहों के लिए खोल दिया जाए ताकि सेहत को फरोग मिले, मुकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा हों और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो और इलाके की मईशत को तकवीत हासिल हो। शहर शहर मंजर के लिए कुपवाड़ा से मैं रफीक अहमद।
2: सामईन, कुदरत ने वादी कश्मीर को जिन तहाइफ से मालामाल किया है उनमें आबी पनागाहें बुनियादी अहमियत की हामिल हैं। आबी पनागाहें न सिर्फ वादी की खूबसूरती में इजाफा करती हैं बल्कि माहौलियात में तवाजुन बरकरार रखने और पानी की फराहमी को यकीनी बनाने में भी अहमियत की हामिल हैं। अलबत्ता शर्त यह है कि इन आबी पनागाहों की सफाई सुथराई के जरिए इनको आलूदा होने से बचाया जाए। मुशाहिदे में ये भी आया है कि बेशतर आबी पनागाहों की हालत नागुफ्तबे है क्योंकि कई मकाम पर घरों और तिजारती इदारों से निकलने वाला फुजला और कूड़ा करकट इन्हीं आबी जखायर में बहाया जाता है। निगीन झील की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। लाल बाजार में वाका जीडी गोयनका स्कूल के आसपास रहने वाले बाशिंदों ने शिकायत की है कि इस इलाके में एक नदी कूड़ा करकट लेकर निगीन झील में मिलती है। ये नदी न सिर्फ झील को आलूदा कर रही है बल्कि मकामी लोगों के लिए भी सुहानी रूह बनी हुई है। मकामी बाशिंदों की नुमाइंदगी करते हुए उमर कॉलोनी लाल बाजार के रियाज अहमद नामी एक बाशिंदे ने शहर शहर मंजर को बताया।
3: SS6 उमर कॉलोनी ए रोजान जीडी गोइंग कास्त सानी कॉलोनी दरमियान शाख नाल वसान इस तमाम लाल बाजार उमर कॉलोनी बाकी एरियान सोरी ड्रेन पकनावान पानस सीटन और यह कोच नाल जन पत निगीनस मजन याजी गसान अस कोर वारिया लटे हुकामन ये रिक्वेस्ट कि ये कर तो साफ अम सी बैड स्मेलिंग अमुक आब सानन गारन मजन अचान वारिया लटे गए इस लाउडास निशन थी सेक्रेटरी यूजन लाउडा उस सेक्रेटरी ने मिस दिन मुख्तलिफ वफूद एप्लीकेशंस दिस ऐसी अत कर कैसी पजिराय अत छु हालत छी ये गमस ही छी तोता हुआ फाउल स्मेलिंग दीवान कि अस गे हितन बच बीमार गसिन एशिन हकान दर मुसरवित अपर यूजन आब यवान छु सोतन वारियन हिजन मकान मजन वारिया लट करे ऐसे हुकामन सतन रिक्वेस्ट करो ऐसे फ्रॉम पिलर टू पोस्ट गए ऐसे मुख्तलिफ वफूद है के आस करता इवन MLA यूजन ऑनरेबल MLA ती छु यापर मज ऐसे तेमिस ती गई ऐसे तेमिस सुच आयो एक दोन और अपर की नथ लाउडा वाइस चेयरमैन ती आयो मगर कह कार्रवाई गई न आथ पतलिक आ छिमो हम किस दहानस बैठन रोडस बैठन हस क्या था डीवाटरिंग पंप धोमुत क्या था दबा ऐसे सब बनाओ जमीन ती छु एक्वायर मगर कहीं ती कार्रवाई गई ने तिथा परेशान अच्छा वो फिक्र तरह अस क्या कर यहन बंद कर यह पकन क्या कर सीवर लाइन तमो पकन ड्रेन तथा मेन होल तनम तरह फिक्र यह निगीन लैक प्रोटेक्शन फोर्स क्या तम गमेंट इन पान वन क्या तम अत मत स्कूल तम हेल्थ हैजर्ड यह इसलिए हुकामन मेहरबानी कर रिक्वेस्ट करा हैंड फोल्डेड कि अत करो कह कार्रवाई करो साफ करने कोशिश ताकि ट्रामा मेंटल ट्रामा लुकन हवाले सत्य सू गह दूर।
2: प्रोग्राम के इस मरहले पर आइए सुनते हैं कुछ मजीद फोन कॉल्स।
4: लार गांधरबल अब्दुल गनी छम नाव बेहतरीन प्रोग्राम रेडियो कश्मीर चलावान ये माहौलियात मुताबिक इस कहीं ओत ड्रग्स मुतलिक जायो ये मुहिम चलाए इतने पड़े स्कूल मुझे कुल लगे इस कहीं यूपी मन जाए तो इतने करो लगे तमो कुल बगे इतने पे करो मुहिम करो बहुत सरकार अपील करा अत कर आम लोग क्या सरकार अगर ये मुहिम चालू कर ओत ड्रग्स मुतलिक करो वारिया फर्क गई इतने पे गोस इन कुल माहौल आज नसल से मैं बसा ये मकल अस क्या बहुत तुम्हें रेडियो प्रोग्राम बोलान ग्लेशियर यम तक माहिर तुम अनान तम से मकलियाम कम से कम अगर थोड़ा बहुत ही गए यह अत रोकथाम तो गए कुल अगर दमो जंगलों वगर यह करो यह माहौल करो यह थोड़ा ठीक।

0: रुपया और पैसेंजर के ऊपर ले आया जाए, तो आप मुझे ये बताइए हमारे एआरटीओ कहाँ है और ये अपनी मनमानी के हिसाब से इनको कोई पूछताछ नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि जो एक बेचारा दिहाड़ी दयाल लगाने वाला जिसकी 300 रुपया या 500 रुपया जो बेचारा दिहाड़ी लगा के आएगा, तो आप मुझे ये बताइए आखिरकार उसने 5, 7 या 10 किलोमीटर पर तो जाना ही जाना है, मेटाडोर में तो बैठना ही बैठना है या सुमो में बैठना है, कोई भी बस हो कोई भी गाड़ी में तो आकर उसने बेचारे जाना है। लेकिन ये नाइंसाफी है और मैं इमीडिएट एआरटीओ को ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर इमीडिएटली संज्ञान लीजिए और सख्ती से इन लोगों से आप निपट लीजिए। और कम से कम जो है जो रेट्स है, अगर पहले 20 रुपया लिया जाता था तो आज उससे 2 गुना या 1 गुना एक्स्ट्रा इजाफा कैसे हुआ? क्या ऐसा गाइडलाइन या ऐसा एआरटीओ साहब ने क्या इनको इस तरीके की हिदायत दी है?
1: उम्मीद यही की जा सकती है कि मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार है वो फौरी तौर इन शिकायत का अजाला करने के लिए सामने आने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को राहत मिले। शहर शहर मंजर के लिए अनंतनाग से मैं तसद्दुक रशीद।
2: जिले बड़गाम के बाशिंदों ने जिले में सड़कों की खस्ताहाली की शिकायत की है। जिले के बाशिंदों के मुताबिक मुख्तलिफ सियाहती मकामात खासकर तोसे मैदान को जाने वाली सड़क इंतहाई खराब हालत में है, जिसके नतीजे में लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों ने जिले इंतजामिया से सड़कों की तामीर तजदीद का काम शुरू करने की मांग की है। हमारे नुमाइंदे शौकत शाह की ये रिपोर्ट।
3: शहरी श्रीनगर से 60 किलोमीटर की दूरी पर वाका तोसे मैदान सियाहती मकाम अपनी कुदरती हुसन से मालामाल है और इस कुदरती खूबसूरती में निखार पैदा करने की खातिर इस मकाम को सियाहती नक्शे पर लाया गया। 2017 में इस सियाहती मकाम के लिए तोसे मैदान डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की गई, जिससे यहां मकामी आबादी में उम्मीद पैदा हो गई थी कि सियाहती मकाम को जाज़िबे नज़र बनाने और यहां मुनज़्ज़म तरीके से तरक्याती सरगर्मियों की तकमील मुमकिन हो पाएगी। तहम 9 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी ये सियाहती मकाम सियाहों को अपनी ओर रागिब करने में नाकाम रही है, जिसकी बुनियादी वजह इस सियाहती मकाम पर सियाहों को वो सहूलियात मयसर नहीं जो उनकी जरूरियात को पूरा करती। मुख्तलिफ देहात से तोसे मैदान तक जाने वाले अलग अलग रास्ते मुतअद्दिद मकामात पर खस्ता पड़े हैं, जबकि सियाहों को इस सियाहती मकाम पर दीगर अहम सहूलियात भी दस्तियाब नहीं, जिससे यहाँ सियाहती सरगर्मियाँ मांद पड़ी हैं। मकामी आबादी के तासरात
4: खाग बुशपु रोजान मेन ये खाग रोड ये खाग पेठ अंद हेत खराब सितार तोसे मैदान तय अंद हेत पकना डिपार्टमेंट वारे लटे करो वह फमिक यमिकशिर पे गए ठीक कोरख नीर कर कल शहर सुबह सुबह नी आंद खसे योर टूरिस्ट कसे योर यम गाड़ी तम गई अंद हेत खराब गाड़ वो मकान रोड दी पकुन कहीं टूरिस्ट गाड़ वल कथ बिचार यम दावा करा वन दावा करो मगर जमीनी सतह पम कर कहीं खसान अर पांचन टू गंदरपुर बठीपोरा रोड ये वातान ब्याान डायरेक्ट अर पांचन टू खाग मेन रोड अंद अर पांचन पे गुमरी पे अर पांच अंद खराब ترے کلومیٹر خاگی پہ ستار تین آند خراب سا روڈ یت اندر لوکل گاڑی وول مانا کھسن پائدل بالن کتیں بچار صرف تھوک سبز مدان تاون باقی تر فیسلٹی آند ہت نکل دن مہربانی کرم سن کرے دعوت کرتو پور
3: وقت کی اہم ضرورت ہے کہ توسے میدان سیاحتی مقام کو جاذب نظر بنانے اور یہاں سیاحوں کو بہتر سہولیات میسر رکھنے کی خاطر کوششوں میں تیزی لائی جائے، جس سے ملکی اور غیر ملکی سیاح یہاں کی سیر کو ترجیح دیں اور مقامی آبادی کو بھی معیشی اور ترقیاتی فوائد حاصل ہو سکیں۔ شہر شہر منظر کے لیے بڈگام سے میں شوکت شاہ۔
2: پروگرام کے آخر میں آئیے سنتے ہیں عوامی شکایات پر مبنی کچھ مزید فون کالز۔
5: حضرت جالبو گاندربل پہ فاروق احمد گنے کریں عرض آج برو 10 ویری اس یہاں نالکن آب نالکوس بنا یل ترا کہین آج سے حضرت نالکہ ترا یل ترین منٹن سے آب جاگ تیوتہ وسان آب پن دہ پن دہ سے وسان آب اتھ نیوان سمجھی اس کیا کرو کہ آج برو 10 ویری اس آب پکان اصل وانا کال تھی وانا صبح تھی وانا دپان اس سمجھی لائن کیا گا اس محض پکان آب مہربانی کرتو یہ بات تم تامت
6: شہر شہر منظر اہن حظ سر بس امتیاز احمد ملک بریگام بڈگام پہ عرض کران اچھا ٹرانسپورٹ دقت پرابلم گھس آپ سمارٹ سٹی بس سروس چالو گھن بڈگام پہ بریگام تین اچھا پرابلم دقت سومو ول لوٹان سر مہربانی کرتے واتن تو یہ شکایت علاقہ کامن تین گئی تہذ مہربانی۔

0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
1: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉल स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉल, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
3: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सविंतुएसी प्रोग्राम बोजान सूफी सदा ये प्रोग्राम छु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बज पेठ साढ़न दहन बजन ताम नश्र सब्दान।
2: समिन तो ऐसु सूफी वचारण पेठ मबनी प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। सामिन आपको बताते चले कि इस वक्त प्रोग्राम जारी है पयाम सुबह, और पयाम सुबह की नशरियात में अब शामिल होने जा रहा है लाइव इंटरैक्टिव शो। लीजिए समात कीजिए।
3: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी, पयाम सुबह।
4: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयाम सुबह,
3: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात,
4: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु पयाम सुबह।
3: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से
4: मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर पयाम सुबह।
5: सुनो सजना
4: पयाम सुबह।
2: जहाँ सामीन आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर मीडियम वेव 268.8 मीटर, इसके अलावा आप हमें DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। ये लाइव मॉर्निंग शो है पयाम सुबह। हमने वादा किया था और वादे के मुताबिक एक मेहमान जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, इनके साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। और जो मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो एक मारूफ कलमकार हैं, नाहिदा अंजुम साहिबा। आपका कलाम रेख्ता में भी आया है, आप ट्रांसलेटर हैं, आपने विमेन एम्पावरमेंट पे काम किया है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन पे भी आपने लिखा है, काम करती हैं आप कॉरपोरेट प्रपोजल डेवलपर भी हैं। इसके अलावा भी आपने बहुत कुछ किया है जो हम इन्हीं की जुबान से सुनेंगे। पहले तो उनका खुश आमदीद करते हैं प्रोग्राम में। नाहिदा साहिबा, आपका खुश आमदीद प्रोग्राम में।
6: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: बताइए, सुबह सुबह आप यहाँ आई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में?
6: अल्हम्दुलिल्लाह, सच कोई दिक्कत नहीं हुई, अल्लाह ताला का फजल है, करम है।

0: अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, अल्लाह ताला का करम हम सब पे हमेशा बना रहे। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी तालीम कहाँ हुई और आप कहाँ से हैं।
1: जी, तो मेरा नाम नाहिदा अंजुम है, जैसे कि आपने अभी मेरे तारुफ में सुना। मैं बेसिकली कुलगाम यानी साउथ कश्मीर के एक ज़िला कुलगाम है, वहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ। वहाँ का एक छोटा सा कस्बा है यारीपुरा, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ, और वहाँ से ही उसी कस्बे से मैंने तालीम भी हासिल की है। इसमें जो दिलचस्प बात ये है कि जिस इदारे से मैंने तालीम हासिल की, वो अपने वक्त का एक बहुत मुनफरिद इदारा था।
0: जी,
1: वो एक ऐसा इदारा था जहाँ आजकल आप देखते हैं कि वैली रिनाउनड, जो हमारे मशहूर मिशनरी स्कूल्स हैं या जो हमारे कॉन्वेंट्स यहाँ हैं, वो इट वाज इन द लेट 90s जब मैं वहाँ पढ़ती थी, वो उसी तर्ज पे था। एंड दो इट वाज अ लिबरल स्कूल, बट इट वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव स्कूल। और उस स्कूल ने, उस इदारे ने जो मेरी बुनियाद बनाई, उसकी वजह से शायद जहाँ आज मैं हूँ, मैं उसका वो कंट्रीब्यूशन कभी नहीं भूल सकती हूँ। तो वो मैं वहाँ से मेरी तालीम शुरू हुई, फिर उसी डिग्री कॉलेज कुलगाम ज़िले में ही मैंने अपना BSc केमिस्ट्री, जूलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस में किया।
0: जी,
1: एंड फिर उसके बाद जो मैंने श्रीनगर में फिर से मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया।
0: okay.
1: और आज मैं श्रीनगर में ही रिहाइश पज़ीर हूँ।
0: अच्छा, बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, आपके अंदर जो शौक हुआ लिखने का, ये कैसे हुआ? कोई ऐसा वाकया हुआ या कोई ऐसी शख्सियत जिनसे तरगीब मिली?
1: देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है, सो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी। अल्लाह ताला ने हर किसी इंसान को, आप उसको अल्लाह ताला कहें, ईश्वर कहें, खुदा कहें, जीसस कहें, जो भी है, ऑलमाइटी जिसको हम कहते हैं, हर किसी इंसान को एक फितरत पे पैदा किया होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं बचपन से मैं ऐसी थी जहाँ मैं मुझ में एक ऑब्जर्विंग पोटेंशियल बहुत था, वेर आई यूज टू ऑब्जर्व। मैं मुशाहिदा करती थी सबकॉन्शियसली, क्या चीज़ें हैं मेरे इर्द गिर्द। ऐसा कोई शौक नहीं था, ना घर में ऐसा कोई माहौल था कि कोई लिखने वाला था। लेकिन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ पे मैं करूँगी कि एक खातून का रोल जो है मेरी ज़िंदगी में क्या रहा है, और वो है मेरी मोहतरम वालिदा। उनको, वो एक वर्किंग वमन थी, उन्होंने पढ़ाई अच्छे से की थी, और उनको म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक था, और वो गाती भी बहुत अच्छा थी, क्योंकि जो हमारी फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, शादी होती है वगैरह, तो उनमें वो गाती थी। और उनको म्यूज़िक का इतना शौक़ था कि जब मैं पैदा हो गई, तब पाकिस्तान रेडियो के भी सॉन्ग्स इधर आते थे, तो नाहिद अख्तर उनमें एक सिंगर हैं, हम बहुत मशहूर हैं, तो उनके नाम पे उन्होंने मेरा नाम नाहिदा अंजुम रख दिया।
0: अरे क्या बात है।
1: जी, तो मैं तो बच्ची थी, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन शायद जो हमें साइंस भी बोलता है और जो हमें फलसफा भी समझाता है कि इन सब चीज़ों के, आपको माँ ने अपनी कोख में किन इरादों से कंसीव किया है, फिर आपको पैदा किया है, आपको किस नज़र से देखती है, और आपका नाम किन शख्सियात के नाम के साथ जोड़ती है, आपकी निस्बत वो किस से देती है, इन चीज़ों का असर हमारी ज़िंदगी पे बहुत होता है, हमारी शख्सियत का बहुत होता है, ये हमें साइकोलॉजी भी कहती है। तो शायद वो चीज़ जो है, वो जो आर्टिस्टिक टिंज मेरी माँ का है इन हर पर्सनैलिटी, शायद वो मुझ में ट्रांसफ़र हो गया है, और शायद वो मुझ में डोमिनेंट रहा है। एज सच हमारे घर में कोई ऐसा लिटरेरी माहौल तो नहीं था, लेकिन मेरी माँ का ये आर्टिस्टिक साइड जो है, एंड वो ये भी कहती हैं कि बहुत शौक था मुझे कि जो मेरी कोख से पैदा हो उसमें लिखने का बहुत ज़्यादा वो एक पोटेंशियल आ जाए, लिखने का स्किल आ जाए। तो ऐसे करते करते मुझे एक वाकया बहुत अच्छे से याद है। मैं कोई चौथी या पांचवी क्लास में थी, और ये कोई फरवरी का महीना था, बर्फ़ पिघल रही थी हर तरफ से, क्योंकि गांव में एक बहुत, मेरी आंखों के सामने वो मंज़र है जो मैं वो पेश नहीं कर सकती हूँ लफ्ज़ों में, वो कितनी खूबसूरत, वो एक खूबसूरत समा कैसा होता है जहाँ बर्फ़ पिघल रही होती है और तेज़ धूप होती है, वो सर्दी की धूप होती है। मैं अपनी चाची के साथ बरामदे पर बैठी, धूप सेंक रही थी, और मेरे हाथ में कॉपी और कलम थी। वो कॉपी और कलम सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो खूबसूरत सी मुझे लगी थी, इट वॉज़ ए ग्रे कलर कॉपी। और मैं बस इस पिघलती बर्फ को देख रही थी, और कुछ मुझे अंदर से सूझा कि मैं इस पे क्यों ना लिखूं, क्यों

0: मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ तो है इस कुदरत के इस मंजर में जो रो रहा है किसी चीज़ के लिए. आई एग्जैक्टली रिमेंबर दैट थॉट एंड आई बिगैन टू राइट. इस पे मैंने पोएम्स लिखना शुरू की बिकॉज मैं एक पढ़ाकू बच्ची थी. अच्छा. मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी. जहाँ मेरे इर्द गिर्द के हमसाएगी में बच्चे जो हैं जो लड़कियाँ हैं वो पानी लाती थी, वो बर्तन धोती थी, वो मवेशियों के साथ यू नो और वो बहुत अच्छा काम है वो करती थी. मेरा उनमें ज़्यादा दिल नहीं लगता था. अच्छा. मैं किताबें ढूंढ ढूंढ के लाती थी. अच्छा मैं कॉलेज
1: कीड़ा थी आप.
0: जी जी बिल्कुल. और इसमें मुझे कभी किसी ने नहीं कहा है कि आप पढ़ो, तभी मुझे वो शौक था. वो खुद से ही मुझ में था. मैं किताबें ढूंढ ढूंढ कर लाती थी क्योंकि शायद मैंने कहा ना मेरी माँ जो है वो पढ़ी लिखी है तो शायद वो उनकी तरफ से
1: ऐसी बात है. जी बिल्कुल.
0: तो वो मैंने पोइम्स बहुत सारी लिखी और लिखते लिखते मैंने ये इरादा कर लिया, ये जैसा भी है, छोटी बच्ची थी, ये जैसा भी है जो भी है, मैंने एक पूरी कॉपी सिर्फ इट आई टाइटल्ड इट विद द नेम टीयर्स.
1: ओके.
0: आई हैड नो आइडिया उस टाइम के इसका मफ़हूम अगर हम डीपर लेवल पे जाएं क्या है. तो वहाँ से शुरू होता है एक्चुअली मेरा लिखने का सफ़र. तो ऐसा कोई शौक नहीं था, ऐसा कोई पर्टिकुलर वाकया नहीं था, लेकिन वो एक याद मेरे पास है जहाँ से मैंने लिखना शुरू किया. फिर बीच में छोड़ा क्योंकि टीनेज के तकाजात होते हैं, ट्रेंड में कुछ और है, तुम अंदर क्या कर रही हो, यू शुड बी विद अदर गर्ल्स, यू नो, एक्सप्लोरिंग लाइफ एंड ऑल. बट फिर मैंने ये भी देखा डे बाय डे जितना मैं कॉन्शियस हो गई माहौल कैसा है, समाज कैसा है. लिखना जो है ये एक बहुत बड़ा हथियार है. ये अगरचे एक हुनर भी है लेकिन एक बहुत बड़ा हथियार भी है जो आप शायद कह नहीं सकते हो सारे समाज से, अगर जबान से कह नहीं सकते हो, अगर आप वो लिखो आप खुद भी हल्का महसूस करते हो और आप दूसरों के लिए भी बहुत सारे पैगाम छोड़ सकते
1: जाते हैं.
0: तो इस तरह से शुरू हुआ मेरे लिखने का सफ़र.
1: आगे का सफ़र कैसा रहा, कहाँ कहाँ क्या क्या किया आपने, ये भी आपसे जानेंगे. लेकिन उससे पहले एक नगमा प्ले करते हैं आपके लिए.
0: जी श्योर.

0: करना हो, चाहे वो एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट हो कि समाज मर्द की ही वजह से चलता है, जबकि हम देखते हैं एक पहिए से कोई गाड़ी नहीं चलती है। तो पेट्रियार्की ने क्या किया, हमारी पूरी दुनिया में ग्लोबली एक औरत को दबाए रखा। एक औरत पे आज भी बहुत ऐसे मजालिम हो ढाए जाते हैं जो दिखते शायद नहीं हैं, जो शायद हमें लगता है कि औरत काम करने निकलती है, ऑफिस जाती है, इसको शायद हक मिल गया, लेकिन वो औरत ऑफिस सेटिंग में या जब वो कम्यूट करती है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में होती है, वो कितना सेफ फील करती है, उसके घर वालों को कितनी फिक्र लाहक होती है, क्या उसको भी वही हकूक, वही आज़ादी अपनी काम करने की जगह पे मिलती है जो एक मर्द को मिलती है, हमें पता है इसका जवाब नहीं है। तो ये मसले कहाँ से आते हैं, ये मसले पेट्रियार्की, ये पेट्रियार्की सिस्टम के हैं। अब ये पेट्रियार्की आज के ज़माने में हम अगर बोलेंगे, क्या इसका शिकार सिर्फ औरतें हैं, नहीं, इसका शिकार मर्द भी है। और पेट्रियार्की इतना बढ़ गई है, पेट्रियार्की इतना बढ़ गई है जहाँ औरत को ये बताया जाता है कि तुम लायक नहीं हो, तुम वहाँ तक नहीं पहुँच सकती हो जहाँ तक एक मर्द पहुँच सकता है। आप इसका अंदाज़ा ऐसे कर सकते हैं कि हम उस हद तक पहुँच गए हैं कि अब मर्द को ये पेट्रियार्की का सारा सोशल कंस्ट्रक्ट जो है उसको ये खुद नहीं एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तमिस छुन पान पेवन, ये चलावन किया अच्छे जने में पाने पकना।
1: आपने कहा कि इसका असर जो है वो न सिर्फ औरत पर है बल्कि मर्द पर भी है, वो जी, कैसे
0: जी, हम यही बात करेंगे। देखिए, एक हम एक फैमिली यूनिट की बात करेंगे जो सोसाइटी का, हमारे समाज का बेसिक यूनिट होता है। लेट्स बिगिन फ्रॉम देयर। आप देखते हैं कि एक औरत जो है उमूमन ऐसा होता है, जो हमारी बच्ची है, जब उनकी शादी हो जाती है, वो ये कहती है, मैं चाह सकती आनंद, मैं जाम सकती आनंद, दर्द फेरिस पेट रोपियन दहान पेट, ये मुझे सोइन प्रैक्टिकल मसाइल, ग्राउंड लेवलिक मसाइल, बो लिबास क्यूच लागन, ये सारी मैं चुन हेर बाब या खानदार या द्रुई सनान, मैं चाह सनान, मैं चाह तंग करान। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू आवर ऑडियंस कि ये मसला कहाँ से शुरू होता है, किसने इस औरत को औरत पे ही जालिम बनाया, हम इसके बारे में कभी सोचते हैं? ये वचान साइकोलॉजिकली तोशली तान ये कह तुवान कि एक मर्द ने पहले एक औरत को, पहले अपनी वाइफ को किसी एक स्टेज पे उस तरह से दबाया हुआ था जहाँ अब एक सास को पता है मेरे घर का निज़ाम कैसे चलता है, मर्द पीछे हो जाता है, वो वही रिवायत आगे चलाती है, मर्द खुद पीछे बैठा होता है। आप अमूमन देखेंगी द विमेन ऑफ आवर हाउस होल्ड, या अक्सर बहू हैं, वो ये कहती हैं कि अश्विन पापा जी, लेट्स सी दे कॉल देयर फादर इन लॉ पापा जी, अश्विन पापा जी सन ही नहीं मगर यस्मीन हश, सुच छप कर बेहन, एंड दैट साइलेंस, That exact silence, that exactly is the problem of patriarchy. एक मर्द घर का मुहाफिज, घर का प्रोटेक्टर और फैमिली हेड होने के नाते क्यों अपने घर व घर के अफराद खाना की खबर नहीं रखेगा? तो अब आप बोलेंगे मर्द कैसे अफेक्ट होते हैं, आप खुद ही देखिए फिर उस घर में मसाइल कैसे उठते हैं, और ये घर घर की कहानी है, फिर उसमें शौहर इन्वॉल्व हो जाता है, फिर बाकी घर की मर्द, और फिर हम देखते हैं हमारे पास कितने केसेस आते हैं, बिकॉज आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वैसे कितने केसेस हमारे पास आते हैं जहाँ इन्हीं चीज़ों की वजह से कभी शौहर में डिप्रेशन होता है, कभी वाइफ में डिप्रेशन होता है, तो वो कहाँ से आता है? तो ये कहना कि पेट्रियार्की ने सिर्फ शायद औरत पे जुल्म ढाए हैं, क्योंकि पेट्रियार्की सदियों से जारी है।
1: آج چھنا اگر وچھو کہ آج ازک اس دور یہ ترقی یافتہ دور سری مرد پھرمت لیڈیز پھرمت تہوار باسان کہ آج زیادہ فرق یہ زن بروٹ اس گسان تحت ازکس دورس مزہ فرق آج مرد پروٹیکٹ کران پنہ زنانہ چاہے سو بین چاہے سو موز چاہے سو خاندارن سہیا ہیلپ فل
0: دیکھیے اس یہ ایک ڈبیٹیبل بات ہے ڈبیٹیبل بات اس حساب سے ہے کیونکہ جو میرا کام ہے میں زیادہ کام گراس روٹ لیول پہ کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے لکھنے سے بہتر جب تک وہ اخبار میں چھپے گا اور پوڈ کاسٹس کر کے یا کہیں پہ انٹرویوز یا کہیں پہ کوئی تقریرات کر کے
1: جی
0: ان سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے جتنا جب آپ آس پاس کے لوگوں میں جا کر کام کرتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں مسئلے کیا
1: ہے بالکل
0: میں یہ وسوخ سے کہتی ہوں ود ایویڈینس ہمارے پاس ڈیٹا بھی ہے کہ جتنا آج کا دور ترقی

0: दुर्गा माता होती है, क्योंकि उनके 10 हाथ होते हैं और एक हाथ से वो एक काम कर रही होती है,
1: घर भी संभालती
0: है, घर भी संभाल रही होती है। अब मर्द जो हमारे हजरत है वो भी किसी से काम नहीं है, लेकिन हमारा फील्ड बहुत वसी होता है। कहीं मैं इधर से चम्मच हिला रही हूँ सब्जी में, कहीं मैं इधर से वेबसाइट का सोल्यूशन निकाल रही हूँ।
1: बिल्कुल,
0: तो ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो ये मुझे इस बात पे याद आया कि शायद कोई ये सोचे लिटरेचर में तो इंटरेस्ट है इसका और ये काम शायद अंदर बैठ के करती होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम ओवरसीज भी काम करते हैं, हम अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं, हम अमेरिकन सरकार के साथ भी काम करते हैं।
1: क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। आगे भी आप क्या क्या करती हैं? और आपने चम्मच हिलाने की बात की तो खाना वाना भी पकाती हैं, वो भी आपसे पूछेंगे, और कितना मजेदार खाना बनाती हैं
0: जी जी,
1: वो भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नगमा सुनते हैं
0: जी।

क्या बिजनेस चला रहे हैं और उनकी वजह से आज दसियों घर जो हैं वो आबाद हैं। तो उनकी तरफ जब कभी थक जाती हूँ उनकी तरफ देखती हूँ, और ये कहना कि हर्डल्स नहीं आए, देयर ऑलवेज आर हर्डल्स। एक शादीशुदा औरत को जितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ज़रूरी ये नहीं है कि उसकी सास बुरी हो, उसका शौहर जो है वो पस्त नज़र हो। अगर वो वसी नज़र भी हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर हैं, या जैसा मेरा ससुराल है बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, या जैसे मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें पढ़ाई की बहुत ज़्यादा तरगीब दी कि आप पढ़ो, क्योंकि मेरी और जो मेरी सिबलिंग्स हैं कोई PhD कर रहा है, कोई किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई जॉब कर रहा है। तो ये मेरे माँ बाप की देन है, लेकिन चैलेंजेस कम नहीं आए हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आए हैं। क्योंकि एक तो बच्चे जने हैं, फिर जॉब भी की है, फिर इधर से मेरा बैकग्राउंड, मैं बेसिकली गांव से हूँ, और फिर शहर आना, यहाँ अपने हर्डल्स अलग से, अलग अलग तरह के हर्डल्स आए हैं। और जिन इशूज़ पर मैं प्रेसिंग इशूज़ पर बात करती हूँ, मैं ये बात फ्रेंकली बोलूँगी कि जो हमारा बहुत बड़ा जो एक मर्दों की कैटेगरी

0: जॉब भी की है, फिर इधर से मेरा बैकग्राउंड, मैं बेसिकली गांव से हूँ और फिर शहर आना, यहाँ अपने हर्डल्स अलग से, अलग अलग तरह के हर्डल्स आए हैं। और जिन इश्यूज़ पे मैं प्रेसिंग इश्यूज़ पे बात करती हूँ, मैं ये बात फ्रेंकली बोलूँगी कि जो हमारा बहुत बड़ा जो एक मर्दों की कैटेगरी है उनको ज़्यादा नहीं बचता है, क्योंकि जब आप मर्दों की ताकत पे हाथ डालते हैं उस पे बात करना ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है।
1: सही बात है।
0: और जिस खित्ते में हम रहते हैं, चाहे वो हालात के एतबार से हो, चाहे वो इसी सोशल इशूज़ के एतबार से हो, तो उसमें हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने जो मेरी लिखावटें हैं, जो मेरी राइट अप्स हैं, वो रिजेक्ट भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक राइटर जो होता है उसको हमेशा पजीराई मिली है।
1: तनकीद का निशान भी बन जाता
0: बिल्कुल
1: है।
0: और वो तनकीद जो शायद हमारे हक में नहीं होनी चाहिए, हमने वो उस तनकीद को भी देखा है। अच्छा, बहसित एक लड़की अपने लिए समाज में पोजीशन बनाना, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। लेकिन एक बात मैं अपने सामईन को बोलना चाहूँगी कि जो इंसान शोहरत के लिए अपने फन को इस्तेमाल करता है, अपने हुनर को इस्तेमाल करता है, वो बहुत परेशान रहता है इन चैलेंजेस की वजह से। और एक इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अगर कोई हुनर दिया है, कोई फ़न दिया है, वो फ़नकार होता है, और उसको शोहरत का लालच नहीं होता है, उसको स्टेज की लालच नहीं होती
1: नहीं
0: है, उसको प्लेटफॉर्म्स की लालच नहीं होती है। वो ये सोचता है कि अगर मुझ में लिखने का फ़न है, अगर मुझ में जमींदारी अपने आप में एक फ़न है, या जो भी, मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे पास जो हमारे जूते ठीक करता है वो भी अपने आप में एक फ़न है। और जो किसी भी अपने फ़न को इस्तेमाल इसलिए करता है कि वो दुनिया को एक बेहतर जगह बना सके, उसकी राह में अगर कोई भी चैलेंज आता है, मैं ये वसूख से कहती हूँ, आप भगवान को मानते हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, आपकी मदद करने वो खुद आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई है क्योंकि मैं एक औरत हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक घर की बहू हूँ और फिर मेरे रिश्तेदारों ने ये ना सोचा हो कि एक बहू हो कि कैसे आगे पढ़ रही है। मैंने जॉब भी अपने ससुराल में ही की, मैं घर से जॉब नहीं करती थी, मैंने अपना मास्टर्स भी ससुराल में ही किया। ऐसा नहीं है कि मुझे चैलेंजेस नहीं आए हैं, चैलेंजेस तो बहुत आए हैं, बच्चे पालने की वजह से भी, घर की जिम्मेदारियां उठाने की वजह से भी, एट टाइम्स ये भी कि मुझे किसी ने नहीं समझा है, वो सारे चैलेंजेस आए हैं और आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, शायद मैं किसी एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच गई हूँ जहाँ मुझे साहिल मिल गया है, ऐसा नहीं है, चैलेंजेस आते हैं। बट मेरी जो जहनीत है, मेरा जो दिमाग है, मेरा जो दिल है और जो मेरी अपनी जो थ्योरी है, वो ये है कि ये दुनिया जो है, इट इज़ अ होम ऑफ सफरिंग, इट इज़ अ प्लेस ऑफ सफरिंग। आप ये मत सोचिए कि मैंने कुछ हासिल किया और इससे मेरी ज़िंदगी जो आसान बन जाएगी, कदरे आसान हो सकती है लेकिन कभी मुकम्मल तौर पे आसान नहीं हो सकती है।
1: बिल्कुल। अच्छा नाहिदा अंजुम साहिबा, आपने चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन पर भी काम किया है।
0: जी,
1: क्या किया है आपने?
0: देखिए, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन जब हम बोलते हैं, हमारे जहन में सिर्फ आता है बच्चा मजदूरी, चाइल्ड लेबर, बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे समाज में राज तो बहुत टाइम से होते हैं लेकिन हमारी उन पे कभी नज़र नहीं जाती है। व्हेन आई स्पीक अबाउट चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, मैं उस वक्त जो एक बच्चा माँ की कोख से जब वो पैदा हो जाता है, फिर जो उसका फैमिलियल और सोशल सिस्टम उसके इर्द गिर्द होता है, मैं उसको एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम मानती हूँ। आप बोलेंगे कि आप क्या कह रही हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आप देखते हैं हमारे समाज में ड्रग एडिक्शन कितना बढ़ गया है, हम इंटरनेट और सोशल मीडिया एडिक्शन कितना बढ़ गया है।
1: बिल्कुल।
0: आप देख सकते हैं कि हर दूसरे घर में जो है बच्चा एक नाफलक औलाद कहलाता है, माँ बाप डिप्रेशन का शिकार है। अगर डिप्रेशन क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार नहीं है लेकिन आप खुद देख सकती हैं इर्द गिर्द अपने हमसाएगी में, अपने समाज में हर कोई अपने बच्चों को लेकर परेशान है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि परेशानियाँ आती कहाँ से हैं? ये हमारे बच्चे जो हैं, ये हमारे समाज में नासूर जो फैले हुए हैं, ये कहाँ से आते हैं? देखिए, जब हम समाज को एक नासूर लग जाता है तो ये बात हमें हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि हमारा समाज इस तरह से कमज़ोर हो जाता है, उसमें फिर बाकी नासूर कैसे फैलते हैं और पनपते हैं पता ही नहीं चलता है। तो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के बारे में मैं ये बोलूँगी कि मेरा तो ये विद एविडेंस मानना है, और मैंने देखा भी अपने तजुर्बात मैंने किए हैं कि

0: इस दुनिया में आज ग्लोबल लेवल पे औरत के बाद या औरत के साथ अगर कोई इस्तेसाल का शिकार है वो जानवर और बच्चे हैं। जितना हम कोशिश करते हैं कि हम मास एजुकेट करें लोगों को, जानवरों के हकूक हैं, औरतों के हकूक हैं, बुजुर्गों के हकूक हैं, वालिदैन के हकूक हैं,
1: जी,
0: हम ये देखते हैं कि हमने मजहब को भी इसी तरह से ट्विस्ट किया है, जहां हम माँ बाप के हकूक और औलाद के फ़राइज़ पे बात करते हैं, लेकिन औलाद के हकूक और माँ बाप के फ़राइज़ पे कम बात होती है।
1: बात होती है
0: हमें ये
1: जी।
0: बात मान लेनी चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं आज के, खासकर मैं जब अभी आ रही थी, मैं देख रही थी कि गाड़ी में एक नौजवान लड़का था और उसके बगल में एक बुज़ुर्ग खातून खड़ी थी।
1: जी
0: बहुत अरसा हमने सफ़र किया और मैंने देखा उस औरत को सीट किसी ने नहीं छोड़ी। ये एक छोटा सा तजुर्बा, एक छोटा सा मुशाहिदा है। शायद वो बच्चा 11th या 12th का होता, कुछ ऐसा ही, 17-18 साल का, लेकिन शायद 17-18 साल के कश्मीरी बच्चे में, जहाँ हम अपनी सकाफत के साथ बहुत ज़्यादा खुद को मुंसलिक मानते हैं, उसमें ये सेंस होनी चाहिए थी कि ये बुज़ुर्ग खातून शायद खड़ी नहीं रह सकती हैं। और ये एक छोटा सा मुशाहिदा है, आप खुद देख लीजिए हमारे समाज की हालत क्या है। अब आप सोचेंगे कि देखिए, अगर हम शैलो लेवल पे बात करें, जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि पूछो ऐसी बाजिश खराब गमित, क्या कहाँ चाहिए सवाल प्रश्न यम कम से खराब गमित, तो वो सानन गरन हूँ माहौल क्यों आसन। राइट फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड, जब हमारा बच्चा, क्योंकि मैं नफसियाती तौर से भी इन चीज़ों को देखती हूँ, मैं सिर्फ इनको समाजी तौर से नहीं देखती हूँ, इनके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, ये कहीं बहुत पहले शुरू हो चुका होता है, और फिर हमें एक ड्रग एडिक्शन की वजह से या बदतमीजी या जो जिसको हम बोलेंगे कि जो मुआशरे में जो एटिकेट्स ऑफ लिविंग हैं उनके खिलाफ जब बच्चे जाते हैं, उस सूरत में नज़र आता है। जब हम बच्चे को, आप देखिए, हम बच्चे को फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड डांट डपट माथहती डिपेंडेंस ओबीडियंस ये सब, इन सब पे कितना स्ट्रेस देते
1: स्ट्रेस
0: हैं।
1: देते हैं बिल्कुल।
0: अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि हमें बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखानी है, लेकिन एक तरीक़ेकार रखा है अल्लाह ताला ने, एक तरीक़ेकार हमेशा अक्रॉस ऑल रिलीजन्स है, जहाँ, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कायनात में कोई मुकद्दस ज़ात है वो इंसान है, और पहले वो इंसान बच्चा होता है। जब
1: सही
0: इस
1: बात।
0: बच्चे को अर्ली पीरियड में ही वो इज़्ज़त वो एहतराम अपने घर से नहीं मिला, तो आप क्या तवक्कु रख सकते हैं कि हमारा समाज कल को एक बेहतर समाज नज़र आएगा। आपको क्या लगता है कि जब आपका बच्चा टीन एज में आ जाता है और उसमें वो एक्सप्लोरेशन का स्टेज आ जाता है, जहाँ वो चाहे उसकी सेक्सुअलिटी हो, चाहे वो उसका दुनिया कैसे चलती है, दुनिया में क्या हो रहा है, वो सवालात लेके घर आना चाहता है, या
1: जी
0: उसके खुद की खुद में जो तब्दीलियाँ आती हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल फ्री तरीके से हमारे पास आके उसके बारे में बात कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। हम कभी अपने बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं कि वो माँ बाप के साथ फ्रीली बात करें। हम बच्चों को ये बोलते हैं और आवी मुअल थपके
1: छाप
0: रिस
1: कर
0: बीज,
1: दिए बिल्कुल।
0: लेकिन क्यों? हम एहतनाम अपनी जगह है, इज्जत अपनी जगह है, इसके नियमन बच्चन सा स्पेस दिवन सुहाक दिवन इस मन अल्लाह ताला हन दितमुच अस वनान अल्लाह ताला ते अस पन दीन ते वनान। और खलील जिब्रान भी एक जगह अपनी किताब में लिखते हैं कि जो बच्चा होता है वो आपकी मिल्कियत नहीं होता है, आप उसको इस दुनिया में लाने का सिर्फ एक जरिया
1: जरिया
0: होते
1: है
0: हैं,
1: बिल्कुल।
0: आप सिर्फ एक जरिया होते हैं। वो अपनी एक फितरत पे आता है, वो आपकी फितरत पे नहीं
1: नहीं
0: आता है,
1: आता
0: वो
1: जी।
0: चाहे कितना भी आप जैसा हो, लेकिन वो आपकी दौलत भी नहीं है और वो आपकी फितरत पे भी नहीं है। वो अपने आप में एक मुनफरिद ज़ात है, जिसके अपने हकूक हैं, जिसको अपनी जगह चाहिए, उसका आपके साथ रिश्ता है, वो आप नहीं है, आप वो नहीं हो, आप दोनों का एक बॉन्ड है।
1: जी।
0: तो हमें यहाँ पे ये समझ आ जाती है, ये एक चीज़ पहले है, ये दूसरी चीज़ है, और इनको कोई चीज़ जोड़ती है,
1: सही बात है।
0: जैसे पेरेंटहुड उनको जोड़ता है, चाइल्डहुड उनको जोड़ता है कि वो आपसे पैदा हुए हैं। तो इस चीज़ को जब हम देखते हैं, ये एक बहुत वसी मौजू है, बच्चों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। मैं तो ये मानती हूँ, जब हम साइकोलॉजी में, मैंने रिसेंटली एक इंटर्नशिप की थी और उसमें एक बच्चे को मैंने देखा, उसका हुलिया, उसका लिबास डरा देने वाला था। ये मैं चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन पे बात कर रही हूँ। और वो क्या करता था, साइकोलॉजी में हमें इन्फॉर्मेशन तो कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है, लेकिन सामेन को ये बता दूँ कि हम किस नहज पर पहुँचे हैं। हमारी आज हालत क्या है सम

0: जी हाँ, आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2 103.5 MHz, मीडियम वेव 268.81 मीटर। इसके अलावा आप हमें DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। ये लाइव मॉर्निंग शो है पयाम सुबह। हमारी जो मेहमान हैं वो हैं नाहिदा अंजुम साहिबा, एक मरूफ कलमकार। तो नाहिदा जी, आपका जो कलाम है वो रेखता में भी आया है
1: जी।
0: थोड़ा सा हमें बताइए कैसे आया।
1: तो बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा, बचपन से मुझे जो लिखने का है शौक़, कैसे आ गया, मैं कैसी थी, मैं ऑब्ज़र्व करती थी। फिर मुझे लगता था कि आसपास के लोग तो ऐसा नहीं महसूस करते हैं शायद जैसा मैं करती हूँ, क्योंकि आज भी जब मैं बहुत सारे मौजूदात पे बात करती हूँ तो बहुत को लगता है कि ये क्या कह रही है, ये कैसे मौजूदात है, क्योंकि मैं फ़लसफ़ा के मौजूदात पर भी बात करती हूँ, फ़िलासफ़ी, तो मैंने उस पर भी लिखा है। तो अब रेखता का कैसे आया, क्योंकि मैं लिखती थी और बिफ़ोर कोविड मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर मैं पब्लिश करती। मैं कोविड के पहले की बात करती हूँ। और बड़ी बात यह कि मुझे शौक़ भी ज़्यादा नहीं था पब्लिश होने का। मैंने आपको इसे पहले भी कहा कि शोहरत, आई वॉज़ नॉट ड्रिवन बाई फेम, यस आई वॉज़ ड्रिवन बाई कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। तो जो मेरी लिख जो मेरे राइट अप्स हैं, जो भी मेरी राइटिंग्स हैं उनके मुतलिक ये बताऊं कि फिर सोशल मीडिया आ गया और मैंने सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू किया एंड बहुत अच्छे लोग मिले वहाँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया वैसे मैंने कभी यूज़ नहीं किया जहाँ लोग सिर्फ उस पर तफरी करते हैं। आज भी जब मैं सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ कुछ ना कुछ सीखने के लिए, चाहे मैं गाड़ी में बैठी हूँ चाहे मैं घर में बैठी हूँ, तो कुछ ना कुछ फ़लसफ़े, कुछ ना कुछ अदब के बारे में ही पढ़ती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वो वक्त ज़ाया करती हूँ, ये तो मेरा पहले से रहा है। तो बहुत सारे अच्छे लोगों से मैं जुड़ी और इसके बीच जो है बहुत सारे लोगों ने अप्रोच भी किया कि आप जो हैं प्लीज़ हमें अपना कलाम दीजिए, क्योंकि आप अच्छा लिखती हैं और अच्छे मौजूदात पे लिखती हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए। और मैं सिर्फ एसेज़ नहीं लिखती हूँ, आर्टिकल्स नहीं लिखती हूँ, मैं नज़में भी लिखती हूँ, मैं फ़िक्शन भी लिखती हूँ, उर्दू फ़िक्शन भी लिखती हूँ, मैं इंग्लिश पोइम्स भी लिखती हूँ, इंग्लिश फ़िक्शन भी लिखती हूँ, बोथ प्रोज एंड पोइट्री। तो ऐसे मैंने करके बहुत सारे उन्हें रिकमेंड किया कि आप प्लीज़ कीजिए इसमें पार्टिसिपेट। और वहाँ पर हमारे एक सालिम सुहेल साहब थे, तो उनसे मुलाकात हो गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका कलाम तो बहुत अच्छा है, तो आप प्लीज़ हमारे मैगज़ीन को एक कलाम दीजिए। तो समाहिको हमारा जो मैगज़ीन निकलता है यहाँ उर्दू का मैगज़ीन जी, तो उनको मैंने फिर अपना कलाम दिया और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो रेख्ता के काबिल है। तो इस तरह से जो है फिर रेख्ता में मेरी एंट्री हो गई।
0: जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बड़ा काम किया है आपने, अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड करती हैं,
1: शुक्रिया,
0: समाज की खिदमत की है अपने कलम से। हमारे पास अभी एक मिनट है, एक मिनट में आपका एक मैसेज जो हमारे पूरे समाज के लिए हो।
1: देखिए, हमें सबसे पहले जो मैं अपने सारे समाज को एक मैसेज देना चाहूँगी वो सिर्फ ये नहीं है कि औरत का इस्तेसाल होता है, या हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जहाँ हम शायद औरतों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं लेकिन मर्दों के बारे में बात नहीं करते हैं। तो हमें चाहिए कि एक कश्मीरी समाज जो है ये सिर्फ एक आम समाज नहीं है, इसमें जो

समय आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम पयाम सुबह। हमारी आवाज़ आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इच आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 68.8 मीटर ते FM 73.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन वलियो सूफियाना मौसीकी बोजो फनकार छ उस्ताद रमजान जो तुहिन सथी यमन निश बुझो तई मकामे आसावरी।

0: सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है
1: कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से ये बात कही। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने एक दूसरे के साथ इस विश्वास को विकसित किया है और अब इसे व्यापार तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ एसोचैम और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। इस समझौते से भारतीय व्यवसायों, लघु और मध्यम उद्यम तथा आम जनता को होने वाले फायदों पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त

जी सामयन, आप फिल्म नगमे समाप्त कर रहे हैं और ये नगमा आपने सुना फिल्म बुढ़ा मिल गया से। मजरू के बोल थे, आर डी बर्मन की मौसीकी थी, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें थी। और अब एक और खूबसूरत सा नगमा हमने आपके लिए क्यों किया है, ये है एक बार फिर मजरू के बोल। मौसीकार हैं एस डी बर्मन, लता मंगेशकर, भूपेंद्र और साथियों की आवाज़ें हैं और फिल्म है जीवल थीफ।

0: दोस्तों, आप फिल्म नगमे समाप्त कर रहे थे। आखिरी नगमा आपने सुना फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। इसके बोल लिखे थे अनजान ने, कल्याण जी आनंद जी ने मौसीकी तैयार की थी और इसमें आवाज़ें दी थी महेंद्र कपूर, आशा भोसले और साथियों ने। हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। अब हमारे यहाँ से खबरें नश्र होंगी, पहले उर्दू और उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है, खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आबिदा अख्तर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर अजम हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन से जिंद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वजीर अजम जिंद में 14,700 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा वजीर अजम चंडीगढ़ में 6,600 करोड़ रुपए जबकि जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई एक का इफ्तिताह भी करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वाराणसी में कल डॉ. सुरेश अवस्थी स्मृति न्यास की तरफ से 20वें पुण्य स्मृति दिवस तकरीबात के सिलसिले में AI इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स के मौजू पर एक कलीदी खुतबा पेश किया। LG इस मौके पर डायरेक्ट डॉ. अवस्थी को खराज अकीदत अदा करते हुए उन्हें एक ऐसा अजीम स्कॉलर और दानिशमंद करार दिया जिन्होंने समाज में मुस्बत बदलाव लाने और कौम की जड़ें मजबूत करने में पॉलिटिकल साइंस को बरूए कार लाया। उन्होंने कहा, अगरचे मसनूई जहानत ने जिंदगी के हर एक शोबे में एक मुस्बत बदलाव लाया, ताहम हम एक जीशूर समाज को इसका जरूरत के मुताबिक हसासियत के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भगवान श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दुआ की कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हम सब के लिए अमन, तरक्की, खुशहाली और फलाह बहबूद का बाइस बने। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आसान तरीके पर जारी है और अब तक लगभग 3,40,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। इत्तलात के मुताबिक आज सुबह 11 बजे तक 8,725 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। LG मनोज सिन्हा ने इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों की आमद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए यात्रा के आसन इनका में शामिल महकमों की सताइश की है। दरी आसना आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 5,195 यात्रियों पर मुश्तमिल 15वां काफिला पहुंचा। इनमें 3,450 यात्री पहलगाम जबकि 1,745 यात्री बालतल के रास्ते यात्रा कर रहे हैं। आज 2027 के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख में अब महज चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। इत्तलात के मुताबिक अभी तक जम्मू कश्मीर हज कमेटी को सिर्फ 2,700 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं जबकि इस साल हज कमेटी के पास लगभग 8,000 हज सीटों का कोटा मौजूद है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर डॉ. शुजात अहमद कुरैशी ने हमारे नुमाइंदे नूरुल ऐन इशरत के साथ बात करते हुए कहा,
2: हज 2027 के लिए एप्लीकेशन का सिलसिला जारी है। 20 जुलाई 2026 लास्ट डेट मुकर्रर की है। हमें तकरीबन 8,000 के करीब हमारा कोटा इस साल एक्सपेक्टेड है लेकिन अभी तक 2700 ही एप्लीकेशन आई है। तकरीबन 5,000 करीब कम एप्लीकेशन हैं। मोस्टली तो यही देखा जा रहा है कि जो हज की कॉस्ट हैं जो एस्कुलेट हो रही है पिछले कई सालों से, वही एक वजह है जिसकी वजह से कम एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर से आ रही है। श्रीनगर एम्बार्केशन नॉर्मली महंगा माना जाता है। अगर यहाँ के आजमीन दिल्ली से जाना चाहिए और किसी एम्बार्केशन जो 19 एम्बार्केशन इंडिया में किसी एम्बार्केशन से भी जाना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं, वही एम्बार्केशन चूज कर सकते हैं। हमने टेकअप किया है हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ कि डेट एक्सटेंड की जाए लेकिन थ्रू आउट इंडिया कितनी एप्लीकेशन हैं उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि एप्लीकेशन को एक्सटेंड करना है या नहीं करना है।
1: SKICC श्रीनगर में 18 जुलाई से 26 जुलाई तक चिनार बुक फेस्टिवल का तीसरा शुमारा मनक्द हो रहा है। इस सिलसिले में तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने इस सिलसिले में आज झील डल में एक शिकारा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। बुक फेस्टिवल की अहमियत और इंतजाम के ताल्लुक से नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर युवराज मलिक ने हमारे नुमाइंदे शेख तजमुल के साथ बात करते हुए

0: प्लेटफॉर्म्स पर रोशनी डालना चाहूंगी जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है. सबसे पहले हमारे पास जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए एक पोर्टल ओपन किया, एक इनिशिएटिव जिसको हम मेरा युवा भारत, माई भारत पोर्टल जिसको हम बोलते हैं. उसके साथ साथ एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम और एनआईकेएस यानी नेहरू युवा केंद्र संगठन, ये प्लेटफॉर्म जो है इनके जरिए जो नौजवान है वो रजाकाराना खिदमात, कायदाना सलाहियतों और कौमी तामीर से जुड़ने की इन प्लेटफॉर्म्स ने एक कोशिश की है. जैसे कि मैं आपको पर्सनली कहूँ, मैं 3 साल खुद ड्यूरिंग माय कॉलेज टेन्योर मैं खुद 3 साल एनएसएस के साथ जुड़ी रही हूँ. आज लाखों नौजवान शजरकारी, सफाई मुहिमात, खून के अतियात, ब्लड डोनेशन, कुदरती आफात के दौरान इमदादी सरगर्मियों और अवामी बेदारी की मुहिमात में एक किरदार अदा कर रहे हैं. अगर हम अपनी यूटी की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ भी नौजवान तब्दीली की नई मिसालें कायम कर रहे हैं. जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे जो वादी कश्मीर के कॉलेजेस हैं यहाँ पर भी एनएसएस, एनसीसी, एनवाईकेएस की यूनिट्स जो हैं वो ऑलरेडी हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल कर सकते हैं और इन खिदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं. लेकिन अक्सर हमें ये होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमें कोई फ्री में कुछ नहीं दे रहा है तो हम किसी को कुछ फ्री में क्यों दे, क्योंकि हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड. आप जब तक कुछ करेंगे नहीं आपको कुछ मिलेगा नहीं.
1: सही बात है.
0: तो इसमें अगर हम देखें जो भी एज अ वॉलंटियर जो भी काम किया करते हैं हम, एक तो हमें वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती ही है एज अ ह्यूमन बींग, हम और ज्यादा बेहतर हो ही जाते हैं. लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें सोसाइटी में हम बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं. मैं ये नहीं कह रही कि हम एक दिन में पूरा जो अपना सोसाइटी में जो भी इवल्स है उनको खत्म कर सकते हैं. मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी. जब हम मतलब जो एक कॉलेज का एनएसएस यूनिट होता है वहाँ हमें एक विलेज अडॉप्ट करना होता है. आप कोई भी नियर बाय विलेज अडॉप्ट कर सकते हैं. वहाँ पर अगर आप कोई कम्युनिटी स्कूल ओपन कर सकते हैं, आप उन बच्चों को, वहाँ बच्चे भी आ सकते हैं, बूढ़े भी आ सकते हैं, ख्वातीन भी आ सकती हैं, दैट्स लाइक एन ओपन स्कूल. और आप वहाँ एक जनरल एजुकेशन जो है प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे. ऐसा नहीं वो किसी एग्जाम के लिए ही, एटलीस्ट इतना उनमें हो कि कल को वो कहीं पे कोई बिल बोर्ड है वो पढ़ पाए, कोई फॉर्म जो है उसको फिल कर पाए. और जो ये एडॉप्टेड विलेज है इसमें आप सफाई का काम, सैनिटेशन वगैरह का काम कर सकते हैं और यही एजुकेशन का काम कर सकते हैं. इवन आप जो हेल्थ कैंप्स वहाँ पर जो है, जो आपकी लोकल मेडिकल फैसिलिटीज होंगी उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आप वहाँ मेडिकल कैंप्स भी लगा सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत, मैं कहूँगी पॉजिटिव चीज है सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए. तो जैसे मैंने आपसे कहा ये सब चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं. तो इससे हम ये हो सकता है कि जो हम नौजवान हैं, मैं खुद एक नौजवान हूँ, ये कहूँगी कि हम थ्रू वॉलंटियरिज्म हम सिर्फ मुस्तकबिल के ख्वाब नहीं देखेंगे, हम अपना जो हाल है उसको भी बेहतर कर सकते हैं. क्योंकि आज अगर हमारा प्रेजेंट अच्छा है तो डेफिनेटली इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर भी जो है वो अच्छा होगा. अब
1: ये बड़ी अच्छी सोच है कईमा, कि अगर हमारे आजकल के नौजवान में ऐसी सोच हो
0: जी.
1: तो वाकई में जो हमारा माशरा है बहुत ही खूबसूरत बनेगा. खूबसूरत नॉट इन द सेंस कि मतलब वो दिखने में खूबसूरत होगा, बल्कि उसमें वो खूबसूरती होगी जो हम महसूस कर सकते हैं
0: जी.
1: क्योंकि अगर इंसान में अंदरूनी खूबसूरती आएगी, सीरत आएगी, तो वो यही खूबसूरती बाहर भी फैला सकता है, सुकून ला सकता है, जो भी इवल्स हैं, जो भी गलत बातें हैं वो ख़त्म कर सकता है. और जाहिर सी बात है जैसे आपने बोला कि कोई अडॉप्ट आप करते हैं, कोई विलेज करते हैं, चाहे वो सैनिटेशन के ज़रिए या फिर एजुकेशन या हेल्थ जो सर्विसेज है, जब आप वो प्रोवाइड करते हैं तो आपका माशरा जो है बेहतर से बेहतरीन बनता है
0: जी. बिल्कुल. एक तो ये तो माशरे की बात होगी, मैंने आपसे अभी कहा कि हमें कुछ पर्सनल बेनिफिट्स भी चाहिए होते हैं इससे. तो अगर हम रिसर्च के हवाले से देखें, रिसर्च ये बताती है कि जो भी नौजवान रजाकाराना खिदमात करते हैं या कम्युनिटी प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं, उस सोसाइटी में जो है समाजी हम आहंगी, शहरी जिम्मेदारी और अवामी शिरकत जो है उसमें नुमाया इजाफा देखा गया है. या जो ये वॉलंटियर्स है इनमें आप देखेंगे, इनमें एक टीम कोऑर्डिनेशन इनमें बनता है और साथ में

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन, अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नष्ट करेंगे, जरा सा इंतजार कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस न करे। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरों मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी

0: night. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय पेश है एनसीईआरटी का तैयार करदा तालीमी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
1: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी W थापा।
1: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
1: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
1: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
1: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
2: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
1: यानी वाचिक परंपरा
2: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
1: श्रोताओ, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
2: जी।
1: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: अजीत जी, भोज या भूर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
1: जी। श्रोताओ, भोज पत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोज पत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोज पत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिनी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोज पत्रों पर लिखे मिलते हैं।
2: तो श्रोताओ, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
1: और हाँ श्रोताओ, भोज पत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
2: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था। लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार
1: जी।
2: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
1: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है
2: जी।
1: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
2: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी
1: जी।
2: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ।

0: जानते हैं कुछ और बातें।
1: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी। यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे। लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
0: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था।
1: जी, तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोडेक्स किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
2: जलवायु परिवर्तन।
3: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
4: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
3: जी,
4: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
3: जी, लेकिन वो कैसे?
4: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
3: जी,
4: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
3: जी,
4: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है यानी वर्ल्ड वाइड।
3: जी,
4: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
5: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
3: जी,
5: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
3: जी डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
5: जी,
3: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
5: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
3: जी।
5: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
3: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
5: जी
4: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है।
3: जी,
4: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
5: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना बहुत

0: अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
1: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
0: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
1: अच्छा
0: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
1: डॉक्टर नमिता
2: जी,
1: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
2: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है,
0: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
2: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
0: जी,
2: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
1: अच्छा,
2: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
1: बहुत सुंदर उदाहरण भैया। तो आप बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है?
0: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल,
2: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
0: जी,
2: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
1: बिल्कुल,
2: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
0: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
1: जी,
0: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम।
1: जी,
0: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
1: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
2: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
1: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
0: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
2: बिल्कुल,
0: और यदि पेड़ काटे भी जाएं तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
0: जी,
2: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
1: बिल्कुल, तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
2: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
0: जी
1: बिल्कुल,
0: और दिनेश जी यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
1: जी,
0: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
0: जी,
2: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
1: ये तो बड़ी गंभीर बात है, और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
0: जी,
1: कहीं ऐसा न हो

0: कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक, कुछ नए आयाम।
3: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: अपने से किताबें निकालो, चलो चलो अपना अपना पार्ट निकालो।
2: जी
1: मैं भी कह रहा हूँ, चलो शाबाश। हाँ गोपाल, इसको बोलो। हाँ इधर मेरी तरफ देखिए। हाँ शाबाश, अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
2: जी गुरुजी,
1: समझ गए?
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं हम।

0: पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी।
1: बेटा आगे तुम पढ़ाओ।
2: जी गुरुजी। पानी
3: पानी,
2: कुओं
3: कुओं,
2: नदियों
3: नदियों,
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है,
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरुजी झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो, चलो चलो शाबाश।
2: गंदे पानी के प्रयोग से,
3: गंदे पानी के प्रयोग से
2: अनेक बीमारियां हो जाती हैं,
3: अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
0: गुरुजी।
1: हाँ बोलो।
0: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो
2: जी,
1: चलो
2: जी,
1: ठीक से बैठो, इससे पीछे हो जाओ।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
2: जी।
5: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
6: हमारे गांव में दो कुएं हैं,
5: हाँ।
6: एक तालाब भी है।
5: अच्छा
2: मास्टर
5: अच्छा।
2: जी हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
5: शाबाश, बिल्कुल ठीक।
0: मास्टर जी वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
5: हाँ ये भी ठीक है।
7: मास्टर जी हमारे घर में तो नल है।
5: शाबाश। अरे बच्चों तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
2: मास्टर जी।
5: हाँ हाँ बोलो।
2: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
5: हाँ हाँ क्यों नहीं।

0: अच्छा, आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक?
1: जी मास्टर।
0: लिखो फिर, सब लिखो।
2: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिपेक्ष में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
3: दीदी, बोलो मालती।
4: दीदी, मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
3: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
4: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
3: ठीक।
4: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
3: हाँ, फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
4: जी।
3: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
4: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
3: हाँ।
2: अब जिस शब्द पर अटको, शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की ये शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थीं। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
5: नमस्ते
6: नमस्ते
3: बच्चों, नमस्ते
7: दीदी। ये,
3: अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
8: दीदी, ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
3: अच्छा
8: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
3: सच? प्रवीण, इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
7: गुलाब।
3: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
5: दीदी मैं बताऊंगी।
3: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
7: गुलाब।
3: हम्म।
7: गेंदा।
3: हाँ।
7: चमेली। और
3: हाँ,
7: चमेली।
3: चमेली।
7: सूरजमुखी।
3: सूरजमुखी, शाबाश।
2: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ इंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
3: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ। मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
2: जी जी।
3: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
2: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
3: जी, कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है, और सब

0: से छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
1: बहुत अच्छे।
0: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौटकर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
1: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
0: और मैंने भी तो सीखा इनसे
1: जी।
0: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
1: हल्के नीले रंग के?
0: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
1: अच्छा,
0: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
1: काहे की लिस्ट?
0: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
1: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
0: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
1: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है, तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: समय ना आप समाप्त कर रहे थे एनसीई।

0: आरटी का तैयार करदा स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम। हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
0: मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी श्रीनगर है। आई समीन आपको जुनून फिल्म का नगमा सुनाते हैं। आवाज़ें हैं विपिन सचदेवा और अनुराधा पौडवाल की।

दोस्तों, आप ये नगमा समाप्त कर रहे थे फिल्म कभी हाँ कभी ना से कुमार सानू और साथियों की आवाज़ें थी। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, हमारे अगले लाइन का इंतज़ार कीजिए। मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समीन 1:50 हो रहे हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नष्ट करेंगे। ज़रा सा इंतज़ार कीजिए।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। भारत ने जुग्राफियाई और सियासी महाजराई के दरमियान सिक्योरिटी और इकतसादी चैलेंजों से निमटने के लिए बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों के दरमियान करीबी इश्तराक पर जोर दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि तरक्की और कौमी सलामती में शाना बशाना पेशरफ्त हो। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को तजवीज किया है कि वो पांचवीं या छठी जमात से तीसरी जबान मुतारिफ कराए। भारत में पहली हाइड्रोजन पर मबनी ट्रेन का आगाज हो रहा है, जिसका मकसद माहौल के लिए साजगार और पायदार रेल मोबिलिटी को फरोग देना है। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आलमी नंबर 5 चीन की खिलाड़ी हान युई को सीधे सेटों में हराकर जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और क्रिकेट में आज शाम कार्डिफ में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा बैनुल अक्वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आलमी जुग्राफियाई सियासी तनाज़ियात के दरमियान सलामती के उभरते हुए चैलेंजों से निमटने के लिए करीबी इलाकाई इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों को अपने मफादात के लिए एक साथ मिलकर काम करने और फैसला कुन कार्रवाई करने की जरूरत है। वो आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक मुल्कों के कौमी सलामती के सरबराहों की पांचवीं मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब डोभाल ने कहा कि दुनिया को तनाज़ियात और जुग्राफियाई सियासी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है और मुल्कों को सलामती के मुख्तलिफ खतरात भी दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक के रुकन ममालिक ने दहशतगर्दी, सरहद पार से किए जाने वाले मुनज्जम जराइम, साइबर खतरात और बहरी सलामती के चैलेंजों से निमटने में इश्तराक को खातिर ख्वाह मुस्तहकम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि बिम्स्टेक ममालिक नए और उभरते हुए खतरात से एक साथ मिलकर निमटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आलमी सप्लाई चेन में रखना समेत इक्तसादी चैलेंजों से निमटने के लिए बिम्स्टेक रुकन ममालिक के दरमियान करीबी इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया। जनाब डोभाल ने इस बात को भी उजागर किया कि बिम्स्टेक बुहराए हिंद के इंतहाई अहम और फाल खित्तों को जोड़ती है, जिसकी मजमूई GDP तकरीबन 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि सरकार की कोशिश एक ऐसे भारत की तामीर की है जहां सरहदें न सिर्फ महफूज हों बल्कि इंतहाई मरबूत भी हों। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि तरक्की और कौमी सलामती एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सरहदी सड़क तंजीम BRO टेक सिंपोजियम से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने इस बात को उजागर किया कि जदीद टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचा किसी भी तरक्की याफ्ता तहजीब की एक अहम पहचान रहा है। उन्होंने कहा कि जो बुनियादी ढांचा आज तामीर किया जा रहा है वो आने वाले बरसों में मुल्क की तहजीब तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि दूर दराज के इलाके में रहने वाले किसी भी शहरी को ये महसूस न हो कि वो असल धारे से अलग है। उन्होंने कहा कि रोहतांग में अटल टनल और सेला टनल जैसे अहम प्रोजेक्ट BRO की सलाहियतों का मजहर हैं। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने के सिलसिले में BRO की सताइश की।
1: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। और साथियों, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: सुप्रीम कोर्ट ने आज CBSE निसाब के तहत नवीं जमात में एक तीसरी जबान को मुतारिफ किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है और कहा कि इससे तलबा पर दबाव में इजाफा होगा। अदालत आलिया ने तजवीज किया है कि उसे पांचवीं या छठी जमात में ही शुरू किया जाना चाहिए ताकि तलबा इससे वाकिफ हो सकें। जस्टिस BV नागरत्ना और R महादेवन पर मुश्तमिल बेंच ने मरकज से जबानी तौर पर कहा है कि वो नवी जमात की सतह पर तीसरी जबान मुतारिफ न कराए। ये रायजनी मद्रास हाईकोर्ट के उस हुक्म के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की दरखास्त पर समाअत के दौरान की गई, जिसमें रियासत के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय के कयाम में सहूलत की बात कही गई थी।

0: तमिलनाडु हुकूमत स्कूलों की जानिब से तीसरी जबान से मुतालिक पॉलिसी के निसाब के ताल्लुक से तशवीश के मामले पर मुसलसल जवाहर नवोदय विद्यालयों के कयाम की मुखालिफत करती रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर कल मुल्क की पहली हाइड्रोजन पर मबनी ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के दरमियान चलेगी और ये हाइड्रोजन ईंधन सेल टेक्नोलॉजी पर मबनी है, जो रेल को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में तब्दील करती है। इस अमल से सिर्फ भाप निकलती है, जिससे कार्बन का बिल्कुल भी इखराज नहीं होता। भारत में ही डिजाइनकर्ता और तैयार की गई इस रेलगाड़ी में मुल्क की ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मुल्क की पहली हाइड्रोजन पर मबनी रेलगाड़ी का आगाज रेलवे के शोबे में माहौल के लिए साजगार और पायदार मोबिलिटी की जानिब मुंतकली के सिलसिले में एक अहम संगे मील है। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन में 10 कोच होंगे, जो अब तक तैयार की गई हाइड्रोजन पर मबनी मुसाफिर रेलगाड़ियों में सबसे ज्यादा हैं। इस रेलगाड़ी में 3200 हॉर्स पावर प्रोपल्जन सिस्टम है, जो इसे ज्यादा ताकतवर बनाता है। ये रेलगाड़ी जींद सोनीपत सेक्शन पर ज्यादा से ज्यादा 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से जेर जमीन ईंधन पर मबनी थर्मल पावर प्लांट से पैदा की जाने वाली बिजली पर इन्हिसार भी कम होगा, जिससे पायदार ट्रांसपोर्ट की जानिब भारत की मुंतकली में मदद फराहम होगी। इस हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज के साथ भारत जर्मनी जापान चीन और अमरीका जैसे उन चुनिंदा ममालिक के ग्रुप में शामिल हो जाएगा, जो माहौल के लिए साजगार रेल खदमात के लिए हाइड्रोजन के इस्तेमाल के इम्कान तलाश रहे हैं। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: मरकजी हुकूमत ने ईंधन की बरामद से मुतालिक टैक्सों के अपने 15 रोजा हालिया जायजे के हिस्से के तौर पर पेट्रोल डीजल और हवाई जहाज के ईंधन की बरामदात पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में नजरसानी की है। नजरसानी शुदा शरहों के तहत डीजल पर बरामदाती महसूल बढ़ाकर 15.50 रुपये फी लीटर कर दिया गया है, जबकि ATF बरामद पर ड्यूटी बढ़कर 14.50 रुपये फी लीटर होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज हुक्काम को हिदायत दी है कि वो सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक की सेहत का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लें। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि जिंदगी कीमती है। जनाब वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर हैं। चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की एक बेंच ने जोर देकर कहा कि जनाब वांगचुक की अदालत की हालत सरकारी डॉक्टरों से रोजाना चेक कराई जानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, जो मरकज और दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए, कहा कि हर शख्स की जिंदगी कीमती है और जनाब वांगचुक की रोजाना तिब्बी जांच कराने पर कोई एतराज नहीं है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले इलाके और ओडिशा में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओलंपिक में 2 मरतबा तमगा जीत चुकी भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने इस सीजन की अपनी सबसे बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए आलमी नंबर 5 खिलाड़ी चीन की हान यूई को सीधे सेटों में हराया और वो जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। PV सिंधु ने चीन की खिलाड़ी को महज 35 मिनट में 21-16, 21-14 से शिकस्त दी। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। भारत को इस सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। भारत ने मंगल को बर्मिंघम में पहले एक रोजा मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। सीरीज का तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच इतवार को लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने जुग्राफियाई और सियासी महाजराई के दरमियान सिक्योरिटी और इक्तिसादी चैलेंजों से निमटने के लिए बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों के दरमियान करीबी इश्तराक पर जोर दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि तरक्की और कौमी सलामती में शाना बशाना पेशरफ्त हो। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को तजवीज़ किया है कि वो 5वीं या 6ठी जमात से तीसरी जबान मुतारिफ कराए। भारत में पहली हाइड्रोजन पर मबनी ट्रेन का आगाज हो रहा है, जिसका मकसद माहौल के लिए साजगार और पायदार रेल मोबिलिटी को फरोग देना है। और क्रिकेट में आज शाम कार्डिफ में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा बैनुल अक्वामी मैच खेला जाएगा।

आगाज करते हैं इंदीवर के बोल से। राजेश रोशन की मौसिकी है, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें हैं। फिल्म है करण अर्जुन।

समीन आप समाप्त कर रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म मोहब्बतें का ये गीत। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। ये छ आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जैत 68.8 मीटर ते FM 71.5 मेगाहर्ट्ज पेट। समीन वाले सूफियाना मौसीकी बोजो फनकार छ वस्ताद रमजान जू तुहन साथी यमनिश बोजू ते मकामी नवहा।

मीडियम वेव 208.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी श्रीनगर है। समय 3 बजने वाले हैं। पेश है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद फौज भाइयों। फौज भाइयों, फिल्म संगीत के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आइए प्रोग्राम के आगाज़ में सुनते हैं दस्तक फिल्म का नगमा।

फौजीबाइयों, ये था प्रोग्राम का पहला नगमा और ये था मदन मोहन की मौसीकी में, मदन मोहन की आवाज़ में मजरूह का लिखा गीत फिल्म दस्तक से। और हिंदुस्तानी फिल्मी मौसीकी की तारीख में मदन मोहन ऐसे मौसीकार गुजरे हैं जिन्होंने अपने फ़न, तर्ज एहसास और दिल नशी दोनों के ज़रिए हिंदुस्तानी मौसीकी में हमेशा के लिए अपनी एक अलग शनाख्त कायम की। मदन मोहन इन अजीम फ़नकारों में शुमार होते हैं जिनका नाम इंतहाई एहतराम से लिया जाता है। उन्होंने अपने सहरंगेज धुनों और लाजवाल गज़लों से हिंदी फिल्मी मौसीकी को नई शनाख्त दी। मौसीकी के शायकीन आज भी आपकी नज़रों ने समझा और कर चले हम फिदा जैसे शाहकार नगमों को मोहब्बत से याद करते हैं जो इनके गैर मामूली फ़न की ज़िंदा मिसाल हैं।

जी दोस्तों, ये नगमा आपने सुना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। फिल्म वो कौन थी सी, इसके बोल लिखे थे राजा मेहती अली खान ने और धुन बनाई थी मदन मोहन। और आज के प्रोग्राम में हम मदन मोहन के बारे में बात कर रहे हैं और मदन मोहन की मौसिकी की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी, नफासत और जज्बाती गहराई थी। वो क्लासी की मौसिकी को फिल्मी अंदाज में इस महारत से पेश करते थे कि हर धुन दिल में उतर जाती थी। इनके नगमों में मोहब्बत, जुदाई, दर्द, उम्मीद और वतन से मोहब्बत जैसे जज्बात इस खूबसूरती से सिमट आते थे कि सुनने वाला खुद को इनका हिस्सा महसूस करने लगता।

0: भाइयों, ये थे संजोग फिल्म से राजेंद्र कृष्ण के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें थी, और मौसीकार मदन मोहन थे। और आज के प्रोग्राम में हम मदन मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, और 25 जून 1924 को मौजूदा इराक के शहर अरबिल में पैदा होने वाले मदन मोहन के वालिद राय बहादुर चुन्नी लाल फिल्मी सनत की एक मारूफ शख्सियत थे। वो बम्बई टॉकीज और फिल्मिस्तान जैसे बड़े फिल्मी इदारों से वाबस्ता थे। अगरचे घर का माहौल फिल्मी था, लेकिन वालिद की ख्वाहिश पर मदन मोहन ने इब्तिदा में फ़ौज में मुलाजमत इख्तियार की और देहरादून में अपनी खिदमात अंजाम दी। बाज़ाज़ा इनका तबादला दिल्ली हुआ, मगर मौसीकी से इनके बेपनाह मोहब्बत इन्हें ज़्यादा अरसा फ़ौज में न रोक सकी।
1: प्यार करना है तो फिर रुसवाइयों का गम नहीं। सारी महफिल जान ले के हम किसी से कम नहीं।

फौज भाइयो, ये था फिल्म साहिब बहादुर का नगमा। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें थी, और मौसीकार, जी हाँ, मौसीकार मदन मोहन थे। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मौसीकार मदन मोहन के बारे में। और फौज छोड़ने के बाद वो लखनऊ मुंतकल हुए और ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। यहीं इन्हें मौसीकी के अजीम फनकारों तलत महमूद, उस्ताद फयाज खान, उस्ताद अकबर अली ख़ान और बेगम अख्तर की क़ुर्बत नसीब हुई। इन शख्सियात से उन्होंने न सिर्फ मौसीकी की बारीकियाँ सीखी बल्कि उर्दू ज़बान और गज़ल की लताफत को भी करीब से समझा। मदन मोहन की उर्दू नहायत शुस्ता थी, वो ज़ुबान व बयान पर गैर मामूली अबूर रखते थे, जिसका असर इनकी मौसीकी में भी साफ महसूस होता है।

फौजबाज जो ये था मौसम फिल्म का नगमा भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, और इसकी धुन तैयार की थी मदन मोहन जी ने। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मौसीकार मदन मोहन के बारे में। और मदन मोहन बाद अजा मुंबई पहुंचकर एस डी बर्मन, श्याम सुंदर और सी रामचंद्र जैसे नामवर मौसीकारों के माविन के तौर पर उन्होंने काम किया। और 1950 में रिलीज़ होने वाली फिल्म आंखें के ज़रिए इन्हें बतौर मौसीकार पहली बड़ी कामयाबी मिली। इसके बाद उन्होंने मुसलसल ऐसे दुनिया तख्लीक की जिन्होंने इन्हें फिल्मी मौसीकी के मुमताज़ तरीन मौसीकारों की सफ़ में ला खड़ा किया।

0: और भाइयों, ये थे राजा मैदान अली खां के बोल मदन मोहन की मौसीकी में। फिल्म थी आपकी परछाइयाँ और आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। और फौजी भाइयों, आपको बताते चले कि आप इस वक्त हमें आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं और आप हमें सुन सकते हैं DTH और ऑल इंडिया रेडियो की मोबाइल ऐप पर भी। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
0: फौज भाइयों, प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं और आपको बताते चले कि आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मौसीकार मदन मोहन की। और मदन मोहन और लता मंगेशकर की जोड़ी हिंदी फिल्मी मौसीकी की तारीख में कामयाब तरीन तख्लीकी शराकत दारियों में शुमार की जाती है। मदन मोहन की बेशतर लाजवाब दुनू का को लता मंगेशकर के आवाज़ ने अमर बना दिया। खुद लता मंगेशकर इन्हें गज़ल का शहजादा कहा करती थी। मारूफ मौसीकार ओपी नैयर भी इस जोड़ी के मोतरफ थे। इनका कहना था कि ये कहना मुश्किल है कि लता मंगेशकर मदन मोहन के लिए बनी थी या मदन मोहन लता मंगेशकर के लिए, लेकिन इन जैसे मौसीकार और गुलोकार की जोड़ी दोबारा पैदा होना आसान नहीं।

फौजी भाइयों, ये था अनपढ़ फिल्म का नगमा और इसे लता मंगेशकर ने गाया था और ये था मदन मोहन का शोरा आफाक नगमा, जो आज भी बेहतरीन रोमानवी गीतों में शुमार होता है। रिवायत है कि इस धुन से अजीम मौसीकार नौशाद इस कदर मुतासर हुए कि उन्होंने मदन मोहन से कहा कि अगर मुमकिन हो तो वो इस एक धुन के बदले अपनी पूरी मौसीकी का ख़जाना देने को तैयार है। ये वाक़ा मदन मोहन की गैर मामूली तख्लीकी मकाम का वाज़ह सबूत समझा जाता है। अगरचे एक वक्त ये तासुर था कि मदन मोहन सिर्फ ख्वातीन गुलोकाराओं खुसूसन लता मंगेशकर के लिए ही बेहतरीन मौसीकी तरतीब दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस ख्याल को भी गलत साबित किया जब फिल्म देख कबीरा रोया में मन्नाडी की आवाज़ में कौन आया मेरे मन के द्वारे और फिल्म हकीकत में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कर चले हम फिदा जानो तन साथियों जैसी लाजवाब तख्लीकात ने साबित किया कि हर आवाज़ के मिजाज के मुताबिक शाहकार धुन तख्लीक करने की गैर मामूली सलाहियत मदन मोहन जी रखते थे।

फौजबाइयों, ये था मन्नाड़े की आवाज़ में फिल्म देख कबीरा रोया का नगमा। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और मदन मोहन की मौसीकी थी। और इसी नगमे की तरह फिल्म मेरा साया में भी आशफ भोसले की आवाज़ में रिकॉर्ड होने वाला नगमा झुमका गिरारी बरेली के बाजार में आज भी अपनी मकबूलियत बरकरार रखे हुए हैं। आशा भोसले जी अक्सर मजाहिया अंदाज में इनसे शिकायत किया करती थी कि वो अपनी हर फिल्म में लता मंगेशकर को ही क्यों तरजीह देते हैं, जिस पर मदन मोहन मुस्कुराते हुए जवाब देते कि जब तक लता मंगेशकर मौजूद है, इनकी दोनों का असल हुसन इन्हीं की आवाज़ है।

0: फिर क्या हुआ?
1: जी फाजू भाइयों, ये था मेरा साया फिल्म का नगमा आशा भोसले की आवाज़ में, राजा मेहदी अली खान की ये शायरी थी। और 1970 में फिल्म दस्तक के लिए मदन मोहन को बेहतरीन मौसीकार के कौमी अवार्ड से नवाजा गया। अपने तकरीबन 50 बरस के फिल्मी सफ़र में उन्होंने लगभग 100 फिल्मों के लिए मौसीकी तरतीब दी और हर दौर के सामने के दिलों में अपनी जगह बनाई।

जी फौजी भाइयों, ये था अकेली मत जइयो फिल्म का नगमा। मजरू के बोल थे, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें थी। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मौसीकार मदन मोहन के बारे में। और 14 जुलाई 1975 को मदन मोहन इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर इनकी मौसीकी आज भी जिंदा है। इनके इंतकाल के बाद रिलीज़ होने वाली फिल्म मौसम और लैला मजनू ने भी इनके फ़न को नई जिंदगी बख्शी। बाद में इनके साहबजादे संजीव कोहली ने वालिद की गैर इस्तेमाल शुदा धुनी फिल्म साज यश चोपड़ा को सुनाई, जिनमें से 8 दुनिया फिल्म वीर जारा में इस्तेमाल की गई। इन गीतों के बेमिसाल कामयाबी ने एक बार फिर साबित किया कि मदन मोहन की मौसीकी वक्त की पाबंद नहीं, बल्कि हर नस्ल के दिलों में हमेशा जिंदा रहने वाली एक लाजवाब मीरास है।

0: जी फौजी भाइयों, ये था आज के प्रोग्राम का आखिरी नगमा और ये था फिल्म दिल की राह फिल्म का नगमा नक्श लालपुरी के। ये बोलते मदन मोहन की मौसीकी थी और फिल्म थी दिल की राह। और इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद। मीडियम वेव 268.8 एक मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। अब हमारे यहाँ से उर्दू खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं सैयद मुबशिर रफाई। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम हाइड्रोजन पर चलने वाली भारत की पहली ट्रेन को कल झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। हुकूमत तरक्की और कौमी सलामती को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए पुरअज्म वजीर दिफा। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के तहत अब तक लगभग 3.5 लाख यात्री पवित्र गुफा में दे चुके हैं हाजिरी। और श्रीनगर में चिनार बुक फेस्टिवल का तीसरा शुमारा 18 जुलाई से होगा मुनक़िद। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर आजम हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन से जिंद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। वजीर आजम जिंद में 14,700 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम चंडीगढ़ में 6,600 करोड़ रुपए जबकि जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई एक का इफ्तिताह भी करेंगे। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने आलमी

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आज का पहाड़ी प्रोग्राम कैनकम में तुस दा मेजबान ख्वाजा परवेज प्यार खलूस और ताजीम नाल अस्सलाम वालेकुम अर्ज करदा ते प्रोग्राम विच जी आया क्वाखता सामीन आज प्रोग्राम दी शुरुआत करदे आं आलम लोहार दी आवाज विच इस आरफाना कलाम नाल।

सामीन आरफाना कलाम पेश कर रहा से आलम लोहा ते सामीन सावन का महीना चल रहा है। ए मूनसून यानी बारिशों का महीना मनिया जुलदा है। आम तौर ते जुलाई दे अद तो अगस्त दे अद तक सावन रहिंदा है। इस साल 14 जुलाई तो 12 अगस्त तक रहसी। जम्मू कश्मीर विच सावन की अपनी अहमियत है। जे सावन का जोर होया ता बारिशां तेज होंदियां ते पानी कठिया और नदियां विच बद गेंदा है। ये महीना फसलों वास्ते भी अहम है। पुराने लोगों के मुताबिक सावन जे बरसी ता फसल भी होसी। सामीन गल्लां और भी सांझियां करसां ते आओ अगे जुबैदा अख्तर ते साथियों की आवाज़ विच सुनदे हां ये गीत।

0: अज चाडोरा बिच वाकया आपाजियारी नाले तै नाबार्ड दे तहत इनसदा दे सैलाब दे इकदमात तै सासी दोम दे तहत सैलाब नाल मुतासर होने दे पिछे बाली दे कमां दा जायजा किन रहा सी। कश्मीर यूनिवर्सिटी बिच आज एक तकरीब दे दौरान 17वें कौमी यूथ पार्लियामेंट मुकाबले बिच कौमी चैंपियन दे बतौर उभरने वाली यूनिवर्सिटी दी टीम दी इज्जत अफजाई कीते गई। इस मुकाबले दा एहतमाम पार्लिमानी उमूर दी मरकजी वजारत सुन कीता आसा। इज्जत अफजाई दी ए तकरीब यूनिवर्सिटी दे गांधी भवन बिच इदारे दी वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान दी सदारत बिच मुनक्कद होई, जिसका एहतमाम तालब इल्मा दी बहबूद दे शोबे सुन कीता आसा। इस मौके ते शोबे दे रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल ते दीगर सीनियर अहदेदार भी मौजूद आसे। श्रीनगर बिच 18 जुलाई थियों 26 जुलाई तोड़ी चनार बुक फेस्टिवल दा त्रिया शुमारा मुनक्कद हो रहा है। इस सिलसिले बिच तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दिते जा रही है। श्रीनगर दे जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू सुन इस सिलसिले बिच आज जिले डल बिच एक शिकारा रैली को चंडी दस के विद्या कीता। बुक फेस्टिवल दी अहमियत ते इंतजामात दे तालुक नाल नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया दे डायरेक्टर युवराज मलिक सुन अज ते नुमाइंदे शेख तजम्मुल दे नाल गल करदे होया आख्या।
1: जैसा कि आप जानते हैं कि चिनार बुक फेस्टिवल 18 से 26 जुलाई डल लेक के खूबसूरत किनारे SKICC में हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। इसे शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर, हमारे बाकी संस्थान और साथ ही साथ सभी लोगों के पार्टिसिपेंट से कम्युनिटी इवेंट के तौर पर हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको लिटरेचर, आर्ट, कल्चर और बहुत सारी चिल्ड्रन एक्टिविटीज के साथ एक मेगा बुक फेयर भी देखने को मिलेगा, जिसमें 200 से ज्यादा पब्लिशर्स हैं और 250 के आसपास यहाँ पर स्टॉल होगी। सो आने वाले 9 दिन निश्चित रूप से आर्ट, लिटरेचर और कल्चर का एक सेलिब्रेशन है और कश्मीर अपने आप में एक समृद्ध परंपरा रही है, उस परंपरा को आगे ले जाने का काम चिनार बुक फेस्टिवल ने किया है और निश्चित रूप से पूरी सिटी के लिए, पूरे कश्मीर के लिए एक गर्व का विषय है कि हमारे पास भी अपना एक खुद का एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पुस्तक महोत्सव हम लोग यहाँ स्थापित कर पाए। तो जो भी हमारी कश्मीर की संस्कृति है, जो भी परंपराएं हैं, उनको एक मंच देने का काम चिनार बुक फेस्टिवल के माध्यम से हमने प्रयास किया।
0: उधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन अज श्री माता विष्णु देवी अस्थापन बिच हाजरी दिती। उन्हां सुन उत्थे जम्मू कश्मीर बिच अमन, तरक्की ते खुशहाली वास्ते दुआ कीती। इस मौके ते मनोज सिन्हा सुन माता विष्णु देवी बोर्ड दी तरफों श्रद्धालुआं वास्ते दस्तियाब सहूलतां दा जायजा कीता। अस दा अगला बुलेटिन 5:50 ते गोजरी बिच नशर कीते गया सी। इस दे नाल ही ए खबरनामा मुक गया। अल्लाह बेली।
2: ਸਾਮੀਨ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮੀਨ ਆਓ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੀਤ।

जी सामीन, इस गीत दे नाल ही अस्ते आई दे पहाड़ी प्रोग्राम दा वेला भी मुकम्मल हो गया। ते फिर अपने मेजबान ख्वाजा परवेज और प्रोड्यूसर मारूफ उन्निसा जी को कल 4 बजे तुनी दियो इजाजत। अल्लाह बेली।

अभी आप पार्टी प्रोग्राम सुन रहे थे। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं मारूफ निसा। यह आकाशवाणी श्रीनगर समीन वल्लव चलंत बोजो फनकार गुलाम रसूल बगतियार सेथी यम करन पेश कलामे गुलाम अहमद वगे रचीता।

0: समेन्तुषु चलन्तु भोजन फनकार गुलाम रसूल बगतियार तसैथी इमन बुजू तहे कलामे गुलाम अहमद वगे रचिता। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। शाम के 5 बज चुके हैं। समाप्त करें आज का गोजरी प्रोग्राम। प्रोग्राम से पहले एक छोटा सा वक्फा।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।

0: सामिन तब नगमो सुन रहा था। सामिन किसी भी माशरा की तरक्की को इनसार इसका नौजवाना पर वह अगर नौजवान तलीम याफ्ता और उनके बावजूद रोजगार से महरूम रहे तो न सिर्फ इनकी सलाहियत जाया में बल्कि रियासत की मजमूई तरक्की भी मुतासर हुआ। कश्मीर में हजारा नौजवान हर साल मुख्तलिफ तालीमी इदारों ते फारिगुल तहसील में मुलाजमता की कमी के बायस इन्हें तवील अरसा तक रोजगार की तलाश में रहना पड़ा। सामीन कश्मीर में ज्यादातर नौजवान सरकारी मुलाजमत नहीं कामयाबी को मियार समझे जबकि सरकारी असामियों की तादाद महदूद हुआ। इस वजह से हर साल लखा उम्मीदवार कुछ हजार असामियों के वास्ते दरख्वास्त दें। कश्मीर में बड़ा पैमाना की सनता की कमी सनत रोजगार पैदा करने को अहम जरियो है लेकिन कश्मीर में सनती शोभा होन मतलूबा सतह तक तरक्की नहीं कर सकिया। इसी तरह निजी कंपनी कारखाना और कारोबारी इदारों की तादाद काट होने के बाद नौजवानों के वास्ते मुतबादल रोजगार का मौका भी महदूद है। बहुत सारा नौजवान डिग्री तो हासिल कर लें लेकिन इनके कोल अमली महारत यानी सिकल नहीं होती जिनकी जदीद रोजगार की मंडी में जरूरत है जिस तरह के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डिजिटल मार्केटिंग ग्राफिक डिजाइन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी एंड प्रोटोकॉल जबाना की महारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई कॉमर्स वगैरह। अक्सर नौजवान अपना कारोबार शुरू करने के बजाय सिर्फ मुलाजमत की तलाश में रहे जबकि खुद रोजगारी भी माशी तरक्की को अहम जरिए बन सके। कश्मीर की मैशियत को एक बड़ो हिस्सों सियाहत न वाबस्ता है जबकि किसी वजह से सैलानियों की आमद घट हुए तो होटल ट्रांसपोर्ट हैंडीक्राफ्ट और बाकी शोबा में रोजगार भी मुतासर हुआ। सामीन बेरोजगारी का कई मनफी असरात मरतब हुए जिनमें शामिल हैं गुरबत में बादो जहनी दबाव और मायूसी हुनर और सलाहियत को वेस्टेज समाजी बेचैनी माइग्रेशन में बादो जराइम का इम्कान में बादो और खानदाना पर माशी दबाव। कश्मीर में माहौल दोस्त सनता फूड प्रोसेसिंग हैंडलूम दस्तकारी लकड़ी की मसनूआत और जरई सनता ना फरोग दितो जाए ताजी मकामी सतह पर रोजगार पैदा हुआ। साल भर सियाहत ना फरोग देने के वास्ते एडवेंचर टूरिज्म मजहबी सियाहत दही सियाहत सरमाई सियाहत और सकाफती सियाहत ना मजीद तरक्की दी जाए ताजी मुख्तलिफ मौसमों में रोजगार का मौका बरकरार रहे। नौजवानों ना जदीद तकाजा के मुताबिक तरबीत दी जाए मसलन कंप्यूटर और आईटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोटिक्स में वेब डेवलपमेंट में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ग्राफिक डिजाइनिंग में जबाना की तरबियत में और डिजिटल मार्केटिंग में। हुकूमत और मालियाती इदारा ने चाहिए कि नौजवानों ना आसान कर्जा सब्सिडी कारोबारी तरबियत मार्केटिंग की सहूलियात फराम करें ताकि वे अपना कारोबार शुरू कर सकें। आगे हमारे को एक इंटरव्यू है गोजी का नामवर शायर और अदीब जनाब तारिक फहीम साहब राना। ये इंटरव्यू हमारे तक पहुंचाया हुआ है मोहम्मद यूनुस कालूखेल साहब राना।
1: साबिर कराम मारी खुशकिस्मती कि आज मेरा रोबरो तशरीफ फरमाए एक शायर अदीब मुफक्कर मजमूनगार कलमकार ड्रामा आर्टिस्ट असर साहब की अदबी दौलत का वारिस ते उनका अमीन मोहतरम जनाब तारिक फहीम साहब। तारिक फहीम साहब गोजरी प्रोग्राम में तमना जिया यादा अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: तारिक फहीम साहब तम थोड़ा बचपन की तरफ चलो इब्तदाई तालीम परवरश तालीमी सिलसिलो किस तरह शुरू हुयो ते के कुछ हालात वाकात थारा बचपन का था।
2: हाँ जनाब अर्ज इस तरह है कि हम बेसिकली बकरवाल कबीला ना तरक रखा।
1: ठीक
2: तो अब बकरवाल की के मुश्किलात में आज भी किसी दुनिया दे छपी भी है नहीं
1: जी
2: बल्कि आज दे कुछ अरसों पहले ज्यादा ही मुश्किल नहीं थी तो उन्हें मुश्किलात बिच मैं अपनी तालीम जी भी जारी रखी पंजवी तक मोबाइल स्कूल में पढ़े और उसके बाद में श्रीनगर गुजर हॉस्टल में नौवीं तक पढ़े।
1: ठीक
2: फिर अपना आबाई गांव ग्राम लंबेड़ी में बारहवीं तक पढ़े
1: जी
2: उस वक्त मेडिकल असिस्टेंट की ट्रेनिंग हुई थी आजकल फार्मासिस्ट
1: ठीक
2: हो जाए इस वक्त हूँ एज ए फार्मासिस्ट सीनियर फार्मासिस्ट अपने डिपार्टमेंट में हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करूंगा
1: जी। तो फहीम साहब तो यूँ तो थारो खैर एक पहलू है इसके अलावा जिस तरह मैं तबीदर भी क्यों थो कि तब असर साहब की विरासत है अदबी विरासत उसका मालिक भी है उसका अमीर भी

0: हर आदमी जुड़ो वो उतना ताकतवर उनका जमाना में नहीं था जितना वो ताकतवर था।
1: ठीक,
0: लेकिन कदे भी किसी ने ना भी जबानी कुछ कह था ना किसी पर अच्छा था
1: जी।
0: तो नरम तबीयत था, वानी थी गल, लेकिन कोई छो कुदरत की तरफ से उनका सायो ऐसो था
1: जी।
0: तो हम औलाद जी ने वो हम सबसे ज्यादा
1: ठीक
0: साइड पकड़ा था
1: जी। असर साहब उस्ताद भी था, उन्हें खैर बचा भी पढ़ाया, उन हमारा नौजवान आला हमारा लिखा रहा था शायरी वाले पास अदब वाले पास भी पढ़ी हो, जिंदगी का उनका दो पहलू था।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: दुआ पर भी हावी था,
0: दुआ पर हावी था
1: जी,
0: दुआ पर हावी था। जो उस्ताद था तो जो उन्होंने पढ़ाया है वे मारा माशरो ऐसा है कि मारा सोरस जो ना वे काट है
1: जी।
0: तो अगर पंजवीं तक कोई चले गए बच्चो तो फिर ऊ तो अगे वो नहीं पढ़ा सके।
1: ठीक,
0: तो जो उतो अगे चले गए वो चले गए, लेकिन जो नहीं जा सके तो वो उतर रोके हो। लेकिन आज भी अगर कोई जिंदो आया तो वो बड़ा पढ़िया लिखा हुआ थे भी बेहतर है।
1: ठीक,
0: उसकी नॉलेज, उसको किताब पढ़ना, उसकी तारीफ जी वह बड़ी जबरदस्त है
1: जी।
0: उस तरह की। दूसरा रह गया यो के शायरी के मतलब मैं काफी लोग देखा कि जरा उन्होंने को आया था, मतलब करीम दरालवी जी होने की गल है तेने पिछली तरह परवेज मलिक या एक श्रीनगर को एक साफी है वो रशीद रायल।
1: ठीक,
0: और वो बुनियादी तौर उन्होंने को हर मतलब साल में एक दो बार उन्होंने मुलाकात करनी करनी
1: जी,
0: लेकिन बहुत बड़ो आज भी वो बड़ो कायल है।
1: ठीक,
0: तो मतलब इस तरह ओपरा ओपरा लोग जिन्हें भी आन गए थे उन्होंने सिखे में था
1: बरादरी का और बरादरी का बाहर
0: बरादरी के बाहर का भी
1: जी
0: आन के सिखे में था।
1: ठीक,
0: तो उस मामला में वे बड़ा हाजिर जवाब था। अगर किसी ने एक दफा आर्मी आलो एक आयो तो उसने देख के बैठो कोले तो वो कहने को सीखे थारी उम्र कितनी लिखी, इतनी उम्र होगी 80 साल दसी, तो उनके बंटवारा पहली का याद रखे, हाँ बिल्कुल याद है
1: जी,
0: तो के फर्क है। तो उन्होंने कहा उस वक्त जाए कि हम गुलाम था
1: जी
0: लेकिन सुकून था।
1: अच्छा,
0: आज हम आजाद हैं लेकिन सुकून।
1: अच्छा,
0: तो वो मेजर रैंक को तो किस रैंक को तो वो अफसर तो उसने सोच के तो उसने के बाबा हम तेरी गलती मुतासर है
1: जी,
0: ये बिल्कुल सही गल है। मतलब हाजिर जवाब जरूर था लेकिन
1: जी
0: इस तरह नरम तबीयत था
1: जी।
0: तो सीखे काफी लोगों ने सीखे, अब कोई अपना अपना सामना कोई किस तरह गए हों जब को इकबाल अजीम ने भी सिखाया।
1: ठीक,
0: अब्दुल गनी आरफ ने भी सिखाया, नसीम पुंछी ने भी उन्होंने पढ़िया
1: जी।
0: हाँ, नसीम पुंछी ने मेरे ना खुद भी इसको तस्को किया, उन्होंने भी पढ़िया। मतलब हूँ देखो वो उस्ताद है जो एक लाइन भी सीखे कद किसी की
1: सही
0: तो वो उस्ताद को है
1: जी।
0: तो इस तरह बहुत सारा लोग फैज किसानों खुद एतराफ करे कि मैं उन्होंने बहुत कुछ
1: जी बिल्कुल
0: सीखे क्योंकि उन्होंने मेरे ना गल कर। तो इस तरह शागिर्दों की भी बड़ी तादाद है।
1: खैर असर साहब की अगर आप गल करा तो चाहे रेडियो कश्मीर श्रीनगर है, जम्मू है, प्राइवेट इदारा है या पार्ले पास जितना भी इदारा है दुशरियाती इदारा है वो कोई दे देखो सब तो कम अज कम दो त्रै जो गीत है गजल है सियारफी है उसकी रेडियो की चलती थी या दूरदर्शन थे या बाकी जरा भी चैनल होते थे चलती उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन तो है ही है। अगर भी मेरा ख्याल में गोजरी आड़े पास ऐसा आता तो अगर भी कुछ उर्दू में शायरी करता तो पहले अकवामी तौर पर भी बनिया जाता।
0: बिल्कुल,
1: तो खैर उन्हें उस वक्त अपनी जबान अपनी बरादरी ने तरजीह दी थी जो उनको एक बड़ो पद हो। तो खैर तारिक साहब और थारी तरफा हुआ तब भी खैर खासी सारी चीज जी लिखी है वही तो हम अक्सर जी कल्चर अकैडमी जी किताब छपे उनमें हम पढ़ता रहा। और इसके अलावा जब रेडियो की गल है और खास तौर पर रेडियो में ड्रामा जड़ा है वो कोई ऐसा ड्रामा नहीं जिसमें थारी आवाज नहीं, ड्रामा की तरफ तब किस तरह कायल हो जाते कहते पीछे तब ड्रामा की तरफ आया
0: ऐसा हो कि 88-99 जिस वक्त फैज कसाना साहब ने इंगा मोड़ी तो फिर मेरे इमीद उमीद थोड़ा जो वो हाथ पैर खुलन लग गए इस मामला में
1: जी।
0: तो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंने लग गया अंजमन गोजरी जबान आदि धर्मसार काला कोट
1: जी, इसका सरपरस्त असर साहब था।
0: असर साहब
1: ठीक,
0: वो जो वो सर्टिफिकेट देखो मैं उन्होंने पूछो कि वो के है
1: जी,
0: उन्होंने की जो इस तरह रजिस्ट्रेशन कराई थी इस तरह क्योंकि हूं बाहर रही हो तो ज्यादा श्रीनगर गुजरो स्कूल में रही हुई हूँ। तो मैं कि फिर जो इसको चलन गो तो खेलो को थोड़ा रुक के हो।

0: काटी गल करें मैं था कि ये अरे ये अलविदा यू करना ठीक है, कोई पिछला साल खानते या 2 साल दी इस पर कम नहीं है। खैर बहरहाल मैं वो तो बस गल शुरू कर ली कि चलो जो तू के किस तरह के कहे भी इसमें कही शायरी की तरबियत दें, जो करा वो करा वो करा, तो थोड़ा जो इसमें रुकावट आए लगी कि ड्रामा जुड़े वो नहीं चल रहे। अब ड्रामा को न चलने को कारण मैं लोड़े कि वो के है वे लोग उन्होंने उतनी नहीं गल करी मैं कि जरा लोग ड्रामा का हिसाब न जुड़िया था उन्होंने गल करी तो उन्होंने मैंने समझाया कि मसला जो है कि जो ड्रामा जुड़ो इसमें हीरो और विलन जुड़ो वो एक एक वजह इन विधवाओं की कशमकश है और लास्ट में हीरो जीते यह एक इतनी एक खेद है ठीक। अब मारा समाज जुड़ो इसके बीच विलन जुड़ो वो मुकदम है चौधरी है नंबरदार है ठीक, और उसकी वैसे भी समाज के बीच एक समझो एक दस्तरस है उसने एक अपना आप जुड़ो जमाया हुआ
1: जी,
0: तो जाहिर है हमारा समाज में भी जमे हुए लोग था। अब जिस वक्त ड्रामा चला है या कितने कुछ प्ले है या उसकी गल चला है तो मुकदम को ना आना ही आना
1: सही।
0: अब उसना वे लोग वे मुखालफत समझ गए उसकी मुखालफत करें था कि या हमारी मुखालफत वाले बुनियादी गल वह वह नहीं थी
1: ठीक,
0: तो उस वास्ते फिर हमने पहला जुड़ो स्टेप लियो वो यो लियो कि हम इस ड्रामा पर कम करें
1: ठीक,
0: ताकि यह अंजुमन जी है इसना व रुकावट या रुकावट बाकी का रुकावट नहीं लेकिन यह खत्म होनी चाहिए
1: जी,
0: जो भी इसको एक हिस्सा है। तो उसमें एक दफा उसमें स्टार्टिंग में शुरुआत में मेरे ना खालिद वफा साहब था
1: ठीक,
0: उन्होंने मशवरों की हमने एक टीम बनाई थी जिस तरह हम एक मशरक वाले पास एक टीम बना दे फिर वो उसमें वो रोड़ो रपो पै दे विनाश
1: जी,
0: फिर मगरब दारू करा दे फिर वो विनाश है, शुमाल दे करा दे वे विनाश है
1: ठीक,
0: जनूब दे करा दे वो विनाश है, मतलब जिया दारू टीम बनाऊंगा ठीक ठीक हो जाए। फिर उसके बाद हमने यह कियो कि यह नहीं करता हम ऐसो करा कि एक एक आदमी जो इस पास जिसका लगाव है
1: जी
0: उसना चुना और उसके ना यह गल करा उसना पहला हम आलफ ध्यान देते हैं नसनो
1: ठीक,
0: फिर उसमें हमने इं आऊ सारा इकट्ठा कर उसमें यासीन नाज आयो उसमें सरफराज मजाज आयो उसमें अब्बास नदीम आयो उसमें तुफैल अंजम आयो उसमें रियाज बजरान आयो उसमें कुछ थोड़ा अरसा दे बाद लेकिन फिर शौकत नसीम आयो इस तरह और परवाज स्वाथी आयो
1: ठीक,
0: तो अब मिल गए तो वो हमने कियो स्टार्ट एक ड्रामा की चीज जी वह करी करी तो फिर हमने ऐसा हो कि जित हम प्रोग्राम करा अंजमन का उत्ते ही हम ड्रामों में कर छोड़
1: ठीक,
0: लेकिन कोई बड़ो प्लेटफार्म ना लगे
1: जी।
0: फिर हमने हूँ जम्मू गए तो इकबाल साहब ने गल करी इस तरह
1: अजीम साहब
0: अजीम साहब ने
1: ठीक,
0: तो फिर कहूँगा हमने प्रोग्राम करना काले कोट
1: जी
0: तो तुम उ आ जाइए तो थारे जो प्ले करा तो तुम जो गल करी होगी लोगों ने खबर हमने बड़ा जज्बा ना अगे पिछे सारा कुछ किया लोग बड़ा इकट्ठा आया ड्रामा ही जबरदस्त आना
1: जी,
0: लेकिन उस दिन टाइम ना बचे महाराज को रह गया बड़ा मायूस होया। खैर उसके बाद कोई 6 महीने बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी उत्ते काला कोट तो उसमें वो ड्रामा जो हो
1: ठीक
0: हो उसमें बड़ा बड़ा लोग था गरीबी ना को ड्रामा था वो, और फिर उसमें एक नज़म गाई स्वाथी प्रवास स्वाथी
1: ठीक,
0: और उस नज़म ना सुन गए लोग रोना
1: अच्छा।
0: अब वो जो वो रोना होता वो करदार तो वो जो सारो कोई उसको बड़ो असर पियो एक समाज के ऊपर वह जड़ी चीज थी जिड़ी मुकदम या खड़पैंच जिसते हमने रोके था उस दिन वह गल टूट गई
1: ठीक,
0: लोगों ने सरायो भी बड़ो उन्होंने भी फिर बाद में सरायो समझाया भी कि असल गल यह है। अब यो उत्ते शुरू हो गया लेकिन अपनी जगह महसूस करन लगा कि यो रेडियो भी होना चाहिए
1: जी
0: इतने वह लोगो
1: महदूद रहो थी
0: हाँ इतने महदूद रहो इसने स्टेट लेवल तक चलना इसमें रेडियो दल चलना थिएटर वाले पास चलना, तो फिर हम गया हूं तो यासीन नाज गया जम्मू रेडियो स्टेशन उत्ते एक प्रोड्यूसर थो को मैंने उसको नाम भूल गया आ जाए याद उस को गया हम तो उसने उसने कहो कि इस वास्ते ग्रेजुएशन होनी चाहिए
1: ठीक,
0: एडिशन अगर इसको वह
1: ड्रामा आर्टिस्ट वास्ते
0: ड्रामा आर्टिस्ट वास्ते ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब ग्रेजुएशन होनी जी है वो भी एक मसला। खैर जितेंद्र उधमपुरी

0: कि ड्रामा बच यह है कि अगर चोर चोरी करे तो ड्रामा में चोर एक किरदार वेगो और उसकी चोरी करा गए और फिर उसके बाद उसको उसने अंजाम तक पहचान तक जिड़ो वो ड्रामा। अब वह चीज समझ में आएगी देखने वाला ना कि यो चोरी करनी जिड़ी है वह कितनी खराब है, तो लिहाजा आगे जाके वो फंस गयो, वो मर गयो, वो कैद हो गयो
1: जी
0: वगैरह। अब यो इसको मतलब कि यो अंजाम जिड़ो वो उसको दस्यो बुराई। तो दूसरे पास एक बच्चो है उसने कोई पढ़न नहीं दे तो वो बड़ी मुश्किल नाल पढ़े, वो मेहनत करे, एमए करे, पीएचडी करे, कुछ करे, वो प्रोफेसर बन जाए, वो केएस कर जाए, तो उस देखने वाला ने यह गल दसी जाए कि
1: जी
0: यो जो अच्छाई वाले पास चले तो उसको रिजल्ट जो वो के आयो वो के त्याग तो अफसर बन गए। अब ये दो पहलू जो है इसके बीच ड्रामा के बीच में, लिहाजा समाज ना सही रास्ते लाने वास्ते यह बड़ा अहम किरदार अदा करे ड्रामा। जी
1: इसको असर है वो बिल्कुल बाद नतीजा जो है वो सामने आ जाए
0: बिल्कुल सामने आ,
1: इसी बहुत असर वक्त पर।
0: क्योंकि एक दिन ड्रामा देखने वालों देखेगा वो कई दिन उसका जहन मंगवा कर
1: जी
0: फिरती है,
1: जी
0: फिर उसको वो तबसरो भी करते रहे, मैं ड्रामा देखे उसमें यह गल हुई, उसमें वह हुई, उसमें वो हुआ। तो वह चीज जी है वो जितना तबसरो करेगा, जितना उसका जहन मरेगा, इतना वो कुछ ना कुछ वो जो अक्स करना उसको उसको नतीजा अच्छा हुआ।
1: जी तारक साहब, भारत नौजवान तो खैर है थारे नाल काफ़ी जुड़ी हुई है, लेकिन हमारी जी बची है भी इस पास दी आई की वजह।
0: नहीं आज
1: ठीक
0: बिल्कुल
1: है,
0: नहीं,
1: अच्छा
0: एक जमाने में बिल्कुल नहीं थी, जिस वक्त हमने ड्रामा शुरू करे
1: जी
0: तो हमने कहे बच्ची नहीं थी लबे ड्रामा वास्ते। और फिर यह आए कि हम मर्द किसी ने किसी लड़का ने तैयार करना था
1: अच्छा
0: वो रोल अदा करने वास्ते,
1: ठीक।
0: तो फिर
1: या
0: वो
1: गैर जबान वाली बच्ची भी अक्सर मैं देखी ड्रामा के पीछे, हालांकि गोजरी सही तरीके से बोल नहीं सके थी।
0: वो उसको कारण वही था ना,
1: जी ठीक
0: उसको कारण जुड़ो वो वही था कि लबे नहीं थी।
1: ठीक
0: लेकिन आज खुदा करे आज हमने नहीं कमी कर,
1: जी
0: इस वक्त बिल्कुल राइटर भी हैं, लिखाड़ी भी हैं, गान वाली भी हैं, ड्रामा में काम करने वाली भी हैं,
1: जी
0: तो इस वक्त काय कमी है, सिर्फ यही है कि माहौल बनाने की जरूरत है। तो
1: ठीक
0: थोड़ा बच्ची को मसलो अजामी एक चीज जी है दूर
1: वो चाक है उड़ा
0: चाक
1: ठीक
0: है बाहर के जो नहीं चाहता माया बापा वास्ते, लेकिन बच्ची काम करना चाहिए
1: ठीक।
0: जो हमने देखे।
1: 12 हजार नौजवान है, चाहे बच्ची है चाहे बच्चा, क्या थारा ते सलाह पूछे आए कितने सीखे इस तरह खैर हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल है कि जब मौका मिले
1: जी
0: वो जरूर पूछें, और उन्हें जब तक हो सके उन्हें दसूंगी इस तरह करो इस तरह करो, है रुझान।
1: ठीक, ये तो कुछ अदबी चीज होगी। इसके अलावा मतलब असर साहब ने खैर जित उनकी चीज दूरदर्शन पर चले थी, रेडियो पर चले थी, बाकी मुशायरा में था, तो जाहिर गल है कि असर साहब के बगैर उनका वक्त में भी चीज अधूरी रहती, जब तक अजीम साहब जी में था, नसीब साहब जी में था, असर साहब जी में था। इसके अलावा उन्हें एक जबान का तरक्की देने वास्ते, तरजीह देने वास्ते, तरजीह देने वास्ते, इसका तरक्की वादा वास्ते अंजुमन भी बनाई थी, या अंजुमन असर साहब का इस मिशन का किस तरीके से पूरा कर रही है।
0: शुरू में तो इसी तरह की होगी मुशायरा किया
1: ठीक
0: तो लिखने वाला ना इतक आने हो पहुँचाओ करियो कि इस तरह लिखो इस तरह करो, उसमें कोई मारो एक ग्रुप ड्रामा वाले पासे चले गयो, कोई कहानी वाले पासे चले गया, कुछ ने शायरी शुरू कर ली, करते करते वो चले आए। फिर उसके बाद हमने जो कि अगर ये जो कुछ भी है जो महफूज होना चाहिए
1: ठीक
0: तो फिर उस वास्ते एक सालाना किताब कटनी शुरू करी। तो वह 2-3 साल वो जुड़ो वो सिलसिले भी चलियो, तो फिर उसमें हमें कोई रुकावट असल में माली हालात चीड़े वे, क्योंकि पैसा तो बगैर कोई कम नहीं होता
1: जी
0: तो चंदा चंदा पर कितना एक मरादे हो सके वो हमने करियो। तो उसके बाद फिर जो है कि जो आवाज गुजर एक पेज कढ़ियो सोशल मीडिया पर
1: ठीक
0: वो भी इससे गए तहत कढ़ियो,
1: ठीक
0: तो फिर वो आवाज गुजर रोदा दे कौम उसने बाद में चेंज कर देती हो, और उसके तहत वो एक अखबार जुड़ो वो करनी शुरू की।
1: ठीक
0: उसमें अदब की खासी चीज जुड़ी है, उसमें तारीखी मकाला भी आया, उसमें अदब पर भी लिखे हो गए, उसमें शायरी जुड़ी है वह भी आई,
1: जी
0: वह तकरीबन कंटिन्यू भी चला लिखो
1: यानी जरूरत के मुताबिक तबले थोड़ा तब्दील कर रही
0: तब्दील
1: हो।
0: कर लियो
1: जी
0: ऊंची। तो जी एक चीज हम कहूंगे, जिस वक्त असर साहब उन्होंने यह चीज शुरू करी या वे पुराना जितना भी राइटर था उन्होंने शुरू करी, उस वक्त सब कुछ जीरो थे, तो
1: ठीक बुनियादी थी
0: बुनियाद नहीं थी।
1: ठीक
0: तो अब जीरो से शुरू करना جڑو وہ ہم تا ہی سوچ سکیں یو کہ ہم کا چیز آج زیرو دی شروع کر

0: रुत गई बरसात गई ते क्यों नहीं मुड़े हो यार। बहुत खूब। ऊं पर देसन पल पल गुजरे आड़ा सोठा कर गए, रोज जीऊं ते रोज मरूंगा दर्द पराना जर गए। ऊं पर देसन पल पल गुजरे आड़ा सोठा कर गए, रोज जीऊं ते रोज मरूंगा दर्द पराना जर गए। रब्बा बेड़ी दंदे लाइए फस गई अद बिशकार, रुत गई बरसात गई ते क्यों नहीं मुड़ियो यार।
1: वाह जी वाह।
0: चाननिया मां पोए पड़ावो देखो उच्चे चढ़ गए, दर्द का हुड़ा जोर करें दे रौं अंदर बढ़ गए। किसना दोष दियूं ओ रब्बा किस्मत गई है हार, रुत गई बरसात गई ते क्यों नहीं मुड़ियो यार।
1: बहुत अच्छा।
0: बिन सज्जन उजाड़ लबे जो मिन्ना सब जहान, बाहर आए जा सावन जाए मुक्ता नी अरमान। गाड़ सरंगी माली ओवे पावे काली तार, रुत गई बरसात गई ते क्यों नहीं मुड़ियो यार।
1: बहुत अच्छा।
0: माली कूके छमर रोए सिंगर दर्द न बंडे, आज भी सेज सजा गए रखूं उन पतना गए दंदे। जित सजनांगा मेल ओवे था निखर पोए थो प्यार, रुत गई बरसात गई ते क्यों नहीं मुड़ियो यार।
1: बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
0: एक और गजल का कुछ शेर
1: इरशाद।
0: दो अखां ते दुल्ले अथरू दो नैनांगा पार था पत्थर, दो अखां ते दुल्ले अथरू दो नैनांगा पार था पत्थर, जागालां दे ओले रह गए नेरो वे इतबार था पत्थर। ते शेर है कि लगे मजनूंगा सीना मां दाग पोए था लैला गए
1: जी,
0: लगे मजनूंगा सीना मां दाग पोए था लैला गए, इश्क की लज निभाता बेड़े कितना वे उशियार था पत्थर।
1: बहुत अच्छा।
0: शेर है कि जग आलांगी ईन मनी दे पर्वत कप के नहर कटी, जग आलांगी ईन मनी ते पर्वत कप के नहर कटी, बाजी फिर तकदीर ने जीती दो जुस्सा बचकार था पत्थर।
1: क्या बात है।
0: शेर है कि अद्धी रात कतार बनी में किन शिंगराना कूके थी, अद्धी रात कतार बनी में किन शिंगराना कूके थी, सिंध पंजाब ते उड़ती आवे कूंजांगा बडियार था पत्थर। सुचा सुथरा रंग बरंगा दर्द मेरा गा भूमि, टोक तेरी मां चमकन आला नांगा पार दे पार था पत्थर।
1: बहुत अच्छा।
0: अपना उन बुजुर्गां गी तू के निशानी ढूंढे फहीम, अपना उन बुजुर्गां गी तू के निशानी ढूंढे फहीम, टेकन ला गए तुप लाए था वे दे काली तार था पत्थर।
1: बहुत अच्छा बहुत खूब।
0: दो अखां ते डुल्ले अथरू दो नैनांगा पार था पत्थर, जा गालां ते ओले रह गए मेरे वे इतबार।
1: वाह जी वाह। तारक फेम साहब तब ने अपना कीमती वक्त दितो ते ढेर सारी थारा नाल गल बात हुई, ते हालां भी दिल चाह कि थारा नाल और गल करा, लेकिन वक्त को तकाजो यू है कि अज वास्ते इजाजत लिया, फिर जिंदगी रही फिर मुलाकात करांगा। थारो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
2: सामीन तम इंटरव्यू सुन रहा था तारक फहीम साहब और ना, और मेजबानी का फराइज अंजाम देता मोहम्मद यूनुस कालू खेल साहब और ने। अगे पेश है यू नगमो।

0: अभी आप गोजरी प्रोग्राम सुन रहे थे। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। मीडियम 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5:50 हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ से गोजरी में खबरें पेश होंगी, जिसके फौरन बाद आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में खबरें सुनेंगे। पहले मकामी गोजरी खबरों का बुलेटिन।
1: आदाब, यो आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन है। उत्तम गोजरी में खबर सुनो। पहला अहम खबरों की सुर्खी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन पर चलन आई भारत की पहली ट्रेन पालक चांडी 10 के करेंगे रवाना। हुकूमत तुर्की और कौमी सलामती ना एक साथ अगर बढ़ान वस्ते पुर अजम वजीर दिफा राजनाथ सिंह। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के तहत उनतिकर लगभग 3.5 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा में दी हाजिरी। तय श्रीनगर में चिनार बुक फेस्टिवल को तीजो शुमारो 18 जुलाई तो वायको मनकद। उन पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पालक हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब को दौरों कर रहे हैं। वज़ीर आज़म हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन तो जिंद और सोनीपत के बीचकार चलन आली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चांडी 10 के रवाना कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जिंद में 14,700 करोड़ रुपया लागत आला तरक्याती प्रोजेक्ट न कौम का नाम वक्फ करेगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म चंडीगढ़ में 6,600 करोड़ रुपया, जलंधर में 5,470 करोड़ रुपया लागत आला तरक्याती प्रोजेक्ट को संगे बुनियाद रखेगा और कई एक को इफ्तिताह भी करेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार की कोशिश एक ऐसा भारत की तामीर की है जित सरहद सिर्फ महफूज हुए। उन्हें क्यों कि हुकूमत इस गल न यकीनी बना रही है कि तुर्की और कौमी सलामती एक साथ आगे बढ़े। वे आज नई दिल्ली में BRO टेक सिंपोजियम तो खिताब कर रहा था। उन्हें क्यों कि नवा बुनियादी ढांचा किसी भी तरक्की याफ्ता तहजीब की एक अहम पहचान है और जड़ो बुनियादी ढांचो आज तामीर किया जा रहा है वो आने आला साल में मुल्क की तहजीब न तैयार करेगो। राजनाथ सिंह ने क्यों कि सरकार को मकसद इस गल न यकीनी बनाना है जे दूर दराज इलाका में रहन आला किसी भी शहरी ना यो महफूज ना हो जे वो किसी भी दायरे तो अलग है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में कई वफूद नाल मुलाकात करके अपना अपना शोभा नाल जुड़िया मामलात पर मौसूफ के नाल तबादला ख्याल किया। मुलाकात करन आला में बाबा अमरनाथ जी और बड़ा अमरनाथ जी यात्री निवास का सदर श्री पवन कोहली की क्यादत आला एक वफद और श्री कैमर्स डेविड की क्यादत आला ऑल इंडिया मैसेज सेवा दल को एक वफद भी शामिल है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास की शुरुआत तो पहला नई दिल्ली में आज कांग्रेस की पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग मनकद हुई। मीटिंग में कुल हिंद कांग्रेस

0: सदर मलिक अर्जुन खड़गे लोकसभा में हिजब इख्तलाफ का रहनमा राहुल गांधी और दूजा पार्टी लीडर ने शिरकत की। मीटिंग के बाद नामा निगारा नाल गल करता हुआ कांग्रेस का रुकन पार्लिमान प्रमोद तिवारी ने कहा जे लीडर ने पार्लीमेंट का आन आला इजलास में चाया जान आला अहम मामला पर पार्टी का मौकफ प्रतिवाद रख्याल कियो। हज 2027 वास्ते दरख्वास्त जमा करान की आखिरी तरीक में उन सिर्फ कुछ ही त्याड़ा बाकी रह गया है। इतलात के मुताबिक अजा तिकर जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने सिर्फ 2700 दरख्वास्त मिली है, जबकि इस साल हज कमेटी के को लगभग 8000 सीटों को कोटो मौजूद है। इस ताल्लुक तो जम्मू कश्मीर हज कमेटी का एग्जीक्यूटिव अफसर डॉक्टर शिजात अहमद कुरैशी ने हमारा नुमाइंदा नूरुल ऐन इशरत के नाल गल करता हुआ कहो
1: हज 2027 के लिए एप्लीकेशन का सिलसिला जारी है। 20 जुलाई 2026 लास्ट डेट मुकर्रर की है। हमें तकरीबन 8000 के करीब हमारा कोटा इस साल एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी तक 2700 ही एप्लीकेशन आई है। तकरीबन 5000 करीब कम एप्लीकेशन है। मोस्टली तो यही देखा जा रहा है कि जो हज की कॉस्ट है जो एस्कुलेट हो रही है पिछले कई सालों से, वही एक वजह है जिसकी वजह से कम एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर से आ रही है। श्रीनगर एम्बार्केशन नॉर्मली महंगा माना जा रहा है। अगर यहाँ के आजमीन दिल्ली से जाना चाहिए और किसी एम्बार्केशन जो 19 एम्बार्केशन इंडिया में किसी एम्बार्केशन से भी जाना चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं, वही एम्बार्केशन चूज कर सकते हैं। हमने टेकअप किया है हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ कि डेट एक्सटेंड की जाए, लेकिन थ्रू आउट इंडिया कितनी एप्लीकेशन हैं उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि एप्लीकेशन को एक्सटेंड करना है या नहीं करना है।
0: सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आसान तरीके पर जारी है और उन तिकर लगभग 3.5 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया। इतलात के मुताबिक आज 3 बजे तोड़ी करीब 16000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी थी। एलजी मनोज सिन्हा ने इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों की आमद पर इत्मीनान को इजहार करता हुआ यात्रा का आसान इनकाद में शामिल महकमा की सराहना की है। इसी दौरान आज जम्मू का भगवती नगर यात्री निवास तो 5195 यात्रियों पर मुश्तमिल 15 मुकाफलों वादी पहुंचे। इन बिचू 3450 यात्री पहलगाम जबकि 1745 यात्री बालतल कर यात्रा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर कानून साज का स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने तरक्याती प्रोजेक्टों ना पूरा मयार के नाल तेजी नाल मुकम्मल करने की जरूरत उजागर करता हुआ पुलों की हिफाजत की निबरान पर जोर दिया है। वो आज चाडोरा में वाका अपजारी नाला पर नबार्ड के तहत सैलाब की रोकथाम का इकदाम और सासकी दूम के तहत सैलाब नाल मुतासर होने के बाद बहाली का काम को जायजा ले रहा था। गोजरी में ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर तो सुन रही आई। खबर तम आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर ते डीटीएच पर भी सुन सकें। जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत यूटी का तकरीबन सारा जिला में समग्लरों के खिलाफ कार्रवाई और आवाम में जानकारी पैदा करने की सरगर्मी जारी है। गांधरबल जिला में इस अभियान का तफसीली हवाला के नाल हमारा नुमाइंदा।
2: सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक गांधरबल पुलिस ने इस अरसे में 24 मुकदमा दर्ज किए और 29 अफराद को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 82.14 ग्राम हेरोइन, 881 ग्राम चरस, 15.45 किलोग्राम बंगपत्री, 109 बोतलें कोडीन और 84 साइकोट्रॉपिक कैप्सूल बरामद की गई, जिनकी मजमुई मालियत 20,84,000 रूपये बताई जाती है। पुलिस ने मजीद कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को PIT NDPS एक्ट के तहत हिरासत में लिया, जबकि 12 बैंक अकाउंट मुंजमद किए गए और मंशात के कारोबार से वाबस्ता 2,27,00,000 की 3 जायदादें भी जब्त की गई। जिला भर में 339 इंसदाद मंशात बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किए गए। मंशात का अंजाम सिर्फ तबाही है जबकि जिंदगी का असल नशा कामयाबी। आइए महफूज और रोशन माशरे की तामीर का अहद करे से नो टू ड्रग्स। खबरों के लिए गांधरबल से मैं साबिर अयूब।
0: यह सो तेड़ा अभियान उन अपना इख्तिताम दर बढ़ रही है। श्रीनगर में 18 जुलाई तो 26 जुलाई तक चिनार बुक फेस्टिवल को तीजो शुमारा मुनक़द हो रही है। इस सिलसिले में सारा इंतजाम ना हतमी शक्ल दी जा रही है। श्रीनगर का जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने इस सिलसिले में आज जिले डल में एक शिकारा रैली ने चंडी दस के रवाना कियो। बुक फेस्टिवल की अहमियत और इंतजाम का ताल्लुक तो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया का डायरेक्टर युवराज मलिक ने हमारा नुमाइंदा शेख तजमुल के नाल गल करता हुआ कियो।
3: जैसा कि आप जानते हैं कि चिनार बुक फेस्टिवल 18 से 26 जुलाई डल लेक के खूबसूरत किनारे SKICC में हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। इसे शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर, हमारे बाकी संस्थान और साथ ही साथ सभी लोगों के पार्टिसिपेंट्स एक कम्युनिटी इवेंट के तौर पर हम

0: लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको लिटरेचर, आर्ट, कल्चर और बहुत सारी चिल्ड्रन एक्टिविटीज के साथ एक मेगा बुक फेयर भी देखने को मिलेगा, जिसमें 200 से ज्यादा पब्लिशर्स हैं और 250 के आसपास यहाँ पर स्टॉल होगी। सो आने वाले 9 दिन निश्चित रूप से आर्ट, लिटरेचर, कल्चर का एक सेलिब्रेशन है और कश्मीर अपने आप में एक समृद्ध परंपरा रही है, उस परंपरा को आगे ले जाने का काम चिनार बुक फेस्टिवल ने किया है और निश्चित रूप से पूरी सिटी के लिए, पूरे कश्मीर के लिए गर्व का विषय है कि हमारे पास भी अपना एक खुद का एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पुस्तक महोत्सव हम लोग यहाँ स्थापित कर पाए। तो जो भी हमारी कश्मीर की संस्कृति है, जो भी परंपराएं हैं, उनको एक मंच देने का काम चिनार बुक फेस्टिवल के माध्यम से हमने प्रयास किया।
1: कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज एक तकरीब के दौरान 17वीं कौमी यूथ पार्लियामेंट मुकाबला में कौमी चैंपियन के तौर उभरन आल यूनिवर्सिटी की टीम की इज्जत अफजाई की गई। इस मुकाबला को एहतमान पार्लिमानी उमूर की मरकजी वजारत ने किया था। इज्जत अफजाई की यह तकरीब यूनिवर्सिटी का गांधी भवन में इदारा के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान की सदारत में मुनक़द हुई, जिसको एहतमाम तालब इल्मा की बहबूद का शोभा ने किया था। इस मौका पर शोभा का रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल और दूजा अहदेदार भी मौजूद था। वाइस चांसलर ने ऐलान किया जो यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी कौमी सतह का यूथ लीडर यूथ लीडरशिप प्रोग्राम में करण आ तालब इल्मा ने यूनिवर्सिटी के फ्रेमवर्क के मुताबिक एकेडमिक क्रेडिट भी दिता जाएगा। इं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्री माता वैष्णो देवी स्थापन पर हाजिरी दी थी। उन्होंने उत्त जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली वास्ते प्रार्थना की। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी बोर्ड की तरफ श्रद्धालुओं वास्ते दस्तियाब सहूलियात को जायजा लियो। साइंस ते टेक्नोलॉजी का मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है जो तेज तरक्की कर रही हयातियाती मैशियत मुल्क में सेहत और गजाई सलामती, वैक्सीन की तैयारी, रोजगार पैदा करना और वोकल फॉर लोकल मुहिम न मजबूत करे। नई दिल्ली में 2035 तक भारत न एक बायो इकानमी पावर हाउस के तौर तामीर करन तो मुतलिक नक्शे रह न लॉन्च करन की तकरीब तो खिताब करता हुआ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा जो 21वीं सदी बायो टेक्नोलॉजी की सदी है। तो इसके नाल ही गोजरी खबरों को यो बुलेटिन मुक्यो। दी इजाजत, अल्लाह हाफिज़।

0: समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के तहत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अल नीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़े। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा

0: का कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद हरियाणा में, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर के देवबंद, दिल्ली और अन्य स्थानों पर यह अभियान चलाया गया। ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के कारण ये दुर्घटना हुई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक सातवें ओवर में बगैर कोई विकेट खोए 43 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ईशा आकाशवाणी श्रीनगर, शबजित 5 मिनट शब्द पेश प्रोग्राम गमी बाय खतरा।

ربه ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون يلعبون فار

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तहत सब 60 करोड़ लूक 5 लक्षन तम मुफ्त इलाज हकदार वनुक तम बहन करोड़न इलाज सपुद यम सत गरीब घरन इलाज पे सपदन वाली खर्च किन 2 लक्षन करोड़न हज बचत सपुद अस करू आयुष्मान ऐप डाउनलोड तो बनयु आयुष्मान का जानकारी बापत करू 1455555 फोन नंबर पे रबित कई
1: बदलो बदलो आदत बदलो
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या
1: बदलो बदलो आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में जहां मिलेंगी इंग्लिश हिंदी उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर टुगेदर वी रीड टुगेदर लीड
4: सामने मोहतरम हम आपको बताना चाहेंगे कि आज रात 9 बजे आपका हर दिल अजीज प्रोग्राम हम सफर ब्रॉडकास्ट होगा मौजू है आलम मलाइका अलैहिमुस्सलाम सामने मुकर्रम जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफर के रूही रवां हैं हजरत मौलाना फैयाज अहमद जरू साहब दामत बरकातहुम और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा सुनना न भूलें प्रोग्राम हम सफर आज रात 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से

0: शेरबीन के समैन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूदात हैं, जंत्र मंत्र एहतजाज के लिए कांग्रेस ने हामी भर ली, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के फैसले का इंतजार। चिनार बुक फेस्टिवल का इनाकाद 18 जुलाई से श्रीनगर में। वादी में गिरा बाजारी उरूज पर। और किश्तवाड़ में आबपाशी सहूलियत नाकिस। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से।

0: साहब दामत बरकात हम और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। सुनना न भूलें प्रोग्राम हम सफर आज रात 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से।
1: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी lead.
2: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहर भी ना, आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के 5,200 से ज्यादा यात्रियों का एक नया काफिला आज सख्त सिक्योरिटी हिसार के दरमियान जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से पवित्र गुफा के 2 बेस कैंपों के लिए रवाना हुआ। हुकाम के मुताबिक 5,201 तीर्थयात्रियों सुबह सवेरे जम्मू में बेस कैंप से 191 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। इस जत्थे में बालतल के लिए 1,745 और पहलगाम के लिए 3,456 तीर्थयात्री शामिल हैं। याद रहे कि श्री अमरनाथ यात्रा ने सिर्फ पहले 13 दिनों में यात्रियों की तादाद के एतबार से 3,00,000 का हिंसा उबूर करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। रामबन से मोहम्मद तस्कीन की इतला है कि आज करूल रामबन के मकाम पर 47 अमरनाथ यात्रियों से भरी एक गाड़ी में आग लग गई। यात्रियों का ताल्लुक राजस्थान से बताया जाता है। ताहम सभी यात्री और बस का ड्राइवर और कंडक्टर महफूज रहे। समिन नेशनल बुक ट्रस्ट, जिला इंतजामिया श्रीनगर और कौमी काउंसिल बराए फरूग उर्दू जबान के मुश्तरक तआवुन से 18 जुलाई से 26 जुलाई तक श्रीनगर में चनार किताब मेले के तीसरे शुमारे का इनाकाद किया जा रहा है। NBT के डायरेक्टर युवराज मलिक ने आज श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाबरू, चिनार किताब मेले के चीफ कोऑर्डिनेटर अमित वांचू और NCPUL के डायरेक्टर शम्स इकबाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तफासील बताई। उन्होंने कहा कि यह किताब मेला डल झील के किनारे वाके SKICC के लॉन में 18 से 26 जुलाई तक मुनाकिद होगा। एक रिपोर्ट के साथ इमरान नायकू।
3: नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया NBT, जिला इंतजामिया श्रीनगर और नेशनल काउंसिल प्रमोशन फॉर उर्दू लैंग्वेज NCPUL के इश्तराक से मुनाकिद होने वाले तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल का इनेकाद 18 से 26 जुलाई तक शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर में होगा, जिसमें मुल्क भर से तकरीबन 200 नाशरीन, 250 से जायद बुक स्टॉल्स और 800 के करीब अदीब, शायर, दानिश्वर, फनकार, मुहक्किकीन और इल्मी शख्सियात शिरकत करेंगी। फेस्टिवल की तफसीलात आज श्रीनगर में मुनाकिदा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश की गई, जिससे डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के डायरेक्टर युवराज मलिक, नेशनल काउंसिल प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल और चीफ कन्वीनर डॉक्टर अमित वांचू ने खिताब किया। इस मौके पर नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के डायरेक्टर युवराज मलिक ने कहा कि चिनार बुक फेस्टिवल अब एक बाकायदा सालाना कैलेंडर इवेंट बन चुका है, जो मुल्क के नुमाया अदबी और सकाफती मेलों में अपनी जगह बना रहा है। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल का मकसद मुआशरे में मुताले के फरोग, इल्मी मकालमे, सकाफती तबादले और फिक्री सरगर्मियों को फरोग देना है। उन्होंने बताया कि फेस्टिवल में अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, कश्मीरी समेत मुख्तलिफ भारतीय जबानों की हजारों किताबें नुमाइश के लिए रखी जाएंगी, जहां कारीन को मुल्क के मारूफ नाशरीन, मुसन्निफीन और अदबी शख्सियात से बराह रास्त मुलाकात और तबादला ख्याल का मौका भी मिलेगा। NCPUL के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल ने कहा कि इस साल फेस्टिवल में एक शानदार कुल हिंद मुशायरा मुनक्कद किया जाएगा, जिसमें मुल्क के नामवर शोरा शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस इकदाम का मकसद उर्दू जुबान व अदब को फरोग देना और नई नस्ल को अपनी अदबी रिवायत से जोड़ना है। उन्होंने मजीद कहा कि फेस्टिवल के दौरान अदबी नशस्तें, किताबों की रोनमाई, मुसन्निफीन से मुलाकात, मुबाहिसे, सकाफती प्रोग्राम और मुख्तलिफ इल्मी सरगर्मियाँ भी मुनक्कद होंगी, जो इस तकरीब को एक हमागीर अदबी मेले की शक्ल देंगी। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने कहा कि इस साल फेस्टिवल में बच्चों के लिए खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं, ताकि इनमें मुताले की आदत और तख्लीकी सलाहियतों को फरोग दिया जा सके। उन्होंने कहा 18 से 26 जुलाई तक SKICC श्रीनगर में श्रीनगर के बच्चों के लिए खुसूसी सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा। ये प्रोग्राम अवाम के लिए मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगा। किताबों की नुमाइश के साथ साथ बच्चों को मुख्तलिफ मुमताज शख्सियात से बराह रास्त बातचीत और انٹریکٹیو سیشنز میں شرکت کا بھی

0: का मिलेगा। चीफ कन्वीनर डॉक्टर अमित वनचू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फेस्टिवल की तैयारियों पर रोशनी डाली और कहा ये अदबी मेला कश्मीर की इल्मी व सकाफती शनाख्त को मजीद मजबूत बनाने के साथ साथ मकामी और कौमी सतह पर अदबी रवाबित को फरोग देगा। इससे कबल दिन के आगाज में डल झील पर एक अलामती शिकारा रैली शिकाराथन का इनेकाद किया गया, इसे डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुंतजमीन ने इस साल के फेस्टिवल का मौजू भी जारी किया जो टुगेदर वी रीड टुगेदर वी लीड रखा गया है, जिसका मकसद मुताला इल्म और इज्तिमाई तरक्की के पैगाम को आम करना है।
1: इमरान नायकू की रिपोर्ट आपने सुनी किताब मेले के ताल्लुक से, जो कि 18 से 26 जुलाई तक SKICC श्रीनगर में मुनाक़िद हो रहा है चिनार किताब मेले के नाम से। इधर जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल के जेर एहतमाम आज काउंसिल के साबिक सदर मरहूम डॉक्टर जावेद इकबाल की इल्मी अदबी समाजी और तंजीमी खिदमात को खिराज तहसीन और खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब मुनाक़िद हुई, जिसमें अदीबों दानिश्वरों असातिज़ा सहाफ़ियों और मुख्तलिफ शोबाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने डॉक्टर जावेद इकबाल को एक मुमताज तबीब अदीब दानिश्वर और उर्दू जबान का मुखलिस खादिम करार देते हुए कहा कि उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। इस मौके पर डॉक्टर जावेद इकबाल की हयात व खिदमात पर मकाले और एक सिपासनामा पेश किया गया। तकरीब में फिराक सोपोरी के शेरी मजमुए सुरूर जुस्तजू की रूनमाई भी अमल में लाई गई। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंदराबी ने आज जिला बड़गाम में आसार शरीफ पेटमखामा बीरवा और पोशकर में वाक़ हजरत बाबा हनीफुद्दीन के आस्थाने पर हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने और वक्फ इमलाक से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। बाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए डॉक्टर दरक्षा अंदराबी ने मजीद कहा
2: होगा कि हमें जंतर मंतर पे जाना है तो जाएं, कोई किसी ने उनको तो रोका नहीं है। रही बात स्टेटहुड की, वो हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे गृह मंत्री जी ने उसी दिन पार्लियामेंट में कहा है कि वक्त आने पे हम यहाँ पे स्टेटहुड देंगे। एनसी के जलसे करने से और प्रोटेस्ट करने से वो चीज नहीं मिलने वाली है जो ऑलरेडी पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है, जो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा है वो पत्थर की लकीर है।
1: ये थी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद रक्षा अंद्राबी, जिन्होंने आज बड़गाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, दरगाहों पर हाजिरी दी और बाद में सियासी सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल किया। और प्रोग्राम के आखिर में एक खबर के मरहूम लेक्चरर शब्बीर अहमद डार के चहलुम पर गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर का एक वफ्त फोरम के सदर सैयद बशीर कौसर की क्यादत में टनबर के गफबल गांव जाकर मरहूम के अहले खाना से मुलाकात हुआ और उनसे ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
3: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
4: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान, रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000025।
5: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
6: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
7: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का

0: जर्रा जर्रा दिल से बना है, खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।
1: सामिनी मोहतरम, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज रात 9 बजे आपका हर दिल अजीज प्रोग्राम हम सफर ब्रॉडकास्ट होगा। मौजू है आलम मलाइका अलैहिस्सलाम। सामिनी मुकर्रम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफर के रूही रवां हैं हजरत मौलाना फैयाज अहमद जरूर साहब दामत बरकातहुम, और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। सुनना न भूलें प्रोग्राम हम सफर आज रात 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से।
2: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर विटामिन ई तो विटामिन बी हिच कमी द्रामस।
3: तो क्या शक न फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
2: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
3: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में त्रावने यवा। विटामिन ए छो साने इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में।
2: मगर ये है आज सठा द्रो?
3: हाँ ना ना सुई कमत मज मुशक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
4: पनुन तो पन्ने आयाल जिंदगी बनाई सेहतमंद तो प्लस एफ निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पानो बाजरस में दस्तियाब फोर्टिफाइड वसैलन जानकारी खतर करो www.ffrc.fssai.gov.in पर रब्त।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जैन।
6: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेज का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी lead.

0: ये जो हज की कॉस्ट हैं जो एस्केलेट हो रही हैं पिछले कई सालों से, वही एक वजह है जिसकी वजह से कम एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर से आ रही है। श्रीनगर एम्बार्केशन नॉर्मली महंगा माना जाता है, अगर यहाँ के आजमीन दिल्ली से जाना चाहें और किसी एम्बार्केशन जो 19 एम्बार्केशन है इंडिया में, किसी एम्बार्केशन से भी जाना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं, वही एम्बार्केशन चूज कर सकते हैं। हमने टेकअप किया है हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ कि डेट एक्सटेंड की जाए, लेकिन थ्रू आउट इंडिया कितनी एप्लीकेशन है उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि एप्लीकेशन को एक्सटेंड करना है या नहीं करना है।
1: सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आसन तरीके पर जारी है और अब तक लगभग 3.5 लाख यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए हैं। आज सुपहर 5 बजे तक मजीद जायदस 19,000 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। एलजी मनोज सिन्हा ने इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों की आमद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए यात्रा के अहसन इनकाद में शामिल महकमों की सताइश की है। दरियसना आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 5,195 यात्रियों पर मुश्तमिल 15वां जत्था वादी पहुंचा। ट्रांसपोर्ट महकमे की सेक्रेटरी अवनी लवासा ने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर के हमरा आज दरियाई जहलिम पर मुजव्वजा रिवर क्रूज ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की अमलावरी के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जीरो ब्रिज से लेकर पंथा चौक तक रिवर क्रूज रूट पर तैयार किए जाने वाले टर्मिनल्स और जरूरी बुनियादी ढांचे की तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की। वाजह रहे कि ये प्रोजेक्ट इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर सरकार के बाहमी इश्तराक से अमलाया जा रहा है, जिसकी बदौलत मुतबादिल और पायदार माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निजाम तैयार किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में सूबाई कश्मीर के ओहदेदारों का एक ताजियती इजलास मुनक़िद हुआ, जिस दौरान पार्टी के साबिक मौविन जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल को शानदार खराज अकीदत अदा किया गया। इजलास की सदारत पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने की, जिस दौरान मरहूम की अवामी खिदमात, उनकी असूल पसंदी और बेलौस सियासी जद्दोजहद को याद करके उनके हक में दुआए मगफरत की गई। इजलास में शामिल सभी ओहदेदारों ने सोगवारों के साथ दिल्ली हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। दरियसना जमीयत हमदानिया के एक वफद ने आज मरहूम के घर जाकर लवाकीन की ढारस बंधाई। वफद की क्यादत जमीयत हमदानिया के सदर फारूक अहमद गानी कर रहे थे। इधर जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने आज पार्टी ओहदेदारों के हमरा मरहूम डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल की रिहाइशगाह पर जाकर उनके लवाकीन के साथ ताजियत का इजहार किया। उन्होंने वहां वजीर आला उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की और उनके चाचा की वफात पर ताजियत जाहिर की। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने तरक्याती प्रोजेक्टों को पूरे मियार के साथ तेजी से मुकम्मल करने की जरूरत उजागर करते हुए पुलों की हिफाजत यकीनी बनाने पर जोर दिया है। वह आज चाड़ोरा में वाका अपजियारी नाला पर नबार्ड के तहत इंसदादी सैलाब के इकदामात और SASCI डोम के तहत सैलाब से मुतासिर होने के बाद बहाली के कामों का जायजा ले रहे थे। जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत यूटी के तकरीबन सभी अजला में स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयों और आवाम में जानकारी पैदा करने की सरगर्मियां जारी हैं। ये 100 रोजा अभियान अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। गांधरबल जिले में इस अभियान के तफसीली अहवाल के साथ हमारे नुमाइंदे।
2: सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक गांधरबल पुलिस ने इस अरसे में 24 मुकदमा दर्ज किए और 29 अफराद को गिरफ्तार किया। कार्रवाईों के दौरान 82.14 ग्राम हेरोइन, 881 ग्राम चरस, 15.45 किलोग्राम बंगपत्री, 109 बोतलें कोडीन और 84 साइकोट्रॉपिक कैप्सूल बरामद की गई, जिनकी मजमुई मालियत 20,84,000 रूपये बताई जाती है। पुलिस ने मजीद कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को PITNDPS एक्ट के तहत हिरासत में लिया, जबकि 12 बैंक अकाउंट समंजमित किए गए और मंशात के कारोबार से वाबस्ता 2,27,00,000 की 3 जायदादें भी जब्त की गई। जिला भर में 339 इंसदादी मंशात बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किए गए। मंशात का अंजाम सिर्फ तबाही है, जबकि जिंदगी का असल नशा कामयाबी। आइए महफूज और रोशन माशरे की तामीर का अहद करे से नो टू ड्रग्स। खबरों के लिए गांधरबल से मैं साबिर अयूब।
1: मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने शुपैया में अब्दुल हमीद ठोकर नामी मुनशियात फरोश का रिहायशी मकान अटैच किया है। हंदवाड़ा में पुलिस ने लंगेड के हिलाल अहमद तांत्रे और जचलडारा के बिलाल अहमद मीर को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। गांधरबल और बारामुल्ला अजला के कई इलाकों में पुलिस ने वहां खुदरऊ बंग को तबाह किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। श्रीनगर में 18 जुलाई से 26

0: 20 जुलाई तक चिनार बुक फेस्टिवल का तीसरा शुमारा मुनक़िद हो रहा है। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने इस सिलसिले में आज झीले डल में एक शिकारा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। बुक फेस्टिवल की अहमियत और इंतजामात के ताल्लुक से नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर युवराज मलिक ने हमारे नुमाइंदे शेख तजमल के साथ बात करते हुए कहा।
1: जैसा कि आप जानते हैं कि चिनार बुक फेस्टिवल 18 से 26 जुलाई डल लेक के खूबसूरत किनारे SKICC में हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। इसे शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर, हमारे बाकी संस्थान और साथ ही साथ सभी लोगों के पार्टिसिपेंट से कम्युनिटी इवेंट के तौर पर हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको लिटरेचर, आर्ट, कल्चर और बहुत सारी चिल्ड्रन एक्टिविटीज के साथ एक मेगा बुक फेयर भी देखने को मिलेगा, जिसमें 200 से ज्यादा पब्लिशर्स हैं और 250 के आसपास यहाँ पर स्टॉल होगी। सो आने वाले 9 दिन निश्चित रूप से आर्ट, कल्चर का एक सेलिब्रेशन है और कश्मीर अपने आप में एक समृद्ध परंपरा रही है। उस परंपरा को आगे ले जाने का काम चिनार बुक फेस्टिवल ने किया है और निश्चित रूप से पूरी सिटी के लिए, पूरे कश्मीर के लिए एक गर्व का विषय है कि हमारे पास भी अपना एक खुद का एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पुस्तक महोत्सव हम लोग यहाँ स्थापित कर पाए।
0: जम्मू में आज कई वफूद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात करके अपने अपने शोबों से जुड़े मामलात पर मौसूफ के साथ तबादले ख्याल किया। मुलाकात करने वालों में बाबा अमरनाथ जी और भुड्डा अमरनाथ जी यात्री निवास के सदर पवन कोहली की कयादत वाला एक वफ्द और कैमरॉस डेविड की कयादत वाला ऑल इंडिया मसीह सेवा दल का एक वफ्द भी शामिल है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज एक तकरीब के दौरान 17वीं कौमी यूथ पार्लियामेंट मुकाबले में कौमी चैंपियन के बतौर उभरने वाली यूनिवर्सिटी की टीम की इज्जत अफजाई की गई। इस मुकाबले का एहतमाम पार्लिमानी अमूर की मरकजी वजारत ने किया था। यह तकरीब यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में इदारे की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान की सदारत में मुनक्कद हुई, जिसका एहतमाम तालिब इल्मों की बहबूद के शोबे ने किया था। इस मौके पर शोबे के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल और दीगर सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। वाइस चांसलर ने ऐलान किया कि यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी कौमी सतह के यूथ लीडरशिप प्रोग्रामों में करने वाले तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी के फ्रेमवर्क के मुताबिक एकेडमिक क्रेडिट भी दिए जाएंगे। जिला अस्पताल कुलगाम ने एक नए तर्ज के खुदकार CLIA एनालाइजर की तंसीब के साथ ही तशखीसी खिदमात को मजबूत करने का एक और अहम संग मील तय किया है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इस सहूलत की तंसीब के बाद अब अस्पताल में मकामी सतह पर ही मुख्तलिफ तरह के टेस्ट होना शुरू किए गए हैं। महकमे अवामी शिकायत ने मुतला किया है कि JK समाधान पोर्टल में मजीद लचक लाने की गरज से जारी काम के तनाजुर में इस पोर्टल की कारगुजारी अगले चंद रोज के लिए आरजी तौर पर दस्तियाब नहीं रहेगी। एक बयान में महकमे ने कहा है कि पोर्टल में ये अपग्रेड जरूरी है, जिसकी बदौलत बाद में शहरियों के लिए अवामी शिकायत की चाराजुई का एक ज्यादा आसान तजुर्बा देखने को मिलेगा। महकमे ज़राअत कश्मीर ने डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर्स की सलाहियत साजी के लिए आज एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम का मकसद मस्नूई जहानत पर मबनी जरी डेटा जमा करने के अमल में सुरत लाना है। प्रदेश BJP ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सरकार की मुबैना नाकामी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करने का फैसला किया है। एक प्रेस बयान में BJP ने कहा है कि इस सिलसिले में कश्मीर वादी में 20 जुलाई को जबकि जम्मू डिवीजन में 1 अगस्त को एहतजाज किया जाएगा। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में जारी मानसून के दौरान कैच दी रेन मुहिम को तकवीयत बख्शने की जरूरत पर जोर दिया है। एक पैगाम में उन्होंने पानी की अहमियत को उजागर करते हुए कहा है कि बारिश के पानी को बचाने और इसको इस्तेमाल में लाने का मुअस्सर निजाम इख्तियार किया जाना चाहिए। इसके अलावा बोरवेल्स, कुओं और पानी के रवायती जखीरों को बहाल किया जाना चाहिए, ताकि मौसम की बदलती सूरत हाल के बीच लोगों को माकूल मिकदार में पानी मुहैया हो सके। वजीर अजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर अजम हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन से जिंद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। वजीर अजम जिंद में 14,700 करोड़ रुपये लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा वजीर अजम चंडीगढ़ में 6,600 करोड़ रुपये जबकि जालंधर में 5,470 करोड़ रुपये लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई एक का इफ्तिताह भी करेंगे। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आगाज से कबल नई दिल्ली में आज कांग्रेस की पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में कुल हिंद कांग्रेस सदर मलिक अर्जुन खड़गे, लोकसभा में हिजब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी और दीगर पार्टी लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग के बाद नामा निगारों से बात करते हुए कांग्रेस के रुकन पार्लियामान प्रमोद तिवारी ने कहा कि लीडरों ने पार्लियामेंट के आने वाले इजलास में उठाए जाने वाले अहम मामलों पर پارٹی کے موقف پر تبادلہ خیال کیا۔

0: सुप्रीम कोर्ट ने CBSE निसाब के तहत नवीं जमात में एक तीसरी जबान को मुतारिफ किए जाने पर तश्वीश का इजहार किया है और कहा है कि इससे तलबा पर दबाव में इजाफा होगा। अदालती उजमा ने तजवीज दी है कि इसे पांचवीं या छठी जमात में ही शुरू किया जाना चाहिए ताकि तलबा इससे मानूस हो सकें। खबरों के इख्तिताम से पहले मौसम पर एक नजर। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। माफ कीजिए, एक बार फिर सुनिए, कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.9 डिग्री सेल्सियस था। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:32 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:42 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आदाब। आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। अमरनाथ यात्रा बरसगीर की कदीम तरीन मजहबी रिवायात में से एक है जो हर साल लाखों अकीदतमंदों को जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों की तरफ खींच लाती है। ये यात्रा अमन, मजहबी रवादारी, कौमी यकजहती और इंसानी अखोवत की एक ऐसी रोशन अलामत है जिसकी अहमियत वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद नुमाया होती जा रही है। साल 2026 की अमरनाथ यात्रा भी इसी जज्बे के साथ जारी है और इब्तदाई चंद ही दिनों में लाखों यात्रियों की आमद ने इस हकीकत को वाजह कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के बारे में एतमाद और मुस्बत सोच पहले से ज्यादा मुस्तहकम हुई है। हकीकत यह है कि यह कामयाबी मुसलसल मनसूबा बंदी, बेहतर इंतजामी हिकमत अमली और इज्तिमाई जिम्मेदारी का समर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर अला उमर अब्दुल्ला की रहनुमाई में इंतजामिया ने यात्रियों के लिए जिन सहूलियात का इंतजाम किया है वो इस अज़्म की अकासी करता है कि मजहबी आज़ादी, अवामी सहूलत और इंसानी जान का तहफ़ुज़ हर हाल में मुकद्दम है। सेहत की बेहतर सहूलियात, पीने के पानी की दस्तियाबी, ट्रैफिक का मुनज़्ज़म निज़ाम, क़ियाम व तआम के मुनासिब इंतजामात, बरवक्त मालूमात की फराहमी और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मुअस्सर राबता इस यात्रा को मजीद महफूज बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा का एक अहम पहलू कश्मीर के अवाम की रिवायती मेहमान नवाजी भी है। सदियों से ये सरजमीन मोहब्बत, अखुवत, बर्दाश्त और एहतराम की अलामत रही है। आज भी मकामी लोग यात्रियों के साथ हुस्न सलूक, ताउन और खैर सगाली का मुजाहिरा करते हुए इस तहजीबी रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। यही वो मुस्बत रवैया है जो दुनिया के सामने कश्मीर की असल तस्वीर पेश करता है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें इंसानियत, मोहब्बत और बाहमी एहतराम को हर इख्तलाफ पर फौकियत हासिल है। अगर इकतसादी पहलू से देखा जाए तो अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर की मईशत के लिए भी गैर मामूली अहमियत रखती है। लाखों यात्रियों की आमद से सियाहत से वाबस्ता बेशुमार शोबों में नुमाया माशी सरगर्मी पैदा होती है। हजारों नौजवानों को रोजगार के मौके हासिल होते हैं और छोटे कारोबारों को नई जिंदगी मिलती है। इस तरह यात्रा मकामी मईशत में भी नई तवानाई पैदा करती है। यह हकीकत भी अपनी जगह अहम है कि किसी भी खत्ते की तरक्की एतमाद, अमन और इस्तेकाम से वाबस्ता होती है। जब दुनिया देखती है कि लाखों अफराद एक पुरअमन माहौल में अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं तो इससे जम्मू कश्मीर की साख मजबूत होती है। यही मुस्बत तासुर मुस्तकबिल में सियाहत, सरमायाकारी और माशी तरक्की के नए इम्कानात पैदा करता है। इस एतबार से अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर की मजमुई तरक्की और खुशहाली के लिए एक अहम मुहर्रिक भी है। ताहम इसके साथ हमारी चंद इज्तिमाई जिम्मेदारियां भी वाबस्ता हैं। पहाड़ी माहौल का तहफ्फुज़, सफाई सुथराई, कुदरती वसाइल की हिफाजत और माहौल दोस्त तर्ज अमल को हर सूरत यकीनी बनाया जाना चाहिए। लाखों अफराद की आमद के दौरान अगर माहौलियात का ख्याल न रखा जाए तो कुदरती हुस्न और माहौलियाती तवाजुन मुतासिर हो सकता है। इसलिए इंतजामिया के साथ साथ यात्रियों, मकामी आबादी और समाजी तंजीमों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस कुदरती विरसे को महफूज रखने में अपना किरदार अदा करें। अमरनाथ यात्रा हमें ये सबक भी देती है कि मुख्तलिफ मजाहिब, जुबानों और सकाफतों से ताल्लुक रखने वाले लोग बाहमी एहतराम और ताउन के साथ एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। यही जज्बा भारत की कसरत में वहदत की हकीकी रूह है। जम्मू कश्मीर हमेशा से रवादारी और इंसान दोस्ती की

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वादी की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

को हाई अलर्ट पर रखा गया और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। पुलिस के आला हुकाम के मुताबिक ये एक बारूदी सुरंग का धमाका था जिससे रिमोट कंट्रोल के जरिए सर अंजाम दिया गया। सरहद पुलिस की जानिब से इस हमले के मुतालिक जारी किए गए बयान के मुताबिक मारे जाने वाले पुलिस एहलकारों में फरीदुल्ला नामी ASI और अख्तर जमान नामी सिपाही शामिल हैं, जबकि इस धमाके में शदीद तौर जख्मी होने वाले एहलकारों के नाम कुदरतुल्ला और अख्तर जमान बताए गए। धमाके के फौरन बाद इन सभी को डेरा इस्माइल खान के DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर जख्मी एहलकारों का इलाज जारी है। गवर्नर खैबर पुख्तूनख्वा फैसल करीम कंडी ने टांग जंडोला रोड पर पुलिस के ऊपर हुए इस हमले पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए इसकी जबरदस्त मजम्मत की है और आला हुकाम से इस वाके से मुतलिक रिपोर्ट तलब की है। बहरहाल एक बात तय है, जो दूसरों के लिए खड़ा खोदते हैं वो खुद भी इस खड़े में गिर जाते हैं और हमसाया मुल्क पाकिस्तान पर ये मिसाल पूरी तरह से सादिक आती है, जो दहशतगर्दी को हवा और बढ़ावा देने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। और इसके शिकार ममालिक में हमारा मुल्क भारत सरफहरिस्त है, जहां पाकिस्तान ने पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक दहशतगर्दों की पुश्त पनाही करके हमारे मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और हज़ारों इस दहशतगर्दी का शिकार बनकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और अब पाकिस्तान भी इस दहशतगर्दी की आग में झुलस रहा है और आए दिन यहाँ किसी न किसी इलाके में दहशतगर्दाना कार्रवाई से मुतलिक खबरें आना एक मामूल सा बन गया है। खैबर से लेकर बलूचिस्तान तक और पंजाब से लेकर सिंध तक अब दहशतगर्दी का ये दायरा वसी हो चुका है और इससे निमटने में अब यहाँ की एजेंसियों को दांतों पसीना आ रहा है और दहशतगर्दी का ये जिन अब किसी भी तौर उनके काबू में नहीं आ रहा है। बहरहाल पाकिस्तान के हक में यही बेहतर होगा कि वो दहशतगर्दी की पुश्त पनाही करना तर्क कर दे। अगर वो ऐसा करता है तो शायद वो दूसरों को भी सुकून से बैठने देगा और खुद भी सुकून और अमन के साथ रहने का अहल बन सकेगा। सामीन, बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल आप और हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा फिल्मी नगमा।

आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज आकाशवाणी श्रीनगर से। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। समीन, पाकिस्तान में हालात इस कदर तश्वीशनाक हैं कि अब सूरतहाल किसी तौर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज मुश्तरका तौर कार्रवाइयां अमल में लाने के बावजूद दहशतगर्दी के इस जिन को काबू करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। सूबा सरहद में तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के खिलाफ जारी कार्रवाइयां अब तक नाकाम साबित हुई हैं और आए दिन हमें दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की खबरें मौसूल होती रहती हैं। फौज की तरफ से जारी ऑपरेशन में अब तक फौजियों समेत सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। फौज की तरफ से दावा किया जा रहा है कि फौजी ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दों का सफाया किया जा रहा है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं कि दहशतगर्दों के साथ साथ कितने मासूम लोग भी इस ऑपरेशन के दौरान मारे जा चुके हैं। इल्ज़ाम यही है कि ऑपरेशन के दौरान काफ़ी तादाद में बेकसूर शहरियों को भी मारा जा रहा है, जिसके खिलाफ पूरे सूबे के लोगों में तश्वीश और गम गुस्सा पाया जा रहा है। सूबा पख्तूनख्वा की PTI हुकूमत ने वक्त वक्त पर इसी फौज ऑपरेशन पर अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहैल आफरीदी ने कई बार इस ऑपरेशन की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि फौज की तरफ की जाने वाली कार्रवाइयां लाहासिल हैं और आइंदा भी इससे कोई नतीजा बरामद होने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ऑपरेशन से मुतालिक और ऑपरेशन शुरू होने से पहले एतमाद में उन्हें नहीं लिया गया और एक तरफा कार्रवाइयां करके मामले को और बिगाड़ दिया गया। इधर सूबा बलूचिस्तान का हाल भी कुछ इसी तरह का है। यहाँ भी फौज ने दावा किया है यहाँ जारी ऑपरेशन के दौरान में काफी तादाद में दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ऑपरेशन शाबान नाम से जारी इस ऑपरेशन में अब कुल मिलाकर 121 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा किया जा रहा है। फौज की तरफ से इस ऑपरेशन में पैदल दस्तों के साथ साथ हवाई फौज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ताज़ा तरीन दावे के मुताबिक 5 जुलाई 2026 को शुरू हुए इस ऑपरेशन में अब तक 83 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है, जबकि इससे कबल कार्रवाइयों को मिलाकर मारे जाने वाले मुशतबा दहशतगर्दों की तादाद 121 तक पहुँच गई है। फौजी हुकाम ने दावा किया है रवां हफ्ते के आगाज में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। कार्रवाई से मुतल्लिक जारी तफसीलात में कहा गया है कि पाकिस्तानी फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस की जानिब से बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी है, जिसमें मजीद दहशतगर्द मारे गए और ये ऑपरेशन मुसलसल जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों को हवाई और जमीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी इदारों की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में मुबैना दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना है। बहरहाल ये तो हुई पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की तरफ से ऑपरेशन शाबान और इसमें हासिल होने वाली कामयाबी से मुतल्लिक बात। ताहम ये हकीकत सारी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान को सूबे बलूचिस्तान में सियासी मामलात को लेकर जबरदस्त मजहमत का सामना है। यहाँ के अवाम पंजाबी तसल्लुत से आज़ादी चाहते हैं और

इस हवाले से यहाँ काफ़ी अरसे से एक कौम परस्त तहरीक जारी है, जबकि यहाँ के लोगों का इल्ज़ाम है कि कुदरती वसाइल से मालामाल इस सूबे को दो दो हाथों से लूटा जा रहा है, जबकि यहाँ के आवाम को इन बुनियादी वसाइल के फ़ायदे से बेदखल रखा गया है। समीन, यहाँ पर हम अपनी बातचीत के सिलसिले को वक्फा देते हुए समाप्त करते हैं ये प्यारी सी गज़ल।

आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़ आकाशवाणी श्रीनगर से। बात हो रही है पाकिस्तान की। समीन, पाकिस्तान की एक अहम सियासी जमात जमीयत उलमाए इस्लाम JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान को फौज के खिलाफ उनका हालिया बयान लगता है कि भारी पड़ रहा है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बयानबाजी के बाद पंजाब असम्बली में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ एक करारदाद जमा कराई गई। ये करारदाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से जमा कराई गई है। पार्टी की तरफ सीनियर रहनुमा और रुकन पंजाब असम्बली शुएब सदीकी ने ये करारदाद जमा कराई, जिसमें कहा गया है कि कौमी सलामती के इदारे यानी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बोलना और इसे तनकीद का निशाना बनाना अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना है। करारदाद के मतन में मजीद कहा गया है कि रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात कौमी मफाद के मुनाफी हैं। शुएब सिद्दीकी ने कहा, फौज और सिक्योरिटी इदारों की नुक्ताचीनी करना कहां की वतन परस्ती है। उन्होंने कहा, मौलाना फजल रहमान ने फौज को तनकीद का निशाना बनाकर एक तरह से मुल्क के साथ गद्दारी की है, जबकि उनका फर्ज था कि वो पूरी कौम की तरह अपने मुल्क के दिफाई इदारों के साथ यकजहती का इजहार करें। समीन, आपको ये भी बताते चलें कि मौलाना फजल रहमान ने हाल ही में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान फौजी जवानों की हलाकतों को तनख्वाह से जोड़ा था। इधर वजीर दिफा पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ ने भी मौलाना फजल रहमान के इस बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना एक गैर मुनसिफाना फैल है और उनके इस बयान से मारे गए फौजी जवानों की तौहीन हुई और उनके अहल खाना की दिल आजारी हुई है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान एक सरकर्दा रहनुमा हैं और उनसे इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कोई भी शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाता है, बल्कि कुर्बानी देने के पीछे वतन परस्ती का जज्बा कारफरमा होता है। उन्होंने कहा कि हम वाकयात और हालात या तरीक़ेकार से इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर नजरिए वाबस्तगी, मोहब्बत और कुर्बानी की तौहीन नहीं कर सकते हैं। वजीर दिफा पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि उनके बयान के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में पाकिस्तानी फौज के साथ साथ दीगर इदारों के जवान और आम शहरी मारे जा रहे हैं और उनकी कुर्बानियों को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं है, बल्कि ये इखलाकी गिरावट और बेहसी का इजहार है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस तरह का गठिया बयान देकर मौलाना फजल रहमान ने सिर्फ एक इदारे के नहीं बल्कि हजारों हलाक हुए सिक्योरिटी अहलकारों, उनकी बीवियों और उन यतीम हुए बच्चों के जज्बात को मशरूह कर दिया है। इस असना में यह खबर मौसूल हुई है कि मौलाना फजल रहमान के खिलाफ जिला गुजरांवाला के एडिशनल सेशन कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसके बाद एडिशनल सेशन जज फैसल जमील ने मौलाना फजल रहमान को अदालत में तलब किया है। मंजूर कादिर नामी दरख्वास्त गुजार ने अपनी रिट पिटीशन में कहा है कि मौलाना फजल रहमान ने अपने बयान में हलाक शुदा सिक्योरिटी अहलकारों का मजाक उड़ा दिया है। दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ नोटिस जारी किया है और उन्हें इस महीने के अवाखिर में अदालत में तलब किया है। समीन, ये तो थी हमसाया मुल्क पाकिस्तान में जारी हालात वाकयात से मुतलिक बात। प्रोग्राम के आखिर में आप और हम समाप्त करते हैं ये फिल्मी।

0: प्यार से।
1: इस फिल्मी नगमे के साथ ही प्रोग्राम वादी की आवाज का आज का अपना वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। आपसे लेते हैं इजाजत, खुदा हाफिज।
2: वादी की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

0: अब प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे वादी की आवाज़। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। रात के 8:30 हो रहे हैं। समाप्त करें प्रोग्राम स्पॉटलाइट। प्रोग्राम से पहले ये वक्फा।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज़ जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
2: सामिनी मोहतरम, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज रात 9 बजे आपका हर दिल अजीज प्रोग्राम हम सफर ब्रॉडकास्ट होगा। मौजू है आलम मलाइका अलैहिस्सलाम। समय मुकर्रम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफर के रूही रवां हैं हजरत मौलाना फैयाज अहमद जरू साहब दामत बरकातहुम, और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। सुनना न भूलें प्रोग्राम हम सफर आज रात 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: for the general economy and industrial health of the region's eastern India.
1: Absolutely. And all these projects, you know, they generate a lot of employment during construction also. And of course, when they become operational, then they employ thousands, lakhs of people. In that context, you mentioned about these women from rural India gaining so much importance, training, and getting so much pride being part of semiconductor revolution in our country. Also, if we talk about mobile phones, you know, the way the number of factories has expanded and the employment opportunities have expanded, and a very critical figure which the union minister shared today, that nearly 60% of the employees in these factories related to mobile phones are women. How important do you find this aspect of inclusive development which is taking place?
0: See, this is phenomenal in a country where women have struggled for a very long time to enter sectors that were largely considered to be male bastions. You would not imagine, you know, women employees rising by the day, by the year in electronic manufacturing, for example. Even in the semiconductor plants, you see a lot of women these days. And what I also want to add is a very fascinating thing that's happening is 500 Indian colleges have adopted the curriculum now on semiconductor production and how the semiconductor chains operate. And 8,000 students every year are studying.
2: दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू, हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
3: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनों के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीएआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने ये पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
6: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ

0: समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
2: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
1: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे।

0: दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। रात के 9 बज चुके हैं।
2: समीन पेश खदमत से प्रोग्राम हम सफर। ये प्रोग्राम जो तहताम वातनावान हम सफर मैरिज काउंसलिंग सेल वाका दारुल उलूम रोड बागे सुंदरबाला छत्सबल श्रीनगर ब्रांच ऑफिस शेखुल आलम रोड करनगर श्रीनगर।

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू में खबरें सुनते हैं।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत ने समाजी तहफ्फुज़ के फ्रेमवर्क के तहत 1 अरब से ज्यादा शहरियों को शामिल करते हुए अहम संगे मील उबूर किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के दरमियान बराह रास्त कमर्शियल परवाज का आगाज हो गया है, जिससे फिजाई कनेक्टिविटी के नए दौर की शुरुआत हो गई है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा में लाखों अकीदतमंद शरीक हो रहे हैं। अमेरिका ने शुमाली ईरान में अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया है और बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले एक जहाज को नाकारा बना दिया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में 19 और 23 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 2 मर्द मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जबकि 3 मुक्केबाजों ने चांदी के तमगे जीते हैं। और मर्दों के क्रिकेट में कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत में समाजी तहफ्फुज़ का दायरा 1 अरब से तजावुज कर गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत में समाजी तहफ्फुज़ की कवरेज जो साल 2015 में 19% थी, साल 2026 में बढ़कर 68.4% हो गई है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ से ज्यादा शहरी समाजी तहफ्फुज़ के दायरे कार में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये मोदी हुकूमत की सबका साथ सबका विकास के अहद की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के अपने दौरे के दौरान जिंद रेलवे स्टेशन से जिंद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर मुल्क में ही डिजाइन, तैयार और इंजीनियर की गई है। इसकी तैयारी में घरेलू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जो जदीद रेलवे इंजीनियरिंग के शोबे में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों की अक्कासी करती है। इस ट्रेन के आगाज के साथ ही भारत उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें पहले से ही कामयाबी से चल रही हैं। इन मुल्कों में जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका शामिल हैं। इस ट्रेन की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा है। ताहम इस मखसूस रूट पर इसे 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। माफ कीजिए, ये रिपोर्ट हम आपको बाद में सुनवाएंगे। बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ जाएंगे, जहां वो 6,600 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट सेहत, तालीम और सड़कों के बुनियादी ढांचे से वाबस्ता हैं। इसके बाद जनाब मोदी जालंधर जाएंगे, जहां वो 5,470 करोड़ रुपये से ज्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, मुसाफिरों को सहूलत फराहम करना और खित्ते की माशी तरक्की को रफ्तार फराहम करना है। वज़ीर-ए-आज़म अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत अज़सर-ए-नौ तैयार किए गए 75 रेलवे स्टेशनों का भी इफ्तिताह करेंगे, जिनमें जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के आवाम के दरमियान रेलवे, सेहत, सकाफत, राबता, तालीम और दीगर शोबों से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के मुंतजिर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स अवाम, खासतौर पर मुल्क की युवा शक्ति की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएंगे। ज़िराअत और किसानों के बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आबोहवा की तब्दीली जैसे चैलेंजेस के बावजूद भारत ने इस साल 376 मिलियन टन गजाई अजनास और 377 मिलियन टन बागबानी फसलों की रिकॉर्ड कायम किया है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अब साइंसदान बराह रास्त खेतों में किसानों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेत बचाओ अभियान के तहत 1,657 साइंसी टीमों ने 728 जिलों में, खासतौर पर एल नीनो से मुतासर इलाकों में तकरीबन 1 करोड़ किसानों से राबता कायम किया है।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ आईसीआर

0: कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत मिशन ICAR 100 के तहत 100 यंग साइंटिस्ट ग्राम चैलेंज का आगाज करेगी, जिसमें नौजवान साइंसदान मसनूई जहानत, AI, रोबोटिक्स, जदीद ज़राअत और आबो हवा की तब्दीली के लिहाज से स्मार्ट ज़राअत जैसे शोबों में कौमी सतह पर मुकाबले मुनक़द किए जाएंगे। जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत आबो हवा की तब्दीली के लिहाज से 100 स्मार्ट गाँव भी तैयार करेगी, जो पायदार, जदीद और आबो हवा की तब्दीली से हम आहंग ज़राअत के मिसाली नमूने होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ज़रई तहकीक की भारतीय काउंसिल ICAR ने पिछले एक साल में 44 फसलों की 386 बेहतर अकसाम तैयार की हैं, जिनमें 94% आबो हवा की तब्दीली के खिलाफ मज़ाहिम फसलें और 29 अकसाम गजाइत से भरपूर हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साइंसी इदारों, सनत और रियासती हुकूमतों के दरमियान मजबूत इश्तराक की अपील की, ताकि मुल्क भर में स्वदेशी तर्ज पर तैयार करदा टेक्नोलॉजियों के बड़े पैमाने पर निफाज को यकीनी बनाया जा सके। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली के सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR की एक साल तवील प्लेटिनम जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि बुनियादी ढांचे की भारत की गैर मुतवक्के तौसी ने साइंसी इदारों को सड़कों, पुलों और ट्रांसपोर्ट निज़ाम के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों में तआवुन करने का अहम मौका दिया है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके दमन के लिए एक अहम संग मील के तौर पर आज नए तामीर शुदा नमो हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए पहली कमर्शियल परवाज का आगाज़ किया गया। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू और दमन व दीव और दादर व नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल ने मजकूरा हवाई अड्डे पर एक खसूसी तकरीब में इस पहली परवाज को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पेशरफ्त हाल ही में वजीर अजम नरेंद्र मोदी के हाथों नमो हवाई अड्डे के अफ्तताह के बाद हुई है। बराह रास्त फिजाई रबते से दमन में सियाहत, तजारत और सरमायाकारी को नुमाया फरोग हासिल होगा। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में नमो हवाई अड्डे से मुल्क के दीगर बड़े शहरों के लिए भी परवाजें शुरू करने का मंसूबा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उड़ीसा का पवित्र शहर पुरी अकीदत से सरचार है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा पूरी मजहबी अकीदत के साथ शुरू हो गई है। नामवाफिक मौसमी हालात के बावजूद अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ग्रैंड रोड पर मौजूद है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने की आलमी शोहरत याफ्ता रस्म बारिश के बाद दिन भर के लिए मुअत्तल रही। इससे पहले तकरीबात पर उस वक्त असर पड़ा जब मुबैना तौर पर भगदड़ जैसे वाक़े में एक अकीदतमंद की मौत हो गई। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: श्री गुंडीचा मंदिर के करीब भगदड़ जैसे वाक़े में एक अकीदतमंद की मौत हो गई, जबकि दिगर कई जख्मी हो गए। शदीद जख्मी अफराद को इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। उड़ीसा हुकूमत ने इस वाक़े की आला सतही जाँच का हुक्म दिया है, जबकि रथ यात्रा के बाकी हिस्से के लिए हिफाजती इंतजाम और भीड़ को मुनज़म करने के तरीक़ेकार को मज़ीद मुस्तहकम किया गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम।
1: हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने परिवर्तन स्कीम के रहनुमा उसूलों को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम का मकसद ट्रांसपोर्ट से होने वाली फिजाई आलूदगी और गाड़ियों से कार्बन के अखराज में कमी लाने के लिए पुरानी गाड़ियों की जगह नई और माहौलियात के लिए साजगार गाड़ियां लाने की हौसला अफजाई करना है। ये स्कीम खासतौर पर कौमी राजधानी खत्ता NCR में चलने वाले ज्यादा आलूदगी फैलाने वाले पुराने ट्रकों और बसों को भारत स्टेज BS6 मेयार से हम आहंग करना या बैटरी से चलने वाली गाड़ियों से तब्दील करने में मदद फराहम करेगी। इस स्कीम के तहत गाड़ी खरीदने वालों को मोटर गाड़ियों के टैक्स में रियायत, रजिस्ट्रेशन फीस में छूट, गाड़ी के कर्ज में 5% सूद की रियायत और रियायत की हकदार नई गाड़ियों पर साजो सामान के ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से कम अज कम 8% रियायत दी जाएगी। भारत के रिजर्व बैंक RBI ने मुल्क के मालियाती शमूलियाती इशारिये FI इंडेक्स में बेहतरी का इंदराज किया है। इसके मुताबिक ये इशारिया मार्च 2025 के 67 से बढ़कर मार्च 2026 में 70 हो गया है। ये मुतवातिर इजाफा मुल्क के मालियाती खिदमात के बढ़ते दायरे की पेशरफ्त और मुल्कगीर सतह पर मालियाती मसरूफियात की वसूत का अक्कास है। कंपोजिट FI इंडेक्स 97 इशारियों का अहाता करता है, जिसमें कोई बुनियादी साल नहीं होता। वहीं ये तीन बुनियादी पैमानों पर भारत के मालियाती इको निज़ाम को भी परखता है। FI इंडेक्स की शुरुआत मार्च 2021 में ख़त्म होने वाले माली साल के लिए अगस्त 2021 में हुई थी और इसे सालाना बुनियाद पर शाय किया जाता है। अमरीका ने आज सुबह सवेरे ईरान पर अपने हमले मजीद तेज कर दिए हैं। अमरीकी फ़ौज ने शुमाली इलाकों में भी कई अहदाफ को निशाना बनाया और एक बहरी जहाज़ पर भी फायरिंग की। अमरीका ने इस जहाज पर इल्जाम

लगाया कि वो ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए खित्ते में मौजूद अमरीका के इत्तेहादियों को निशाना बनाया और खबरदार किया कि हमलों में मजीद शिद्दत आ सकती है। ईरानी हुकाम के मुताबिक हालिया अमरीकी हमलों में 35 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं और 300 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इस बीच ईरानी फौज के खातिम उल अम्बिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने खबरदार किया कि अगर अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की उन बार बार दी जाने वाली धमकियों पर अमल होता है जिनमें ईरान के पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाने की बात कही गई है, तो ईरान खित्ते के अहम बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में ईरान अमरीका को आमनाए हुरमुज में मदाखलत करने की इजाज़त नहीं देगा। आकाशवाणी का खबरों का शोभा ज़रई तहकीक की भारतीय काउंसिल ICAR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मंगीलाल जाट के साथ भारत के ज़रई शोबे की पेशरफ्त में ICAR के तआवुन पर एक खसूसी बातचीत नशर करेगा। इस खसूसी बातचीत को मुल्कगीर हफ्तावार प्रोग्राम में आज रात 9:30 बजे सुना जा सकता है। ये प्रोग्राम FM गोल्ड चैनल और इजाफी फ्रिक्वेंसीज पर भी सुना जा सकता है। जकार्ता में आज 19 और 23 साल की उम्र तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी मुहिम का अख्ताम किया। विश्वनाथ सुरेश ने 50 किलोग्राम के जुमरे में और गंगा ने 55 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा जीता। 23 साल की उम्र तक के मर्दों के फाइनल में भारत ने सोने के 2 तमगे जीते हैं। वंशज ने फाइनल में 65 किलोग्राम के जुमरे में भरपूर मुकाबला किया लेकिन उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। मर्दों के 19 साल से कम उम्र के फाइनल मुकाबले में भारतीय बॉक्सर्स ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया लेकिन उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। मर्दों के क्रिकेट में कार्डिफ में 3 एक रोजा बैन अलावामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 234 रन का निशाना रखा है। इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह ईशान किशन को शामिल किया गया है। भारत को सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में खेले गए पहले मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ओलंपिक में 2 मर्तबा तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु आज टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दुनिया की 5 नंबर की चीनी खिलाड़ी हैन यू को सीधे सेटों में शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दूसरे राउंड के इस मुकाबले में सिंधु ने सिर्फ 35 मिनट में आला दर्जे की चीनी खिलाड़ी को 21-16, 21-14 से हरा दिया। कल उनका सामना जापान की नोजोमी ओकुहोरा से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में मिक्स्ड डबल्स की भारतीय जोड़ी तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की शिकस्त के बाद सिंधु टूर्नामेंट में वाहिद भारतीय खिलाड़ी रह गई हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 7 दिनों में मुल्क के मशरकी और शुमाल मशरकी इलाकों, मशरकी उत्तर प्रदेश और ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि बाज़ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने कहा कि कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में इसी तरह की सूरत हाल रहेगी, जबकि राजस्थान में इस महीने की 22 तारीख तक इसी तरह के मौसमी हालात बरकरार रहेंगे। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को मशवरा दिया है कि वो 21 जुलाई तक जुनूब मगरबी बहिरा अरब और अगले 2 दिनों तक जुनूबी खलीज बंगाल और इससे मुल्हिका इलाकों में जाने से गुरेज करें। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने सामाजिक तहफ़ के फ्रेमवर्क के तहत 1 अरब से ज़्यादा शहरियों को शामिल करते हुए अहम संगी मील अबूर किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के दरमियान बराह रास्त कमर्शल परवाज़ का आगाज़ हो गया है, जिससे फिजाई कनेक्टिविटी के नए दौर की शुरुआत हो गई है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा में लाखों अकीदतमंद शरीक हो रहे हैं। अमेरिका ने शुमाली ईरान में अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया है और बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले एक जहाज को नाकारा बना दिया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। और जकार्ता में 19 और 23 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 2 मर्द मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जबकि 3 मुक्केबाजों ने चांदी के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। रात के 9:30 हुए हैं।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
2: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
0: ईशा आकाशवाणी श्रीनगर। रात 9:30 बजे पेश प्रोग्राम बुजुर्गन बापत।

0: Yavuz program Buzargın Babet. Özgü programik mehmanıyız. Seyyid Amanullah Andrabi. Yemez katkaran maruf sufi şair, kalender, alim, Seyyid Gulam Hasan Andrabi bedil tralisi basmutalik. Peşkar o mezban, Gulam Resulah Khun.
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे, अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
2: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
0: यह आकाशवाणी श्रीनगर समिंग पेज सैन सीरियल क्लाइमेट चेंज द ग्लोबल वार्मिंग।

0: Through Jesus and Cyril Bozan, Climate Change and Global Warming. Özik mozus, almi tamazat refugee. Medium 268.8 meter और FM 103.5 MHz पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। शब के 10:30 हो रहे हैं। आप पेश हैं पंजाबी लिटरेरी प्रोग्राम। प्रोग्राम से पहले एक वक्फा।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
2: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, Together, we lead.

0: साहित्यिक मैगजीन सुन वालियां तक इस वेले ए आवाज मशीनम दी पहुंच रही है। दिल दियां गहराइयां तो आदाब दोस्तो आगाज करदे आं अज दे साहित्यिक मैगजीन दा मोहन सिंह दीवाना दी इस रचना दे नाल। कठे ने जलाली ते जमाली इथे जलबे, दिल विच ने मेरे प्यार ते डर दोवे ही जज्बे। की हस्ती असाडी है इना हस्तियां अगे, अस्थिर असी थिर जाप दे कुदरत दे तमाशे। छड तंग दिली बंदिया इस खुल दे लै सवाद, हुण झरनिया दे राग ते छड अपनी फरियाद। की हौसले ने तेरे इना चोटियां अगे, की तेरी शखावत इना झरनिया अगे। शिंगार तेरे तुछ ने फुलवाड़िया सावे, जालिम ने पहाड़ एथों दे तेथों भी वधेरे। आईया कई फौजां ते गईया खाक दे विच रल, पर फौज चिनार दी अज ओवे जिवे कल। तब्दीलियां जेलम ने हजारां ही ने तकियां, चाला नहीं पर इस दियां तब्दीलियों अकियां। डल देख के मैं कंबिया, रब्बा तेरी कुदरत बेअंत है ए अंत तू जान अपनी मितगत। जद शंकराचार्य ने शिखर पुज के डिठा, उफ ए तमाशा नहीं सच है कोई सुपना। ए रंग ते ए रूप ते ए राग ते खुला, जी करदा है हर दृश्य नू जफ्फी विच मदोला। रल जावा इना विच मैं बहार इना दी लुट्टा, हो जावा अनेक इक तो हर कैद तो छुट्टा। दम निकले मेरा तकदिया नजारा अजिहा, मिट्टी बने तां जो मेरी इस हुसन दा हिस्सा। इसी दोस्तो रचना मोहन सिंह दीवाना जी दी जगत तमाशा विचो। दोस्तो वद्दियां साडे साहित्यिक मैगजीन दे अगले पन्ने वल। साडे अगले पन्ने ते है मनप्रीत कौर जी दी वार्ता भाई कान सिंह नाभा जी, त्याओ सुनिए।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, आदाब नमस्ते। अज आपां गल करन जा रहे हां भाई कान सिंह जी नाभा दी। पंजाब दी धरती ने कई वड्डे वड्डे लेखकां कवियां आदि नूं जन्म दिता है। पंजाबी साहित नूं वख वख भागां दे विच वंडिया गया है। इस बारे मैं कई वारी गल कर चुकी हां अते हर एक भाग दे अपने अपने सूफी संत लेखक कवि होए हन, जिन्हां ने अपनियां रचनावां दे नाल पंजाबी साहित नूं होर रोशनाया है। अज असी एक ऐसे ही लेखक दी गल करांगे ते उन्हां दे जीवन ते चानना पावांगे। अज असी जिन्हां दी गल करन लगे हां, मैं पहला भी उन्हां दा नाम दस चुकी हां, ओ हन भाई कान सिंह जी नाभा। भाई कान सिंह जी नाभा दा जन्म 3 अगस्त 1861 विच होया। ओ 19वीं सदी दे एक सिख विद्वान अते लेखक सन, जो अपने रचे विश्व ज्ञान कोश ग्रंथ महान कोश करके जाने जाते हैं। उन्हां दे लिखे ग्रंथ महान कोश नू सिखी, पंजाबी जबान अते विरसे दे विश्व ज्ञान कोश दा दर्जा भी हासिल है। उन्हां दे लिखे होए कई होर रचनावां भी साडे कोल हन, उन्हां दे बारे अपां अगे जाके गल करांगे। उन्हां ने सिंह सभा लहर दे विच भी अपना योगदान दिता है। जिवें मैं पहला भी दस्या कि कान सिंह जी नाभा दा जन्म 3 अगस्त 1861 विच पटियाला रियासत दे एक सिख परिवार दे विच होया। उन्हां दे पिता जी दा नाम नारायण सिंह जी सी अते उन्हां दी माता जी दा नाम हर कौर जी सी। कान सिंह जी नाभा अपने दो भरावां अते एक भैण तो वड्डे सन। उन्हां ने पंडिता तो संस्कृत सिखी। उन्हां ने कई सारे मौलवियां अते प्रोफेसर गुरमुख सिंह तो फारसी सिखी। उन्हां ने महंत गजा सिंह जी तो संगीत दी सिख्या भी लई। कई रसालियां लई भी काम कीता। उन्हां ने अपनी जिंदगी विच कई किताबां लिखियां अते कई अखबारां ते रसालियां लई भी काम कीता। उन्हां दी पहली किताब दा नाम है राज धर्म। ए उन्हां दी पहली किताब सी जो उन्हां ने 1884 दे विच प्रकाशित कीती। इस तो बाद 1898 विच उन्हां ने हम हिंदू नहीं किताब लिखी, जो कि सिख धर्म अते सिखां दी असली पछाण ते आधारित सी। उस वेले जो हिंदू सिख धर्म नूं अपना हिस्सा कह के दस रहे सन, ए किताब लिख के कान सिंह जी नाभा ने सिख धर्म नूं हिंदू धर्म नालों वखरा दस दिता। पहला एक किताब लिखी गई सी जिसका नाम सी सिख हिंदू हैन। ए किसी होर लेख

0: ने लिखी सी। भाई कान सिंह जी नाभा ने अपनी ए नवी किताब लिख के सिख हिंदू नहीं जिसका नाम सी ए किताब लिख के उस पुरानी किताब का एक मुंह तोड़ जवाब दे दिता। उन्होंने द्वारा रचित शब्द कोश महान कोश 14 साल की खोज तो बाद 1926 मुकम्मल होया। 6 फरवरी 1926 के दिन 13.5 साल की मेहनत मगरों महान कोश मुकम्मल हो गया। दुनिया के हर एक सिख लेखक हर एक गैर सिख लेखक ने अपनियां रचनावां वास्ते महान कोश की मदद जरूर ली होनी है। फिर कान सिंह जी नाभा लाहौर चले गए अते उही समा सी जदों ओ सिंह सभा लहर दा भी हिस्सा बन गए। भाई कान सिंह जी ने इस तो इलावा गुरमत मारतंड गुरु छंद अलंकार शब्द अलंकार राजधर्म अते होर भी कई किताबां लिखियां। इना ही नहीं उन्होंने कई लेख भी लिखे हुए हैं। भाई कान सिंह जी सही मान्या दे विच पंथ रतन सन। ओ एक एंथोलॉजिस्ट सन एक लैक्सिकोग्राफर लैक्सिकोग्राफर का मतलब यह हुंदा है जो कि डिक्शनरी यानी कि शब्द कोश की रचना करते हैं। भाई कान सिंह जी नाभा एक लैक्सिकोग्राफर भी सन अते ओ एक इंसाइक्लोपीडिस्ट सन क्योंकि जो उन्होंने द्वारा महान कोश रचिया गया है उन्हु सिख पंथ का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। उन्हों का देहांत 23 नवंबर 1938 होया।
1: भाई कान सिंह नाभा जी ए वार्ता पेश कर रहे सन मनप्रीत कौर जी। दोस्तो साडे अगले पन्ने ते है कहानी कहानीकार हन जितेंद्र सिंह जी ते कहानी है विदेश विच बदलदे रिश्ते।
2: विदेश च बदलदे रिश्ते ए कहानी मोहन सिंह दे परिवार दी है। मोहन सिंह दे दो पुत्र सन मोनू अते सोनू। मनु वड्डा पुत्र सी ते अते सोनू छोटा पुत्र सी। मोहन सिंह दी धर्म पत्नी दा नाम पारो सी। पारो ने मोहन सिंह नू कहा कि असी अपने वड्डे पुत्र नू विदेश च भेज दे हां ताके मनु भी वड्डा आदमी बन सके ते असी भी अपने गवांडियां वांगों तरक्की कर सकिए। ए सब सुन के मोहन सिंह ने पारू नू पुछया कि अगर असी अपनी सारी पूंजी ला के अपने वड्डे मुंडे मनु नू विदेश भेज देंदे हां तां साडे छोटे पुत्र दा की बनूंगा। पारो ने हसदिया होया कहा ओ एक दूजे बगैर नहीं रह सकदे। मनु विदेश च सेटल हो जाएगा ते ओ सोनू नू ही बुला लेगा या फिर सोनू नू एथे ही बिजनेस सेट करके दे देगा। खैर कुछ समय बाद मोहन सिंह अते पारो ने अपनी सारी पूंजी अते कर्जा चुक के मनु अपने वड्डे पुत्र नू अमरीका भेज दिता। शुरू शुरू विच ते मनु हर रोज अपने घर फोन करदा अते अपनी मजबूरी दस के हर महीने पैसे मंगवांदा जिस करके उना दे छोटे पुत्र सोनू नू अपनी इंजीनियरिंग दी पढ़ाई दे दौरान ही नौकरी करनी पै गई ताके ओ अपने वड्डे वीर लई कुछ पैसे विदेश भेज सके। होले होले समा बीतदा गया मनु भी विदेश च अनुकूलित होन लग्या अते पैसे भी कमान लग्या। फिर मनु दा घर फोन आना होली होली कट होन लग्या ते कुछ समय बाद फोन आना बंद हो गया। घर वाले बहुत फिक्रमंद होन लगे ते अगे रब अगे मनु दी शुकलता वास्ते अरदास करन लगे। खैर कुछ समय बाद मनु दा फोन आया पूरा परिवार खुश हो गया। खुशी दी लहर विच उना दी माता पारो ने फोन चुकया ते मनु ने दस्या कि मैं जल्दबाजी विच ब्याह करा लिया है ते मेरी एक बच्ची भी पैदा हुई है। मोहन सिंह अते पारो नू व्याह दे बारे सुन के बहुत बुरा लग्या। खैर उना दा छोटे मुंडे सोनू ने छोटी बेटी दा हवाला दे के मोहन सिंह अते पारो नू मना लिया। कुछ दिना बाद पारो मनु नू विदेश फोर करके कहंदी है कि पुत्र तू अपने छोटे वीर सोनू नू भी अमरीका लै जा या फिर उस नू बिजनेस चलाने लई कुछ पैसियां दी मदद कर। मनु ने अमरीकी पॉलिसियां दा हवाला दे के सोनू नू लै जाण तो मना कर दिता अते अपनी आर्थिक तंगी दा हवाला दे के पैसा भेजण तो भी मना कर दिता। फिर मनु ने एक बार फिर फोन करना बंद कर दिता अते ना ही परिवार वालियां दा फोन चुकदा सी। कुछ महीनियां बाद मनु घर फोन करके अपने पिता अते माता नू अमरीका आण लई कहंदा है। पारो दे मना करन तो बाद मनु अपनी छोटी

इसी दोस्तों कविता बेटी कवि सन गुरनाम सिंह अरशी जी। तेरिया नैणा विच सरगी मेरिया अखा विच शाम, तेरिया नैणा विच सरगी मेरिया अखा च शाम, नेर ते चानण दा होवे किस तरह एक थां मुकाम। जिसनू देना उस नहीं लैणा मेरा पयाम, इसलिए तू शहर सारे नू कही मेरा सलाम। मेरिया खाबा दा तू अंजाम लिख दिता है बेख, सह सुबह खंड रात ते लिख के मेरा कल्ले दा नाम। मेरिया खाबा दा तू अंजाम लिख दिता है बेख, सह सुबह खंड रात ते लिख के मेरा कल्ले दा नाम। तितलियां रंगा सुगंधा जुगनुआ नू वेख कर तू अजे खंड रात, डुबदा दिन न तकिया कर मुदाम। मैं हा पर्वत दी शिखर ते उजड़े मंदर दे वांग, मैं हा पर्वत दी शिखर ते उजड़े मंदर दे वांग, जिस दी हर सरगी उदासी बेचरागी जिस दी शाम। दिल जिहा हर घर सी जिस दा मां जही सी हर गली, हुण तां दुश्मन जापदा है उस ग्रां दा हर मकाम। रात तेरी याद शायद आके होवे मुड़ गई, रात मेरा दर्द मेरे नाल है सी हम कमाल। हुण तां अपना शहर भी लगदा है किन्ना ओपरा, ना रहे रास्ते पुराने ना रहे पहले मकाम। थो पता कोई नहीं जगतार दा, ना ही दरवेशां दे घर हुंदे ना पौणा दे ग्राम। इसी दोस्तो डॉक्टर जगतार जी दी कलम तो शीशे दा जंगल विचों लई गई काव्य रचना।

भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

0: ये नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने को लिए डटे हुए थे।
1: जगबंधु हे गोसाई।
2: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस्म पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs

मीडियम दोस्तों 68.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। शब के 11:10 हुए हैं। आज की मजलिस बर्खास्त करने से पहले एक नज़र कल हमारे यहाँ से नश्र होने वाले प्रोग्रामों पर।

रात 9:30 पर सेहत से मुतालिक फोन इन प्रोग्राम पेश होगा हेलो रेडियो क्लिनिक। मेहमान डॉक्टर हैं ऑनकोलॉजिस्ट डॉक्टर अबरार रसूल। मौजू कैंसर एहतियात और इलाज।

हम सफर ये सुपांसर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 8:45 पर। प्रोग्राम का मौजू है आलम मलाइका अलैहिस्सलाम। कल इस मौजू का 5वां किस्त पेश होगा। इस मौजू पर रोशनी डालेंगे हम सफर मैरिज काउंसलिंग इदारे शरीफ के सरबरा और इस प्रोग्राम के रूह रवां हजरत मौलाना फयाज अहमद जरूर साहब दामत बरकातहुम। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपड़ा। सुनना ना बोलिएगा प्रोग्राम हम सफर कल सुबह 8:45 पर। सुबह 9 बजे मकामी रोजनामों की सुर्खियां पेश होंगी। सूफी सदा यह प्रोग्राम पेश होता है सुबह 10 बजे। कल के प्रोग्राम का मौजू है तसव्वुफ तो मोहब्बत। तहरीर पेशकश गुलाम रसूल आखून।

हुजूर अहमद गाबरू और साथी शकजरों पेश करेंगे दिन के 11:30 पर और फिर दोपहर 2:30। इनसे आप कलाम दमबाज यूसुफ और कलाम शमस फकीर सुनेंगे। बजमी निस्वारास्ता होगी दोपहर 12:40 पर। दिन के 1:10 पर NCERT का तैयार करदा स्पॉन्सर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा उमंग। फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम पेश होगा सपहर 3:00। पार्टी प्रोग्राम सपहर 4:00 नष्ट होता है। पंजाबी प्रोग्राम सपहर 4:30 पर पेश होगा। इसमें इंटरनेशनल जस्टिस डे के हवाले से बात करेंगे। मेहमान एडवोकेट विक्रमदीप सिंह। गोजरी प्रोग्राम समाप्त करें 5:00। देहाती भाई अपना प्रोग्राम सुनेंगे 6:05 पर। हालात वाकात की जानकारी आपको मिलती है प्रोग्राम शेरबीन के जरिए 7:00। प्रोग्राम वादी की आवाज का वक्त नशरिया है 8:00। और 8:30 पर खेलों से मुतालिक प्रोग्राम पेश होगा स्पोर्ट्स टाइम। समीन, यह हैं कल हमारे यहां से नश्र होने वाले प्रोग्राम।

यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। शब के 11:14 हुए हैं। हमारी आज की इमरजेंसी पर बर्खास्त होती है। कल सुबह 6:28 पर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।

0: They're not even going back that much. So overall, if you have a, you know, you can remain calm and composed and, you know, just be there, stay put. It's not such a bad news.
1: It's not such a bad news because the investors, you know, they're taking comfort from the fact that they can stay invested. Otherwise, yeah, there would have been some kind of panic. We of course, continue to see very large-scale selling by the foreign investors who are selling worldwide. And today, in fact, I'm sure later in the news, you will read about what happens in the Korean market.
0: Yes, yes.
1: And they fell very sharply. So, FII is also in a state of flux right now. Given that there are steady fund flows in India, and we are seeing stability. Again, I would say that this is a period of consolidation for Indian markets. See, we are quite attractive now in terms of valuations compared to many other Asian markets, many other US segments or the market segments. So my guess is that we will take a couple of months to stabilize and then probably take a cue from there.
2: Puneet, agar bhartiye arthvyavastha ko lekar ke aur bhartiye share bazaar ko lekar ke hum baat kare to filhal bhartiye bazaar ke liye ek bada jokhim आपको लगता है कि कोई हो सकता है खास तौर पे ऐसे समय में जब निवेशक बहुत ही सतर्क रणनीति अपना रहे हैं तमाम जो चुनौतियां हम देख रहे हैं जिनकी अभी हमने कुछ देर पहले बात की जो भी परिस्थितियां हमारे सामने हैं
1: निखिल देखिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी है वो इन्फ्लेशन है क्योंकि जो वेस्ट एशिया में जो हालात चल रहे हैं और वहां पर ऑयल प्राइसेस अभी कंट्रोल में आ गए थे फिर अचानक दोबारा से बढ़ गए और हम देख रहे हैं कि भारत में उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर तो और उसी से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी रिलेटेड है अभी हमारे पास कुछ हेडरूम है कुछ कंफर्ट है और हम इसको और अपने को मजबूत बना सकते हैं मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा चाइना के ऊपर अभी हाल में चाइना के इकोनॉमिक नंबर्स आए हैं दो या तीन दिन पहले आए हैं नंबर्स और वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने जबकि वहां पर देखिए गवर्नमेंट जो है डेटा जो है गवर्नमेंट कंट्रोल होता है तो इतना आसान नहीं है उस पर भरोसा करना पर उसके बावजूद भी चाइना ने इकोनॉमिक ग्रोथ 4.25% अपना जीडीपी ग्रोथ दिखाया जबकि उनका लक्ष्य 5% था तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना में जब 4% के आसपास इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है और यदि भारत में हम 6.5% के साथ की उम्मीद रखते हैं तो मुझे लगता है कि हम काफी अच्छा कर रहे हैं गिवन द एनवायरमेंट दैट वी आर
0: गिवन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द होल वर्ल्ड
2: एक चीज अगर क्या हम जोड़ मतलब ये समझ सकते हैं कि निवेशकों का जो भरोसा है ऐसे में वो अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना अब से ये जो संघर्ष इस साल हम जो देख रहे हैं इसके पहले जैसे बना हुआ था या कुछ बदलाव आया है
1: बिल्कुल मैं ये कहूंगा जहां भरोसे का सवाल है तो भारतीय निवेशक पर्टिकुलरली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ये पैसा लगा रहे हैं उनका भरोसा बना हुआ है और वो टिके हुए हैं आप ये देखिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो काफी सेलिंग कर रहे हैं और उसके सामने वो कोई बहुत बॉयंट मूड नहीं है मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत तेजी में है या बहुत अग्रेसिव है अगर आप म्यूचुअल फंड डेटा को देखें तो करीब 30,000 करोड़ रुपए नेट इनफ्लोज अभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आ रहा है और ये एक स्टेबल नंबर है पिछले 6 महीनों से तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टर्स जो है वो स्टेडिली इन्वेस्ट कर रहे हैं ज्यादा यूफोरिया में नहीं कर रहे और पैनिक में वो बेच भी नहीं रहे
0: पर जब हम भरोसे की बात करें जैसे भी आपने पुनीत कहा कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं भरोसा है उन्हें Would you say that a lot of that trust that we're talking about is also because of the fact that, like we just discussed right now, most of the happening, what the way the markets are behaving or reacting is because of geopolitical situations. When you look at the numbers in India, when you look at the situation, the way India's progressing, things are pretty steady and going in a very positive direction. And that's what probably is earning the trust of the investors, retail investors.
1: Absolutely. In fact, the way we have managed this difficult economic condition, I think, is quite commendable. The policies that the government followed to stabilize the economy, to keep inflation under control, relatively speaking. Yeah. I mean, inflation could have shot up like anything, like in many other Asian countries. Mm. So my guess is that people take comfort from that. Yes. And the truth is that the liquidity conditions, the economic conditions continue to be

0: quite benign in India. There was a lot of apprehension that we will see, you know, a lot of pressure on consumption, a lot of pressure on inflation front. Fortunately, we haven't seen that.
1: Yeah.
2: पुनीत, क्या अभी आपको लगता है कि जो निवेशक हैं, घरेलू निवेशकों की हम बात करते हैं, तो अपेक्षाकृत अब वो सुरक्षित और बड़ी कंपनियों का रुख करने लगे हैं, खासतौर पर निवेश के संबंध में?
0: नहीं, देखिए निखिल, बड़ी मजेदार बात है ये कि पिछले दिनों यदि हम म्यूचुअल फंड फ्लोस की तरफ नजर डालें तो आप देखेंगे कि जो लार्ज कैप्स हैं उसमें इनफ्लोस अब कम है, और जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है उन स्कीम्स में अब ज्यादा फंड फ्लोज आ रहे हैं,
2: लेकिन उसमें भी गिरावट आ रही है।
0: उस गिरावट देखिए उतनी नहीं है, और जब इन्वेस्टर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं और सस्टेन ढंग से लगाते हैं तो एक्चुअली वो सोफिस्टिकेशन का एक संकेत होता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो अब मिड कैप्स में स्मॉल कैप्स में निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जो शुरुआती निवेशक होते हैं, स्टार्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो कंफर्ट ढूंढते हैं लार्ज कैप्स में, और इसलिए हम देखेंगे, अगर आप देखें तो इंडेक्स में उतना मूवमेंट नहीं आता है, लार्ज कैप जो हेडलाइन इंडेक्सेस हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी निवेश पिछले दिनों हुआ है।
1: सो लाइक यू सेड, इफ द रिटेल इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप, इट्स एक्चुअली साइन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ आवर रिटेल इन्वेस्टर्स, यू नो दैट, लाइक यू सेइंग इन द बिगनिंग एवरीबॉडी वुड लुक फॉर एट लार्ज कैप्स बिकॉज यू नो दैट इज वेयर यू गेट अश्योर्ड रिटर्न्स, बट इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप, दैट्स अ साइन ऑफ मैच्योरिटी,
0: दैट शोस मैच्योरिटी, दैट शोस कॉन्फिडेंस दैट पीपल हैव इन लार्ज, यू नो, नंबर ऑफ
1: कंपनीज इन द इंडियन स्टोरी एज़ वेल। Right, let's move on to the next story. Tech Mahindra today reported its financial results for the first quarter of the current financial year, that is from April to June this year. The company's revenue increased by 17.7% on an annual basis to 15,712 crore rupees. On a sequential basis, the company's revenue grew by over 4.2%. The company's net profit rose by around 8.2% to 1,465 crore rupees on a quarterly basis.
2: एशियाई बाजारों की बात करें तो एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 6.4%, जापान का निक्केई 2.8%, चीन का शंघाई कंपोजिट 1.8% से ज्यादा, और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम लगभग 0.4% गिरा था, जबकि ताइवान का ताइएक्स बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। इसके उलट हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.3% से ज्यादा बढ़ा था। इस बीच दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक ने पिछले 3 साल से ज्यादा समय में आज पहली बार अपनी मुख्य ब्याज दर को बढ़ाया है। मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद बैंक ऑफ कोरिया ने इस दर को 2.5% से बढ़ाकर 2.75% कर दिया, जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से बढ़ महंगाई से निपटने के लिए मुद्रा आपूर्ति को कम करना है। इस साल मई और जून में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 3% से ज्यादा रही, जो बैंक के 2% के लक्ष्य से अधिक है। पुनीत, दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें तो जिस तरह का हमने ये बदलाव देखा, 3 साल से अधिक समय के बाद बदलाव आया, आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो अमेरिका और इंडिया और चाइना के आंकड़ों का भी यहां पे ध्यान हमें रखना जरूरी है, तो इस कदम को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किस तरह से आप देखते हैं, आपको क्या लगता है कि कैसा संकेत आने वाले समय में मिलेगा हमें?
0: देखिए, कोरिया का जो शेयर बाजार रहा पिछले 2 वर्षों में वो बहुत ही चौंकाने वाला बाजार रहा है। पिछले वर्ष करीब करीब 2.5 गुना वहां पर इंडेक्स में तेजी आई, और इस वर्ष ऑलरेडी करीब 1.5 गुना तेजी आ चुकी थी। तो कोरिया का बाजार में एक अद्भुत, मैं कहूंगा, तेजी रही, और उसका खास कारण यह रहा कि वहां पर जो चिप, मेमोरी चिप बनाने के जो स्टॉक्स हैं, उसकी एक दो कंपनी है, बड़ी कंपनी, और वो उनका वेटेज बहुत ज्यादा था, और उसमें बहुत ज्यादा निवेश हुआ, और इसीलिए वहां पर वॉलेटिलिटी बहुत है। आज 6.5% आपने बताया कि इंडेक्स गिरा, थोड़े दिन पहले 7% बढ़ गया था, उससे पहले वो एक दिन 10% गिर के वहां पर सर्किट लग गया, तो इतना बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, लेकिन बहुत बड़ी मार्केट है, ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटी मार्केट है, लेकिन नैरो मार्केट है। उसके अपेक्षा में हम देखें तो जो बाकी जो बाजार हैं वो थोड़े डाइवर्सिफाइड रहते हैं, पर फिर भी उसका असर भारतीय बाजारों में पड़ता है, क्योंकि जब हम इमर्जिंग मार्केट्स कंपैरिजन करते हैं तो अगर कोरिया का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भारतीय बाजारों से आता है। FIIs पैसा निकालकर वो कोरिया में या ताइवान में या जापान में इन्वेस्ट करते हैं। मेरा खुद अपना अनुमान है कि जैसे जैसे हम देखेंगे कि जो एशियाई ये बाजार है, कोरिया, जापान, ताइवान, वियतनाम, हमने इनकी बात करी, ये जैसे जैसे बाजारों में गिरावट आएगी, वहां पर कॉन्फिडेंस कम होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स का, तो हम वो पैसा देखेंगे कि भारत में आएगा। तो मैं उन बाजारों को बहुत ध्यान से देखता हूं, क्योंकि वहां पर जो ट्रेंड है उसका रिवर्स ट्रेंड एक्चुअली भारतीय बाजारों में हम देखने को मिलता है हमें, तो ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां पर अभी वॉलेटाइल है और मुझे लगता है कि कमजोरी रही।
2: लेकिन जिस तरह से ब्याज दर बढ़ाने की बात है, जहां तक अगर थोड़ी सी बढ़ती हो तो उसका असर पड़ता है, खासतौर पर पूंजी जुटाने के लिए,
0: और वो तो बहुत नेगेटिव है। अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होता है

0: कोरिया में उन्होंने बढ़ाया सेंट्रल बैंक ने, तो साफ एक संकेत है कि वो इकोनॉमिक स्लोडाउन लाना चाहते हैं वहां पर। ज्यादा ग्रोथ हो रही है, एसेट प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक जो है वो अपना रेट कम कर ग्रोथ कम करना चाहती है, तो हमारे लिए बेहतर है और डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा।
1: पुनीत, लाइक यू सेड, यू नो इंडेक्सेस लाइक द साउथ कोरियन कॉस्पि एंड अदर, वेयर if we talk about South Korean KOSPI, the weightage of certain companies which are associated with chip manufacturing, you know, that very big percentage or very the weightage is very big. So when you compare it to Indian, you know, indices, whether it's Sensex, do you think it's actually a good thing that, you know, indices like Sensex and NSE, they are not completely, you know, being dominated by a certain sector or by a certain, you know, kind of market, so to speak?
0: Anubha, I think this is one of the strongest points which will really help Indian markets raise capital in the long term. Huh. We are a very, very diversified economy. It's not, we are not, KOSPI, for instance, has weightage of 55% from just two companies.
1: Yes.
0: Only two companies contribute 55% to the index weightage.
1: Yeah.
0: So what kind of money would one invest in that economy?
1: Yeah.
0: Because you are concentrated investment only in two companies. In India, we have more than 7,000 listed companies. Our indices are very strong. Even within the indices, you will see very wide diversification of sectors. So you will have banking, you will have healthcare, you will have telecom, you know, all kinds of sectors are there, and there are substantially large companies. So I think in long term foreign investors or all kinds of investors will find much more comfort investing in India. They'll have many more choices to invest in other markets which are narrow markets. They may make money in the short term, no?
1: Yes.
0: So they try to make hay in the last couple of years.
1: Yeah.
0: But I think in longer term they will definitely come to India. And,
1: right.
0: and what we saw was last 2 years they pulled money out of India, they put it in those momentum markets.
1: Yeah.
0: But eventually for the long term growth they will have practically no choice other than India to invest in.
1: And the next news from Nikhil.
2: जी, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि देश के वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी एफआई इंडेक्स में सुधार हुआ है। ये सूचकांक मार्च 2025 में 67 से बढ़कर मार्च 2026 में 70 तक पहुंच गया है। बैंक के अनुसार ये बढ़ोतरी दर्शाती है कि भारत वित्तीय सेवाओं का दायरा बढ़ाने और लोगों को वित्तीय गतिविधियों से जोड़ने में लगातार प्रगति कर रहा है। इससे पता चलता है कि देश के नागरिक अब बैंक खाता रखने के साथ साथ डिजिटल आधारभूत ढांचे, ऋण और बीमा उत्पादों का भी काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सूचकांक बिना किसी आधार वर्ष के 97 संकेतकों को परखता है और तीन मुख्य पैमानों पर देश की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करता है। हालिया बढ़ोतरी उपयोग और गुणवत्ता में बड़े सुधार को दिखाती है। बैंक ने कहा है कि ये सुधार मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से हुआ है, जो वित्तीय समावेशन के सशक्त होने का संकेत है। इनमें उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या की हिस्सेदारी 35%, इस्तेमाल करने की 45% और गुणवत्ता की 20% शामिल है। ये सूचकांक पहली बार अगस्त 2021 में मार्च 2021 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए पेश किया गया था और इसे हर साल उपलब्ध कराया जाता है। तो पुनीत जी, जिस तरह से आंकड़ों की बात है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, सुधार हमें नजर आ रहा है और भारतीय रिजर्व बैंक भी ये बात कह रहा है, तो लोगों को निवेश की दृष्टि से अगर जोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूती देने के लिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार उसमें उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, जिससे देश की प्रगति भी हो रही है।
0: लेकिन देखिए, पिछले 10-12 वर्षों से यदि आप सरकार का पूरा प्रोग्राम देखें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन उसका एक सेंट्रल पिलर रहा है। हम डिजिटाइजेशन की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, चाहे हम सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करें जनता को, तो उसका जो आधार है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में है। यानी जो प्रधानमंत्री ने शुरुआती अपने बिल्कुल जब उनकी टर्म शुरू हुई थी तभी उन्होंने कहा था जैम,
1: जनधन
0: अकाउंट,
1: आधार
0: और मोबाइल। और अगर आप देखें तो सारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो उसका एक सेंट्रल पीस है। और बड़ी मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि छोटे छोटे गांवों में बहुत दूर दराज जो बिल्कुल इनएक्सेसिबल एरियाज थे, वहां भी चाहे और सुविधाएं पहुंचे ना पहुंचे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो अपने मोबाइल से अपना काम कर पाते हैं। जो वर्कर्स इमिग्रेंट्स हैं, काम कर पाते हैं, वो सैलरी घर भेज पाते हैं। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत जैसे देश में, जहां पर बहुत रूरल पॉपुलेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना बहुत मुश्किल था। अगर आप वहां ब्रांच बैंकिंग करना चाहेंगे या वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग करना चाहेंगे, बहुत मुश्किल थी, पॉसिबल ही नहीं थी। तो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज बीन अ रेवोल्यूशन। और ये भारत का जो मॉडल रहा है, आप सब हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है, एंड दे आर ऑल ट्राइंग टू फॉलो।
2: इसमें स्टार्टअप्स की क्या भूमिका है, इस पर आप क्या कहेंगे?
0: नहीं, बहुत बड़ी भूमिका। देखिए, ये बात तो सही है कि जो स्टार्टअप्स ने जिस प्रकार से इसको फैलाया है पूरे देश में, आप एप्स की बात करें, फिनटेक कंपनीज की बात करें, आप पेमेंट गेटवेज की बात करें, यूपीआई की बात करें।

0: इसको जो भारत जो एक मैं कहूंगा एक एक विजन थी प्राइम मिनिस्टर की और एक विजन थी सरकार की कि लोगों से जोड़ना, वो सरकारी तंत्र अपने आप नहीं कर सकता था, उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल था और उसको पूरा निभाया है प्राइवेट सेक्टर ने, पर्टिकुलरली जो स्टार्टअप्स हैं, छोटी कंपनीज हैं, एंटरप्रेन्योर्स की कंपनीज हैं, अगर आप क्विक कॉमर्स की बात करें
1: जी,
0: मतलब इसके ऊपर तो आप समझिए कि हम कितना ही लंबी बात कर सकते हैं कि, और ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई, हम देखते हैं कि कितना बड़ा इसका असर आम आदमी के जीवन पे पड़ा है।
2: पुनीत, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंप्रूवमेंट इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी, हाउ बिग a role and how crucial is it when, you know, we talk about, we have a vision, the Prime Minister has a vision of Viksit Bharat by 2047. How crucial is the role of this financial inclusion and the improved financial literacy in that, in achieving that?
0: So, Anubha, what we need to realize is that financial inclusion is the only way that we can lift people out of poverty. See, the financial inclusion wasn't really meant to, I mean, it of course it has benefited everybody, people in the upper strata of society with higher incomes, with more prosperity, but financial inclusion is a crucial differentiator for people at the bottom of the pyramid. It is they who have been able to utilize their money, save their money, invest their money and benefit from financial inclusion. The whole focus of financial inclusion has been to target people who have been excluded from the formal financial system, and I think that is where the greatest achievement for these efforts has been, and the constant improvement in financial inclusion index showing that more and more people are getting better services, they are utilizing it more. If you look at the composition of index, it's very interesting. It says quality, utilization, accessibility. So these are the three main features of financial inclusion.
2: Right.
0: I think it's made a huge difference to India's growth.
2: Let's move on to the next story. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal interacted with the Indian business delegation comprising members of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Confederation of Indian Industry, ASSOCHAM and other regional associations in Brussels, Belgium. In a social media post, Mr. Goyal said that they discussed how the India-European Union Free Trade Agreement can open real doors for Indian industry and deliver tangible outcomes for Indian businesses, MSMEs and people.
3: सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। बदली हुई दरों के तहत डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर ₹15.50 प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि ATF के निर्यात पर कर बढ़ाकर ₹14.50 प्रति लीटर किया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर ₹2.50 प्रति लीटर किया गया है। बदली हुई दरें आज से लागू हो गई हैं। हालांकि घरेलू खपत के लिए इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
2: पुनीत, हियर आई वांट टू टॉक बिकॉज लाइक निखिल जस्ट रेड दैट दिस इज एक्चुअली अ फोर्टनाइटली रिव्यू ऑफ फ्यूल एक्सपोर्ट टैक्सेस। सो व्हाट इज फॉर द इफ वी हैव टू यू नो फॉर आवर लिसनर्स वी हैव टू टेल आवर लिसनर्स इन वेरी सिंपल लैंग्वेज व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस ऑफ दिस फोर्टनाइटली रिव्यू एंड हाउ डज इट अफेक्ट द इकोनॉमी।
0: सो अनुभव, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज बिकॉज इट टेल्स यू नॉट व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री बट एक्चुअली इट टेल्स यू व्हाट इज हैपनिंग विजावी पेट्रोल एंड डीजल एंड ATF डिमांड worldwide. Why? Because India has now become one of the major exporting countries for petrol, refined petroleum products. See, we import crude oil, but we are also one of the world's largest exporters of refined products now. And government calibrates these taxes depending on the demand for these products. So, if I look at this news, it tells me that government is expecting more exports from India, more pressure for exports from India for ATF and diesel. And therefore, we have raised custom duties. We want to retain some products within the country because there must be demand internationally. So mostly these figures or these taxes are revised based on international demand and also underlines the fact that India has now become a major exporter of refined products.
2: And would you also say that, you know, as and when, if supposing whatever, whether these export duties increased or decreased, it's also to do with whatever is happening on the international front, because if the prices go up, then obviously we also import, and so that's also to make sure that the domestic supplies remain intact and domestic domestic users get priority over exports.
0: So to some extent, yes, we are trying to protect and you know, build our own reserves. But the truth is that India, while it imports a lot of crude oil, we are very comfortable vis-a-vis the refining capacities. In fact, we are net exporters of refined products. So that is not that much of a concern for us. But it, of course, puts the taxes are in context of what is the demand internationally.
2: Let's move on to commodities. Global crude oil prices were marginally up today as escalated.

0: Iran and U.S. tensions raised worries about a prolonged West Asia conflict. Brent crude was trading 0.2% up at $85.16 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.5% up at $80.02 per barrel when reports last came in. And let's take have a look at the gold and silver prices as well. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.4% down at 1,41,870 rupees per 10 grams, while silver was trading over 0.9% down at 2,19,030 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.4% गिरकर 1,41,294 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 0.8% नीचे आकर 2,18,809 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। पुनीत, हमने कई सारे मुद्दों पर बात की, कई सारे विषयों को इस कार्यक्रम में लिया। आपके अनुसार आज के समय में निवेशकों को किन बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से अपनी अप्रोच रखनी चाहिए वो मतलब एक अच्छा निवेश कर सकें?
2: देखिए निखिल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो निवेशक हैं उनको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म अट्रैक्ट हो करके, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो कमोडिटीज हो, उसमें लुभा करके उनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि भारत की जो स्टोरी है उसमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, बिकॉज हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि इसमें अगर जो लंबे समय तक निवेश करेंगे उनके लिए रिटर्न्स अच्छी रहेंगी। तो कुल मिलाकर डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, एसेट पोर्टफोलियो बिल्ड होना चाहिए, आपको हर एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए और खास तौर से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए।
1: यानी कि हर एक बात पर, छोटी हो या बड़ी हो, उस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और उस रिसर्च करके, खुद रिसर्च करना बहुत जरूरी है, किसी की कहे सुनी बातों पर निवेश ना करें, वो सबसे बड़ा एक दुश्मन होता है हमारे पोर्टफोलियो का।
1: बिल्कुल। पुनीत जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद निखिल।
0: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड ऑन फ्लैट नोट। सेंसेक्स सेटल्स एट 77,187, निफ्टी ड्रॉप्स 6 points, मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्लोज इन नेगेटिव जोन, and global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: Namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपसे आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

दोस्तों कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में वक्त है समाचारों का, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय

0: परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंकपत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाज सीमा चौकी का दौरा करेंगे और बीएसएफ जवानों से बातचीत करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से संपर्क किया। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमान मंत्री किंजरप्पन राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घूघस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रूपये से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और फिनलैंड के संबंध एक नए महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहे हैं। भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश डिजिटल और सतत विकास के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की ओर अग्रसर है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए डटे हुए थे।
1: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 27 ओवर में 5 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station today during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में जो पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है अभिमान, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

जब सब सो जाते हैं तब हम भी थोड़े सच हो जाते हैं। ना कोई दिखावा ना कोई शोर, बस दिल और उसकी आवाज। कभी खुद से सवाल करते हैं और कभी खुद को ही जवाब भी देते हैं, और इसी खामोशी में थोड़ा थोड़ा जी लेते हैं। रात सिखाती है हमें कि तन्हाई दुश्मन नहीं होती, कभी कभी यही तन्हाई हमारी सबसे सच्ची सबसे अच्छी दोस्त होती है। और अगला गीत फिल्म कामचोर से।

कहते हैं कि रात जब सब सो जाते हैं तो धीरे धीरे रात अपनी चादर को फैलाती है और तब कहीं दिल से हल्की सी आह खामोशी में सुनाई देती है। दिन भर की हंसी के पीछे छुपे वो अनकहे सवाल धीरे धीरे आंखों में उतर आते हैं और नींद से पहले एक कहानी बन जाते हैं। जब सब सो जाते हैं तब यादें भी दस्तक देती हैं, कुछ मुस्कुराती हुई कुछ चुपचाप रुला जाती हैं। वो बातें जो कभी कह नहीं पाए, वो एहसास जो शब्दों में ढल नहीं पाए, रात उन्हें अपने आंचल में लेकर चुपचाप सहला जाती है।

जब शहर की धड़कन धीमी पड़ जाती है और खिड़कियों की रोशनी एक एक करके बुझती है, तब कहीं भीतर एक छोटी सी दुनिया जागती है। वो दुनिया जहां कोई आवाज ऊंची नहीं होती, बस एहसास धीरे धीरे करके दिल की सतह पर उतरते चले जाते हैं। जब सब सो जाते हैं, तब वक्त भी जैसे ठहर जाता है। घड़ी की टिक टिक किसी अधूरी बात का जवाब लगती है। कभी कोई चेहरा याद आता है जो अब पास नहीं है, पर उसकी मुस्कुराहट हमेशा साथ है। अभी रात में साथ चलती है कुछ सपने जो दिन में खो गए थे। रात उन्हें फिर से याद दिलाती है, फिर से थाम लेती है और कहती है, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। इस सन्नाटे में हम अपने डर को भी सुन लेते हैं और हौसले भी, जो दिन की भीड़ में कहीं दब गए थे। जब सब सो जाते हैं तो दिल धीरे से कहता है, तुम अब अधूरे नहीं हो। और शायद यही वजह है कि हर रात के अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी छिपी होती है। हर रात के अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी छिपी होती है। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आपके साथ हूं मैं जयती। निशिगंधा में अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया।

वक्त आ चला है कि हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फिल्म का नाम है रुदाली, आवाज है आशा भोसले की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियों चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है।

0: सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी पर का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरप्पू महरामोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बातचीत की और पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और फिनलैंड के संबंध एक नए महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहे हैं। भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश डिजिटल और सतत विकास के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की ओर अग्रसर हैं। उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए डटे हुए थे। इस बीच गुजरात, झारखंड, दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 42वें ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind railway station today during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सच्चा झूठा, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।
1: यूं ही तुम

कुछ पंक्तियां हम लिखते तो हैं पर पूरी नहीं करते। जैसे दिल में एक खत शुरू होता है पर आखिरी शब्द कभी उतर नहीं पाता। कागज खाली नहीं होता, वो बस इंतजार करता है

जज्बातों का जो कभी पूरी तरह कही नहीं गए। कभी किसी नाम पर कलम रुक जाती है और वही ठहराव सबसे ज्यादा कुछ कह जाता है। जो पूरा लिख दिया जाता है उतना खास नहीं होता जितना जो अधूरा रहकर भी सब कुछ कह जाए, क्योंकि हर कहानी अंत तक पहुंचे ये जरूरी नहीं। कुछ एहसास बीच में रुककर ही याद बन जाते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयति। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है खामोशी, आवाज है किशोर कुमार की।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। रात जब सब सो जाते हैं तो रात शोर नहीं करती, बस धीरे धीरे हर चीज को अपनी जगह पे रख देती है। बिखरे हुए दिन को समेटती है चुपचाप, थके हुए लम्हों को तकिए के नीचे सुला देती है। खिड़की से आती हवा कोई किस्सा नहीं सुनाती, बस पर्दों को हल्का सा हिलाकर याद दिला देती है सब ठीक है। जब सब सो जाते हैं तब कोई सवाल नहीं होता, न जवाबों की जल्दी, न किसी को समझाने की कोशिश, बस एक ठहराव होता है, जैसे जिंदगी ने थोड़ी देर के लिए खुद को पॉज कर लिया हो। इस सन्नाटे में ना कोई अधूरी बात चुभती है,

कोई पुरानी याद खींचती है, बस एक हल्की सी राहत होती है, जैसे किसी ने दिल पर हाथ रखकर कहा हो, आज के लिए इतना काफी। जब हम सो जाते हैं तब रात सिखाती है कि हर चीज को महसूस करना जरूरी नहीं, कुछ लम्हों को बस यूं ही बीत जाने देना भी सुकून देता है। अगला गीत लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है प्रोफेसर।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और गीत सुहाने में अब जो अगला गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

और वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ अब भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले भारत, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन

0: शासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे हैं और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क की एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राम मोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत 9वीं कक्षा में तीसरी जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू नहीं करें। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए, वहीं विराट कोहली ने 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said, this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station today during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins a select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. The train has been designed to run at a speed of 110 km per hour, but on this section it will operate at a maximum speed of 75 km per hour. Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh, where he will unveil several development projects worth over 6,600 crore rupees. The Prime Minister will thereafter visit Jalandhar in Punjab, where he will launch multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah will be on a 3-day visit to West Bengal from today. Sources said that during the visit, he will participate in the programs focused on border security, governance, लॉ एंड ऑर्डर एंड डेवलपमेंट।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है पाकीज़ा, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

बिना वजह ठहरा रहता है। दिन भर की भागती सोच जब थक कर लौटती है तो उसी जगह धीरे से बैठ जाती है। ना कोई शिकायत होती है वहां, ना कोई अधूरी चाह, जैसे सब कुछ वैसा ही ठीक हो जैसा होना चाहिए। कभी कभी ये महसूस होता है कि हम खुद से दूर नहीं थे, बस रास्ता थोड़ा धुंधला था, और जब वो साफ होता है तो पता चलता है सुकून कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर चुपचाप इंतजार कर रहा था। कोई शोर नहीं करता, ना ही हमें पुकारता, बस एक हल्की सी जगह बनाकर हमारे लौट आने का धैर्य से इंतजार करता। अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, साथ हूं मैं जयती। एक हल्की सी जगह, भीतर भीतर कहीं एक जगह ऐसी भी होती है जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती, ना कोई सवाल, ना शब्दों की भीड़, ना किसी को समझाने की कोशिश, बस एक सादा सा सुकून

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती, और अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं फिल्म का नाम है आज का अर्जुन। आवाज है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

मैंने मन के सबसे भीतरी सलवट में एक जगह बचा कर रखी है, जहां कोई दस्तक नहीं पहुंचती, ना किसी रिश्ते का अधिकार। वहां कुछ अधूरी पुकारें हैं जो होठों तक आकर लौट गई थी। कुछ पन्ने हैं जिन पर नाम तो लिखे गए पर भेजे कभी नहीं गए। वहां एक कोना ऐसा भी है जहां मैं बैठी रहती हूं, अपने कई रूपों के साथ, कभी प्रश्न बनकर कभी उत्तर से दूर भटकती हुई। कुछ दृश्य हैं जो आंखों से उतर तो गए पर भीतर की मिट्टी में अब भी जड़े फैलाए हुए हैं। मैंने उन्हें छिपाया नहीं, बस संसार की भीड़ से बचाया है। कुछ बातें नदी की तरह होती हैं, बहती तो भीतर हैं, पर उनका मार्ग किसी मानचित्र में दर्ज नहीं मिलता। और अगला गीत अब लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती।

ऐसी सांझ की भीगी देहरी पर मैंने कुछ अभिलाषाएं रख छोड़ी थी, न मांगी थी किसी भाग्य विधाता से, न हथेलियों की रेखाओं में जोड़ी थी। वे बस मेरी पलकों की तह में धीरे धीरे अंकुरित होती रही, जैसे निर्जन वन में कोई बेल बिना दर्शक के बढ़ती रही। फिर जीवन ने अपने निर्णय लिखे, मैंने भी बिना वाद विवाद पढ़ लिए। कुछ मोड़ों पर मुस्कानों के दीप जले, कुछ मोड़ों पर अपने ही स्वर गढ़ लिए गए। पर एक कोना ऐसा भी बचा जहां कोई ऋतु नहीं पहुंची, वहां आज भी कुछ आकांक्षाएं निष्कर्ष तक लौटती हैं।

वे हार नहीं थी, बस नियति की मोहर उन्हें न मिल सकी। वे भूल नहीं थी, बस उन्हें किसी नाम की जरूरत नहीं रही। कितनी ही कथाएं लिखी जाती हैं विजयों के स्वर्णिम पृष्ठों पर, किंतु जो मन के अंतराल में ठहरे वे कहां उतरती हैं इतिहासों पर। और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद मीना होंगी आपके साथ। अभी छोड़े जाते हैं आपके एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है 2 रास्ते, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो मुझे दीजिए अनुमति, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जूमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से संपर्क किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधारित वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया।

भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से माल ढुलाई की बढ़ती कीमत को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। ब्राजील ने अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ का विरोध किया है और अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% नया शुल्क लगाने की घोषणा की है। ये फैसला कथित अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर लिया गया है। नए शुल्क 22 जुलाई से लागू होंगे। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। विराट कोहली ने 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत लाई। जो रूट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: परेशानी जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़ दिल पर
1: दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत का एहसास किसी मौसम का मोहताज नहीं होता। कभी किसी की मुस्कान में बस जाता है तो कभी किसी की खामोशी में अपना घर बना लेता है। जब दिल सचमुच किसी को अपना मान लेता है ना, तो हर दुआ में वही नाम शामिल हो जाता है और हर ख्वाब उसी की तस्वीर से सजने लगता है। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत इसी एहसास के अनुसार।

दोस्तों, अगर आपके दिल में भी किसी के लिए कोई अनकही बात है, कोई खूबसूरत एहसास है ना, तो आज उसे महसूस कीजिए, क्योंकि सच्चा प्यार दुनिया से नहीं डरता और वो बस अपने दिल की सुनता है।

जानते हैं दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां अक्सर वहीं से शुरू होती है जहां हम कहते हैं नहीं, और दिल मुस्कुराकर कहता है यही तो प्यार है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही सदाबहार नगमा जो मोहब्बत के इसी मासूम इकरार को बेहद खूबसूरती

दिल यही कह उठता है और किसी चीज की तमन्ना नहीं रहती, क्योंकि जिसे चाहा था वही मिल गया। इन्हीं जज्बातों को सुरों में सजता हुआ गीत लीजिए पेश है।

जब किसी अपने का साथ मिल जाता है ना, तो लगता है जैसे जिंदगी ने अपनी सबसे खूबसूरत नेमत दे दी हो। फिर

0: बाकी के नगमे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 MHz पर। कार्यक्रम चल रहा है हमराही और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

दोस्तों, मोहब्बत में सबसे प्यारी चीज होती है अपनेपन की एक आवाज। कभी किसी का नाम लेकर पुकारना, कभी किसी की आहट पहचान लेना, तो कभी बिना कुछ कहे दिल का हाल समझ लेना। प्यार में दूरियां उतनी तकलीफ नहीं देती जितनी खामोशी देती है। कई बार दिल बस इतना चाहता है कि कोई अपना एक बार पुकार ले और सारी शिकायतें, सारी दूरियां पल भर में मिट जाए। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही नगमा।

जब नजरें झुकती हैं ना तो अक्सर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और शायद वहीं से शुरू होती है एक खामोश लेकिन बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी। इन्हीं दिलकश एहसासों को सुरों में पिरोता हुआ पेश है अगला नगमा।

दोस्तों, प्यार का सबसे खूबसूरत इजहार शायद यही है कि किसी से कहा जाए, तुम्हारे होने से मेरी दुनिया मुकम्मल है और तुम्हारे सिवा कोई ख्वाहिश बाकी नहीं है। तो आइए इसी बे इंतहा मोहब्बत के एहसास को सुरों में महसूस करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3.76 करोड़ टन अनाज और 3.77 करोड़ टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। ब्राजील सरकार ने अमरीका की ओर से लगाए

दोस्तों जानते हैं, रंग तो एक दिन ढल जाएगा, चेहरे की चमक भी कम हो जाएगी, मगर इंसान का किरदार, उसकी सादगी, उसकी मोहब्बत और उसका बर्ताव, वही हमेशा याद रहता है। हुस्न पर इतराने वाले बहुत मिल जाते हैं, मगर दिल जीतने वाले बहुत कम होते हैं।

जिंदगी की राह चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम सफर साथ हो ना तो हर सफर आसान लगता है। मंजिल से ज्यादा उसके साथ चलने का एहसास बहुत खूबसूरत लगता है। दुनिया की दौलत, शोहरत और रंगीनियां भी उस सुकून के आगे फीकी है जो हम सफर के साथ होने से मिलता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

भी इम्तिहानों की आंधियां चलती है, ऐसे में जो हाथ नहीं छोड़ते हैं ना, जो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं ना, वही असली हम सफर कहलाता है। तो आइए अब सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो हम मोहब्बत के इसी खूबसूरत वादे को अपने सुरों में पिरोता है।

दोस्तों कहते हैं जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगते हैं ना तो उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं रहती। एक की धड़कन सुर बन जाती है तो दूसरे का एहसास गीत बन जाता है। रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात यही है कि उनमें कोई आगे नहीं चलता और कोई पीछे नहीं रहता। दोनों मिलकर जिंदगी की एक प्यारी सी धुन रचते हैं। जब सुर और गीत साथ हों तभी संगीत मुकम्मल होता है। ठीक वैसे ही जैसे प्यार और भरोसा मिलकर एक खूबसूरत रिश्ता बनाता है।

दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत किसी को रोकती नहीं है, बस इतना कहती है कि चाहे जितनी दूर चले जाओ, दिल से दूर नहीं जा पाओगे। कुछ रिश्तों की डोर ऐसी होती है जो नजरों से ओझल होकर भी टूटती नहीं है। कदम भले ही दूसरी राह पकड़ ले, लेकिन यादें हमेशा उसी मोड़ पर इंतजार। और जब किसी की मोहब्बत सच्ची हो तो उसे यकीन होता है कि लौटकर आने का रास्ता दिल ही दिखाएगा। इसी खूबसूरत एहसास को बेहद खूबसूरत अंदाज में गाया है। आइए सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाजत। 5:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम भोर सुहानी में। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज एनडीए की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर विचार विमर्श होगा। सूत्रों के अनुसार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर भी विचार किया जाएगा। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जूमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,73,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। ब्राजील ने अमेरिका की ओर से लगाए गए नए टैरिफ का विरोध किया है। अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की भी ब्राजील ने चेतावनी दी है। अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% नया शुल्क लगाने की घोषणा की है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज सुबह 9:30 बजे फिर शुरू होगी।
2: चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ।
0: कल रात अंधेरा होने पर रथों को रोक दिया गया था। आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बल

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:11 और 5 सेकंड। भोर सुहानी कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, जिंदगी कभी भी खाली हाथ इंतजार नहीं करवाती है। हर ठहराव के पीछे एक सीख होती है, हर देरी के पीछे एक बेहतर मंजिल छिपी होती है। इसलिए अगर आज रास्ते सुनसान है ना, तो घबराइए मत, चलते रहिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कदम रोकते नहीं है, चाहे साथ कोई हो या ना हो।

दोस्तों, बहार सिर्फ मौसम में नहीं आती, बहार तो रिश्तों में भी आती है। जब हम एक दूसरे का हाथ थामकर साथ चलते हैं ना, तो एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। याद रखिए, अकेला इंसान तेज चल सकता है, लेकिन मिलकर चलने वाले लोग बहुत दूर तक पहुंचते हैं। एकता में वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी आसान बना देती है।

दोस्तों, धन दौलत, शोहरत और शरीर सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म और मीठे बोल समय की सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। ऐसा जीवन जियो कि जाने के बाद भी लोग कहें इंसान चला गया, मगर उसकी बातें आज भी दिलों में जिंदा है।

सभी की कुछ अपनी सी अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।